मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज सोमवार है। शक समत 1948 के बैशाख मास की 21वीं तिथि तदनुसार 11 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 और 50 सेकेंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद

0: मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रोनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोफ को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही क्षणों पश्चात। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं समूह स्वर में इस पारंपरिक गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कबीर भजन ब्रह्मदेव नारायण सिंह के स्वर में। लीजिए अब सुनिए शर्मा बंधु के स्वर में ये भजन।

0: मन अड्डे के गाय इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, आइए सुनते हैं चिंतन। आलेख श्री सुबोध पांडे का है।
1: हमें गांव क्यों आकर्षित करते हैं? वहां के कच्चे ही सही, लेकिन व्यवस्थित लिपे पुते छोटे छोटे घर, आंगन और कम संसाधनों से युक्त जिंदगी का वेग बरबस हमें खींचता है। जो व्यवस्थित है, शुद्ध है, साफ सुथरा है, वो आकर्षित करेगा ही। इस तत्व ज्ञान के मूल में समूल स्वच्छता का दर्शन है। इसका संबंध सीधे सीधे हमारे विचारों और आचार से होता है। इसे यूं समझा जा सकता है कि स्वच्छता का संबंध केवल लौकिक नहीं है। घर, आंगन, सड़क, कूड़ा, नालियां, बस अड्डे, स्टेशंस, सार्वजनिक व्यक्तिगत रहवास से संबंधित तो कतई नहीं। इसका संबंध समेकित आंतरिक और बाह्य शुचिता से है। वो आदमी सज्जन है, जब ऐसा कहा जाता है तो वस्तुतः हम देह का कौतुक नहीं कर रहे होते हैं, अपितु हमें उस आदमी का चलन और आचार आकर्षित कर रहा होता है। जब हम किसी घर स्थान की रुचि के साथ व्याख्या कर रहे हैं तो वस्तुतः हम व्यवस्थित शुचितापूर्ण रख रखाव को बताते हो रहे होते हैं। मृत्तो यह शुद्धते शोध्यम नदी वेगेन शुद्ध्यति। इस वचन में भौतिक स्वच्छता को जल और मिट्टी के माध्यम से स्थापित करने का उल्लेख है। आगे ये भी है कि नदी अपने प्रवास से निर्मल हो जाती है। श्लोक में इतर स्वच्छता संबंधी संदर्भों का उल्लेख है, इसे समझने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी इसी समूल स्वच्छता के पक्षधर थे। ऐसी स्वच्छता जो राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तत्वों का अतार्किक गठजोड़ हो। गांधी जी ने व्यक्तिगत स्वच्छता को महत्व दिया और इसे दुनियादारी की भाषा में जन सामान्य को समझाया। उन्होंने एक आदर्श नागरिक की परिकल्पना की थी। उनका मानना था कि यदि मनुष्य स्वच्छ नहीं है तो वो पूरी तरह से बीमार है। सही भी है। जरा सोचिए कि वो किन विचारों और दबावों के जकड़न में बिना नहाए ही ऑफिस चला गया होगा। वो कौन सी मजबूरियां रही होंगी जिसने उसे स्नान गृह में न जाने के लिए विवश किया होगा। क्या उससे उसे निजात पाने की आवश्यकता नहीं थी? घर, आंगन साफ होगा तो वो आदर्श कहा जाने लगेगा। किसी भी आदर्श घर की पहचान दो स्थानों से होती है, रसोई घर और गुसलखाना। यदि ये दोनों स्थान व्यवस्थित और करीनेवार प्रदर्शित हो रहे हैं तो यकीनन आप कहेंगे कि फला के घर जाकर प्रशस्त महसूस हुआ। आखिर ये कौतुक आपसे क्यों हो पाया? क्योंकि आदमी जानता तो है कि स्वच्छता में आकर्षण और सम्मोहन है, लेकिन उसका स्व आचार, स्व विचार उसे बाध्य नहीं करता कि वो स्वशुद्ध हो। आप जानते हैं कि नदियां सभ्यता की जननी हैं। उनका पौराणिक आध्यात्मिक महत्व तो है ही, लेकिन लौकिक संसार को प्राण देने वाली नदियां यदि अशुद्ध की जाती रहेंगी तो समूची पौध संक्रमित होती रहेंगी। बापू का कहना था कि क्या आप अपनी आने वाली नस्लों को संक्रमित देखना चाहते हैं? उन नदियों को गंदा और विषाक्त होना या करना जरूरी है जिन नदियों ने सभ्यता हमारी अंजूरी में दी है? उनका स्पष्ट मत था कि यदि हमें हमारा मूल याद रखना है तो नदियों को स्वप्रेरणा से साफ रखना होगा। साधारणतः घर की शिक्षा को आत्मसात करने की आवश्यकता है। अंदर की शुचिता को जगाना आवश्यक है। वो घर के ही लोग थे जिन्होंने नदियों में निस्तारण के नियम बनाकर

0: पालन करने की हिदायत दी थी। बापू ने मन की स्वच्छता को सर्वोपरि बताया है। हर किसी व्यक्ति को अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए। वे कहते थे कि बहुत छोटे छोटे नियम बनाकर और बदलाव लाकर जीवन को आदर्श बनाया जा सकता है। कोई व्यक्ति गंदे पैर या गंदे जूते चप्पल पहनकर घर में कैसे प्रवेश कर सकता है, और इस अवस्था में तो कतई वो मेरे मन में जगह नहीं बना सकता है। उनका वाक्य है कि व्यक्ति का अपनी गलती को सुधारना झाड़ू लगाने के समान है। स्वच्छता यदि आदत बन जाती है तो आधा जीवन सफल हो जाता है।
1: चिंतन अभी आप सुन रहे थे, आलेख श्री सुबोध पांडे का था। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराहीपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।

केवट से निहोरा करके श्री रामचंद्र पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित गंगा पार तो उतर गए, किंतु केवट को उतराई देने की उनकी कोई युक्ति सफल नहीं हुई। श्री राम ने स्नान कर पार्थिव पूजा की तथा सीता ने गंगा से हाथ जोड़ अपना मनोरथ पूरा करने की प्रार्थना की। माँ गंगा को रघुवीर की प्रियतमा की महिमा ज्ञात थी, फिर भी उनकी विनती सुनकर भागीरथी ने कहा, हे सीते, तुम अपने प्राणनाथ तथा देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे और तुम्हारा यश संपूर्ण जगत में छाएगा। उधर श्री रामचंद्र ने केवट को भक्ति का वरदान देकर विदा करना चाहा, तो निषाद राज ने दो चार दिनों तक उनके साथ रहकर उनके चरणों की सेवा करने की अनुमति चाही। भक्त वत्सल भक्त की प्रार्थना कैसे न मानते। सीता लक्ष्मण सहित उन्होंने श्री गणेश तथा शिवजी का स्मरण किया तथा माँ गंगा को सिर नवा निषाद राज को साथ लेकर वन की ओर चले।

0: रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। आज की कड़ी में गायन स्वर मन्ना डे और शुभा जोशी का था। आकाशवाणी की संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। मीडिया वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। कृषि चर्चा में गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थ, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रेखा सिंह।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा सिंह, सह प्राध्यापक उद्यानिकी महाविद्यालय सांकरापाटन दुर्ग से। आज हम शरीर की गर्मी को प्राकृतिक रूप से कम करने वाले कुछ खाद्य पदार्थों के विषय में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं गर्मी के मौसम का आनंद लेने और शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करने वाले कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। जैसे नारियल पानी, गर्मी में नारियल पानी सबसे अच्छा पेय है। नारियल पानी ठंडक देने वाले इसमें गुण होते हैं जो चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने और तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। नारियल पानी प्राकृतिक रूप से मीठा होता है और अक्सर इसमें मौजूद मलाई से इसकी मिठास और बढ़ जाती है। आप नारियल पानी पी सकते हैं और बची हुई मलाई को चेहरे पर लगा सकते हैं जिससे त्वचा को ठंडक मिलती है। और क्या हो गया, छाछ। यह स्वास्थ्यवर्धक पेय में आवश्यक प्रोबायोटिक्स, विटामिन और खनिज होते हैं जो अत्यधिक गर्मी में भी हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। प्रतिदिन या दिन में दो बार छाछ पीने से शरीर को ठंडा रखने में मदद मिल सकती है। छाछ के अलावा जो एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जलजीरा, शरीर को ठंडक पहुंचाने में बहुत सहायक माना गया है। जलजीरा में पुदीना भी मिलाया जाता है जिसके कारण यह ठंडक प्रदान करता है। इसके अलावा एलोवेरा, एलोवेरा को प्राकृतिक शीतलक के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह शरीर की आंतरिक और बाह्य गर्मी को कम करने में मदद करता है। शीतलता का अनुभव करने के लिए जेल को त्वचा पर लगाया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से आप एलोवेरा जेल के अर्क को खीरे या पुदीने के साथ मिलाकर एक चिकना मिश्रण बना सकते हैं। इसे पीकर आंतरिक शीतलता का अनुभव भी कर सकते हैं। पुदीना, भारत में पुदीना सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों में से एक है। शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करने और ठंडक प्रदान करके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए इसे आमतौर पर भोजन या पेय पदार्थों में मिलाया जाता है। दही, छाछ या नींबू पानी में पुदीना मिलाने से इसके और भी फायदे मिलते हैं। आप पुदीने की चटनी भी बना सकते हैं जो लगभग हर भारतीय घर में सबसे लोकप्रिय चटनी में से एक है। तरबूज, आम के अलावा तरबूज भी एक ऐसा फल है जिसे भारत में गर्मियों के मौसम में खूब खाया जाता है। आमतौर पर तरबूज में पानी की मात्रा 92% तक होती है जो निर्जलीकरण को रोकने और शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। नियमित सेवन से शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा खीरा, तरबूज की तरह खीरे में भी 95% तक पानी की मात्रा अधिक होती है। इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है जो कब्ज से राहत दिलाने में मददगार साबित होता है। गर्मी के मौसम में जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो कब्ज एक आम समस्या बन जाती है। खीरे का इस्तेमाल सिर्फ सलाद में ही नहीं बल्कि चेहरे के उपचार और आंखों की थकान दूर करने के लिए भी किया जाता है। हल्का, ताजगी भरा और कम कैलोरी वाला खीरा गर्मियों का एक बेहतरीन साथी हो सकता है। इसके अलावा नींबू पानी, शोध से पता चलता है कि नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो शरीर का तापमान

0: कम करने में मदद कर सकता है। यह शरीर को नमी और ऑक्सीजन भी प्रदान करता है, जिससे गर्मियों में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और ताजगी महसूस होती है। नींबू का रस बनाने के लिए आधे नींबू का रस निचोड़ें, उसमें एक चुटकी नमक और आधा चम्मच चीनी मिलाएं और ठंडे पानी में अच्छी तरह मिला लें। ये तत्व आपके शरीर के लिए प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। इसके अलावा प्याज, शायद आपको आश्चर्य हो लेकिन प्याज में भी शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला प्राकृतिक प्रभाव होता है। प्याज में कैरसेटिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो एलर्जी रोधी के रूप में काम कर सकता है और लू लगने जैसे गर्मी से संबंधित समस्याओं से बचाव में भी फायदेमंद हो सकता है। यही कारण है कि हमारी दादी नानी गर्मियों के महीने में अक्सर प्याज और कच्चे आम का पारंपरिक मिश्रण बनाती थी। आप प्याज को नींबू और थोड़ा सा नमक मिलाकर कच्चा भी खा सकते हैं या फिर इसे सलाद, रायता आदि में मिलाकर आसानी से खा सकते हैं। इसके अलावा कई और भी हमारे ऐसे पदार्थ हैं जिससे हम अपने शरीर को ठंडक पहुंचा सकते हैं, जैसे ठंडाई हो गया, मैंगो लस्सी हो गया, बादाम का दूध हो गया, स्ट्रॉबेरी शेक, मिल्क शेक, केसर या लस्सी। ये सब जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं या पेय पदार्थ हैं, वे प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर को ठंडा करते हैं। धन्यवाद।
1: कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थ, इस विषय पर डॉक्टर रेखा सिंह की जानकारी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, समय है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण सुनिएगा 11:10 पर। पब्लिक स्पीक सुनिएगा 9:30 पर और स्पोर्ट्स कैन सुनिएगा 8:30 पर। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किए जाएंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर सुनिएगा 7:05 पर। 8:30 पर सुनिएगा परिचर्चा, धरोहरों का संरक्षण जिम्मेदारी किसकी। प्रतिभागी होंगे हसन खान, प्रभाकर चौबे और राहुल सिंह। संचालन करेंगे डॉक्टर रमेश नैयर। सुबह 9:00 सुनिएगा वार्ता, साइबर लिटरेसी और हिंदी में एआई का उपयोग। वार्ताकार होंगी डॉक्टर आकांक्षा शराफा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:40 पर और 8:15 पर कलाकार होंगे मनोज वर्मा। 6:30 पर सुनिएगा दिनेश निम्बालकर के स्वर में सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:00 सुनिएगा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गाया राग मियां की तोड़ी में ख्याल। इस कार्यक्रम में 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गाया राग बिहाग में ख्याल। लोकरंजनी में 2:30 पर सुनेगा पुनाराम निषाद और साथियों के स्वर में पंडवानी। शहरी महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में 1:30 पर आज की बात का विषय होगा सोशल मीडिया और महिलाओं की आवाज। सुनेगा फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध से और टिप्स। युवाओं के कार्यक्रम युवाणी में 5:10 पर सुनिएगा आजकल में निरंतर सीखते रहना। हेलो युवाणी में सुनिएगा दीपक तिवारी से श्रोताओं की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता धर्मदीप डोंगरी और होगा क्रम दृष्टिकोण। 7:21 पर प्रस्तुत होगा किसानों का कार्यक्रम चौपाल, जिसमें आज की बात का विषय होगा सरलक खेती में पशुधन के महत्ता। भेंटवार्ता में सुनिएगा खरीफ फसल धान के वैकल्पिक खाद नील हरित काई जैव और नैनो उर्वरकों का उपयोग कैसे करें।

इस विषय पर जानकारी देंगी श्रीमती गोपिका गबले, संयुक्त संचालक कृषि दुर्ग। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर सुनिएगा रात 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का समय होगा शाम 5 बजे और चित्रपट संगीत सुनेगा सुबह 9:15 पर, सुबह 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर, दोपहर 2 बजे, दोपहर 2:30 पर और शाम 7 बजे, रात 8 बजे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: पहले सुनिएगा संस्कृत में, फिर हिंदी में।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः तेलंगाना राज्ये प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचनानां औद्योगिक परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रथमस्य ज्योतिर्लिंगस्य श्री सोमनाथ महादेव मंदिरस्य पुनर्निर्माणस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्रीमोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकं च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च संबोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्य सचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पंचमंत्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य संभावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमंत्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मंत्रिमंडले भाजपा दलस्य निर्वाचन प्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भण्डारः, राज्य सर्वकारीय कर्मचारिणां कृते सप्तम वेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्य विषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मंडल दंडाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षी अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायक दलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा गठबंधन नेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिक रूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त बिश्वशर्मणे नूतन मंत्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहण समारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, भाजपा अध्यक्षः नितिन नवीन इत्यादयः भागं गृहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। मीडियम वेव और FM

ब्रांड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निवाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो, आपसे किया वायदा हमें हमेशा याद रहता है। इसलिए दोस्तों, हम बदस्तूर आपके लिए लेकर आए हैं गीत संगीत और सूचनाओं का पिटारा लिए। आज के सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में स्वीकारें अपने रेडियो दोस्त दुर्गेश कुमार का नमस्कार। दोस्तों, शहर की फिजाओं में अब वो शिद्दत वाली तपिश खुलने लगी है। वो महीना लौट कर आ गया है जिसका इंतजार हम सभी करते हैं और जिससे कतराते भी हैं, जिसके लौटने के साथ ही लौट आता है बीते हुए समय की याद। गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं, एहसास है अमराइयों की खुशबू का, परिंदों की परवाज का। इस मुसाफिरत में किसी प्यासे परिंदे के लिए अपने दरे आप पर दाना जरूर रखिएगा। इसी गुजारिश के साथ पेश खिदमत है आज का नमस्कार रायपुर।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास इंसानी तजुर्बों और संघर्षों की दास्तां है। इंसानी विकास के लिए इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब जानते हैं आज का इतिहास। माना जाता है कि आज ही के दिन दुनिया की पहली ज्ञात मुद्रित पुस्तक यानी प्रिंटेड बुक डायमंड सूत्र चीन में प्रकाशित हुई थी। डायमंड सूत्र महायान बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पूजनीय ग्रंथ है, जिसे संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है। इसे चीन में 868 ईस्वी में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक से छापा गया था। आज ही के दिन यानी 11 मई 1940 को बीबीसी हिंदी रेडियो सेवा की शुरुआत की गई थी। ये सेवा मूल रूप से रेडियो के माध्यम से लंदन से शुरू की गई थी। अब ये रेडियो के साथ साथ वेबसाइट, टीवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के ब्रितानी सैनिकों तक समाचार और संदेश पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और अब एक दिलचस्प घटना आपसे साझा करते हैं। सन 1997 को आज ही के दिन शतरंज के ग्रैंड मास्टर रहे गैरी कास्पारोव को एक डीप ब्लू नामक कंप्यूटर ने शतरंज के खेल में उन्हें हरा दिया था। दरअसल इस कंप्यूटर को आईबीएम ने शोध और विकास के माध्यम से विकसित किया था, जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की और शतरंज के क्षेत्र में मानव बौद्धिक क्षमता को एक मशीन ने पीछे छोड़ दिया था। दोस्तों, ऐसे ही ऐतिहासिक घटनाओं से हमें आने वाले समय के लिए प्रेरणा मिलती है कि हम किन चीज़ों को करें या ना करें जिससे हमारी भलाई हो, तरक्की हो। ऐसे इतिहास को हर दम गाया जाता है गीतों में ढालकर। इन गीतों को गाते हैं धरती।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: अननोन कॉल के माध्यम से कई बार स्कैमर्स आपके साथ ठगी करने का प्रयास करते हैं। कई बार एग्ज़ाम के दौरान, बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान या अन्य एग्ज़ाम के दौरान अभिभावकों को फर्जी कॉल आते हैं। इसमें स्कॉलर्स या स्कैमर्स बच्चों को पास करवाने के नाम से या अच्छे ग्रेड दिलाने के नाम से आपके साथ ठगी करने का प्रयास करते हैं, आपसे पैसे की मांग करते हैं। या फिर आपको ये कहा जाता है कि आपका कोई रिश्तेदार थाने में बैठा है, जिससे गंभीर धाराओं में बैठाया गया है, आप अगर उसको छुड़ाना है तो आप पैसे जमा कीजिए। तो इस प्रकार आपके साथ अननोन कॉलर्स या स्कैमर्स ठगी करने का प्रयास करते हैं। आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, ऐसे कॉलर को एंटरटेन ना करें। फिर भी आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो आप 1930 पर कॉल करके रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
2: दोस्तों, आज तारीख है 11 मई। आज का दिन हमारे लिए सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि हमारे साहस, बुद्धिमता और आत्मनिर्भरता की एक नई पहचान का दिन है। आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो दोस्तों, आखिर ये दिन क्यों मनाया जाता है, आइए चलते हैं थोड़ा पीछे। आज ही के दिन वर्ष 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। इसके साथ ही भारत ने स्वदेशी विमान हंसा 3 का सफल परीक्षण भी इसी दिन किया था। इन्हीं महान उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया गया। आज हम सिर्फ उन वैज्ञानिकों को याद नहीं कर रहे, बल्कि हर एक इंजीनियर, इनोवेटर और स्टूडेंट को सलाम कर रहे हैं जो अपनी तकनीक से देश को बदल रहे हैं, चाहे वो डिजिटल पेमेंट हो, स्पेस मिशन हो या फिर स्टार्टअप्स। हर जगह हमारे देश का परचम लहरा रहा है। तो दोस्तों, आज के दिन आइए खुद से एक वादा करें कि अपनी छोटी बड़ी खोजों से, अपने नए विचारों से हम इस देश को और भी उन्नत बनाने में अपना योगदान दें। हम जिस भी क्षेत्र में रुचि रखते हों या जिस राह को भी हम चुने, उस राह को सुंदर और हरा भरा बनाए रखें।

इसी बात को समझकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के शुरुआती संकेत तलाश सकेंगे। आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने एक अत्याधुनिक कंप्यूटेशनल टूल विकसित किया है जिसका नाम है रेनॉयर। इस टूल का नाम फ्रांसीसी कलाकार के नाम पर रखा गया है। ये टूल ये समझने में मदद करेगा कि शरीर की कोशिका आपस में किस तरह एक दूसरे को सिग्नल भेजकर प्रभावित करती हैं। डिवाइस में लगे सेंसर्स और एआई तकनीक मुंह के अंदर की तस्वीरों और डाटा का विश्लेषण कर कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर सकेंगे और महज कुछ ही पलों में कैंसर की उपस्थिति और उसके स्टेज के बारे में जानकारी दे सकेंगे। दोस्तों, इंसान और विज्ञान का ये जो नाता है वो अद्भुत है। दोनों समानांतर अपना विकास करते जा रहे हैं, मानो एक दूसरे से ये कह रहे हों।

दोस्तों, हमने बात की प्रौद्योगिकी से होने वाले विकास पर। ऐसे में मनुष्य और टेक्नोलॉजी का संबंध कितना गहरा है, इसे हम एक खोज के जरिए समझते हैं। शरीर के भीतर मौजूद कोशिकाएं लगातार एक दूसरे से बातचीत करती रहती हैं। यही बातचीत शरीर के विकास, इम्यून सिस्टम और बीमारियों के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अब वैज्ञानिक

दोस्तों, आज का दिन भारतीय इतिहास के उन पन्नों को पलटने का है जहां महान हस्तियों के जन्म की कहानियां लिखी है। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं 1918 में आज ही के दिन जन्मी पद्म भूषण से सम्मानित मृणालिनी साराभाई की। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिमूर्ति मृणालिनी साराभाई ने भरतनाट्यम और कथकली को वैश्विक पहचान दिलाई। वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की जीवन संगिनी थी। उन्होंने अपने द्वारा स्थापित दर्पण एकेडमी के जरिए हजारों कलाकारों को तराशा और विश्व में पहचान दिलाई। हम उन्हें सादर नमन करते हैं। और अब बात करते हैं साहित्य जगत की। आज जन्मदिन है महान साहित्यकार सादत हसन मंटो का। 11 मई 1912 को लुधियाना में जन्मे मंटो ने अपनी कलम से समाज का सत्य लिखा। आज भी उनके अफसाने साहित्य प्रेमियों के बीच उतने ही प्रासंगिक हैं, चाहे वो टोबा टेक सिंह हो या पर्दे के पीछे। महान साहित्यकार सादत हसन मंटो को हमारा सलाम। और अब बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने कानून की किताबों और जंगे आज़ादी के मैदान दोनों जगह अपनी अमिट छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं एक महान वकील, एक निडर क्रांतिकारी आसफ अली की। 11 मई 1888 को जन्मे आसफ अली ने 1919 के खिलाफत आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक हर मोड़ पर गांधी जी का साथ दिया। भगत सिंह पर चल रहे मुकदमे पर आसफ अली ने उनकी पैरवी की और आज़ादी के बाद वो अमेरिका में भारत के पहले राजदूत बने। बाद में उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। 2 अप्रैल 1953 को इस महान सेनानी ने दुनिया को अलविदा कहा। उनकी बहादुरी, उनके साहस को हम हमेशा सलाम करते रहेंगे।

रोजगार की तलाश कर रहे साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा दिनांक 12 मई 2026 मंगलवार को लाइवलीहुड कॉलेज जोरा में प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्थाएं शामिल होंगे। इन कंपनियों द्वारा कक्षा 5वीं से 12वीं तक और स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा पास आवेदकों के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले में सम्मिलित होने के लिए आवेदकों को छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। योग्य आवेदक अपने

शैक्षणिक योग्यता के अनुसार दस्तावेज, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड, बायोडाटा की छायाप्रति और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित हो सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट erozgar.cg.gov.in का अवलोकन कर सकते हैं। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: श्रोताओं, आगामी मंगलवार 12 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा गर्मी में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन। विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निधि बंजारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय भाटागांव रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 12 मई 2026 को सुबह 11:30 से दोपहर 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने गर्मी के मौसम की खूबसूरती की और अमराइयों की बात की। अमूमन शहर में आम के बगीचे हमें कम ही देखने को मिलते हैं। जल स्रोतों और जलाशयों की खूबसूरती भी गर्मियों में कम हो जाती है, मगर ग्रामीण इलाकों में बाग और बगीचों की खूबसूरती देखते ही बनती है। वास्तव में सुकून का मतलब हमें यहीं पहुंचकर समझ में आता है। ऐसे समय के लिए फिराक गोरखपुरी की ये पंक्तियां दुरुस्त जान पड़ती हैं कि ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी।

झूम रही हैं डालियां, लदे हुए हैं फल रसीले, अमराइयों में छुपकर बैठे पंछी सब नीले पीले, कोयल की वो मीठी कूक सन्नाटों को चीरती है, पपीहे की प्यासी पुकार कानों में रस खोलती है, पत्तों के झुरमुट में पंछी अपनी चोंच छिपाते हैं, दोपहर की उस तपिश से खुद को वही बचाते हैं, इधर टपकता कोई आम उधर गिलहरी दौड़ लगाती, गर्मी की ये अमरैया सुकून का नया गीत सुनाती, और इन्हीं गीत को सुनते आपका दिन खुशियों से भर जाए, इस आशा के साथ अब आज के सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर से अपने रेडियो दोस्त दुर्गेश कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में NDA के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले NDA विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। NDA में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिक

0: मुख्यमंत्री सचिवों जिला मैजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
4: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
5: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलयश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट

0: होकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 011-23-01-01-23-71-71-17 और 011-23-71-71-06। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-40-44 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदे, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC Under-17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi urges citizens not to buy gold

0: नहीं यार।
1: प्रत्येक व्यक्ति समाज और राष्ट्र का अतीत होता है, उस अतीत की कुछ धरोहरें होती हैं और उनका संरक्षण आवश्यक होता है। उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो अपने अतीत की सारी छवियां भूल चुका हो, उस पर कितनी दया आएगी। वो राष्ट्र जो कि अपने अतीत की धरोहरों को विस्मृत कर दे या नष्ट होने दे, वो भी कितना अभागा होता है। तो हम लोग अतीत की धरोहर और उसके संरक्षण के विषय में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मेरे साथ हैं पुरातत्व वेत्ता श्री राहुल सिंह, श्री हसन खान और वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर चौबे। तो जिस विषय के जो ज्ञाता हैं, जैसे राहुल सिंह से मैं ये कहूँगा कि धरोहर को आप कैसे परिभाषित करेंगे, धरोहर किसकी, धरोहर कैसी
2: जी?
1: और धरोहर के लिए व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का क्या दायित्व बनता है?
2: धरोहरों की हम चर्चा करें तो मोटे तौर पे ये स्पष्ट करना मुझे सबसे पहले ज़रूरी लगता है कि धरोहर दोनों तरह की मुख्य रूप से जो विभाजन किया जाता है कि मूर्त धरोहर और अमूर्त धरोहर, दोनों तरह के धरोहर होते हैं। मोटे तौर पे अमूर्त धरोहरों की ओर हमारा ध्यान कम जाता है, लेकिन हमारी जितनी परंपराएं, रीति रिवाज हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, वो हमारे अमूर्त धरोहर का हिस्सा होती हैं। और मूर्त धरोहर भी दो तरह से देखा जाता है। एक तो हमारा जो प्राकृतिक धरोहर है, जो नेचुरल हमारे हेरिटेज है, वो हमारे धरोहर के हिस्से हैं। और दूसरे बिल्ट या जो निर्मित धरोहर हैं, मनुष्य निर्मित धरोहर हैं, वो दूसरा सभ्यता का। और मनुष्य निर्मित में वास्तव में जो ह्यूमन एफर्ट, मनुष्य के उद्यम के कोई भी निशान अगर हैं, या वो कोई एक पाषाण उपकरण हो सकता है, वो कोई गुहा मानव वासी मानव होते थे उनकी चित्रकला का अवशेष हो सकता है, और वहाँ से लेके वो खजुराहो, ताजमहल से लेके हमारे अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो सिरपुर, राजिम, भोरमदेव
1: जी,
2: इस तरह के ये सभी हमारे धरोहर।
1: राहुल जी, जो अमूर्त धरोहर है, इसको और स्पष्ट करिए, क्या ये परंपरा की पालकी में सवार होकर के आती है?
2: बिल्कुल जी, अमूर्त धरोहर वास्तव में ये उस तरह से धरोहर के नाम पर मोटे तौर पर पहले जो खास ध्यान जाता था वो बिल्ट मनुष्य निर्मित धरोहर पर ही ध्यान जाता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हम प्राकृतिक धरोहरों पे, और फिर ये जो अमूर्त धरोहर हैं जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो वास्तव में जो लोक कलाएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो अपने आप में हमारे पूरी मानव सभ्यता की थाती होते हैं। बनारस की रामलीला, जो हम अगर यूनेस्को की बात कहें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व विरासत घोषित करता है, ऐसे धरोहर को जो न किसी एक व्यक्ति या एक समाज बल्कि पूरी सभ्यता के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए जो धरोहर हो सकते हैं, और उनके लिए जो चीज़ें तरह से पहचानी गई हैं, जिन पर विचार किया गया है, उनमें से बहुत सारे उदाहरणों में से एक बनारस की रामलीला है, जो माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी और शायद उसके पहले से भी वो परंपरा चली आ रही है, अभी भी आती है। ये भी कहा जाता है कि
1: कृष्णलीला
2: अपने आप में है, और हम अपनी पंडवानी को ऐसा कह सकते हैं, हमारा छत्तीसगढ़ का नाचा गम्मच। तो ये सभी जो फॉर्म्स हैं, ये हमारी धरोहर हैं।
1: चौबे जी, आप तो उस संस्थान से भी जुड़े हुए हैं जो कि इन धरोहरों का संरक्षण का काम करती, तो इसके विषय में एक पत्रकार की दृष्टि से यदि आप कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
3: हमारी धरोहर क्या है और उसके संरक्षण की जवाबदारी किसके प्रति, क्या हमारी जवाबदारी बनती है? तो विश्व धरोहर जो है, इसको धीरे धीरे क्या होता है, हमेशा आइडेंटिफाई किया, पहचान किया भी जाता है, नई नई धरोहर आती कि ये है। आपने जैसे कहा कि भाई हमारी अमूर्त जो होती है उसकी भी अब संरक्षण की तरफ ध्यान दिया जाने लगा है। कुछ प्राकृतिक भी होते हैं, पक्षी हैं, उनको भी संरक्षित किया जा रहा है, पेड़ पौधे जो हैं उनको भी संरक्षित करके बताया जा रहा है नई पीढ़ी को। जब तक हमें हमारे धरोहर के प्रति गौरव नहीं होगा, हम उसका संरक्षण का सोच भी नहीं सकते।

0: जब तक उसके प्रति लगाव हम समझे ही नहीं कि ये हमारे पूर्वजों की देन है, इसका संरक्षण हमें करना चाहिए। हमने ये सोच लिया है कि धरोहर संरक्षण की जवाबदारी सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो करे। लोग जाते हैं, देख लेते हैं, जाते हैं, अरे अच्छी है। लेकिन ये बताइए, कोई मकान मैं अपने से ले रहा हूँ, मान लीजिए मेरा मकान पुश्तैनी है बोलते हैं, वो पुश्तैनी मकान कितने सौ साल, कितने हजार साल, कितने साल, 70 साल पहले कब बना, उसमें क्या रिनोवेशन, क्या क्या तब्दीली की गई, ऐसा कोई डेट वाइज है क्या? हमारे हफ्ते मकान का ये नहीं मालूम कि इसमें सीलिंग कब लगी, इसमें फलानी चीज कब आई। विदेशों में उनके यहाँ इन चीजों को रखा जाता है।
1: आपने पेड़ की बात की, आप अगर जाएं शेक्सपियर के घर को देखें तो पेड़ अभी तक सुरक्षित रखा हुआ, कट गया है लेकिन सुरक्षित। भगवान बुद्ध को, सिद्धार्थ को या बुद्धत्व की प्राप्त हुई वो बौद्ध वृक्ष विश्व का कितने बड़ी धरोहर है,
2: आज भी सुरक्षित।
0: तो हमारा प्रति ये है एक प्रकार की जो हमें श्रद्धा है, परंतु जो एक इंस्टिंक्ट होना चाहिए उसकी रख रखाव के प्रति। आरंग हम तालाब देखने गए, वहाँ नवग्रह जो पचरी के रूप में काम आ रहा था एक जमाने में, बाद में लोगों ने उसको बताया कि नवग्रह है। तो हमारी जानकारियाँ वहाँ तक जाए, इसके अपने ऐतिहासिक कारण हैं। लेकिन आपका कहना सही है कि जो धरोहर हैं, एक तो उनकी महत्व को और उसके प्रति एक लगाव
1: जी,
0: तब उसको हम बचा सकते हैं।
1: प्रभाकर जी, आपने श्रद्धा की बात की, हसन भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि केवल श्रद्धा से नहीं, एक वैज्ञानिक दृष्टि भी चाहिए, एक विवेकपूर्ण दृष्टि भी चाहिए धरोहर को पहचानने के लिए और धरोहर के संरक्षण के लिए। वो विवेक जो है आपका, वो ज्ञान है जो, वो आपको कहाँ तक मदद करेगा, और उसमें थोड़े से उदाहरण देते हुए बताइए।
2: नहीं नहीं जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि धरोहर जो है वो ऐतिहासिक मूल्य है हमारा, हमारी पहचान है, हमारी अस्मिता है, हमारी बका है, हमारी तहजीब है, हमारा तमद्दुन है, ये सब कुछ नैयर जी धरोहर में शामिल है। अगर हमने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत कॉन्शियस होके, बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत जागरूकता के साथ इसके संरक्षण के लिए कार्य करने चाहिए। अब आप देखिए, मैं कभी कभी जाता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है, मैं पुरानी इमारतों में जाता हूं, दायित्व सरकार का तो है, सरकार ने बहुत सारी संस्थाएं बनाई हुई हैं, लेकिन हमारा खुद का दायित्व भी है कि हम उसका संरक्षण करें। मुझे अफसोस होता है कि जब लोग देखने जाते हैं, चाहे ताजमहल हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो दूसरी इमारतें हों, चाहे वो दूसरी संस्थाएं हों, और वहां गंदगी जब फैलाते हैं तो बहुत दुख होता है।
1: नहीं, अपना नाम लिख के आ जाते हैं।
2: नाम लिख के आ जाते।
0: एक सुझाव था, पंचायती राज हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और ताकतवर होते जा रहा है। पंचायतों को अभी लाइब्रेरी भी बनाने के लिए सरकार को चाहिए, पंचायतों को ये दायित्व दे कि अपने क्षेत्र की, उस पंचायत एरिया की जो भी ऐतिहासिक मूर्त अमूर्त धरोहर है उसके संरक्षण की जवाबदारी पंचायत को दे दी जानी चाहिए, और पंचायत में एक डिपार्टमेंट खोल देना चाहिए जो कि पुरातत्व से संपर्क रखे और उसको जानकारी दे। और ये जनता को मालूम होना चाहिए कि फलाने कोई इलाके में, कोई गांव में, कोई तहसील में, कोई कस्बे में कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी धरोहर है, तो ये पंचायत को भी जवाबदारी दी जाए।
2: चौबीजी पूरा पुरातत्व विभाग मौजूद है, वो संरक्षण के कार्य कर रहा है, उसके अलावा उसकी सह संस्थाएं भी हैं। जैसे मैं थोड़ा सा एक उदाहरण दूं, जैसे वक्फ बोर्ड है जो पुरानी मस्जिद है, जो पुरानी 200 साल 1000 साल पुरानी मस्जिद, उनका संरक्षण करता है, उनके संरक्षण के दायित्व का निर्वहन करता है वो। लेकिन सवाल यह है कि हम जो व्यक्तिगत रूप से, जो आपने ग्रामीण अंचल की बात कही, हमारी खुद की अपनी जिम्मेदारियां भी तो संरक्षण के लिए हैं, सरकार भी कर रही है, संस्थाएं भी कर रही हैं, से संस्थाएं भी कर रही हैं, लेकिन हमारा अपना खुद का दायित्व भी तो है कि हम उसका निर्वहन करें उसके संरक्षण के लिए। देखिए नैयर जी, एक बात याद रखिए, ये जबरी भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। अगर हम उन लम्हों में खता करते हैं कि हम अपने संरक्षण को बर्बाद करते हैं, हम अपनी धरोहर को बर्बाद करते हैं, उसको नष्ट करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी।
3: ठीक कह रहे हैं आप। ये जो हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो जो पक्ष हमारी चर्चा में भी रेखांकित हो रहा है वो स्पष्ट करने की कोशिश करें, तो हम दो चीज़ों पर बात कर रहे हैं और यही दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिन पर ध्यान देना है। एक तो संरक्षण की वो स्थितियाँ हैं जो स्मारकों को या हमारी धरोहरों को नुकसान होने से रोकने, जो प्रोहिबिशन है, रोक कर उसका संरक्षण किया जा सकता है
2: जी।
3: और वहाँ हमारी ये ज़रूरत होती है कि हम

0: से, उनकी जागरूकता से, जैसा चौबे जी ने कहा कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से और कुछ एनजीओस के माध्यम से ये कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहां पुरातत्व विभाग का या विशेषज्ञों का या ऐसे गैर शासकीय संस्थाएं जिनके पास विशेषज्ञता है, उनकी ज़रूरत होती है। जब हम उसके अनुरक्षण की बात करते हैं, उसके परिरक्षण की बात करते हैं, अनुरक्षण और परिरक्षण दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमको कहीं ना कहीं टेक्निकल नो हाउ, हमको एक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, और उस जगह जिम्मेदारी उन्हीं संस्थाओं की होती है। और मुझे ये कहने में, उल्लेख करने में हमेशा गर्व होता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, हमारे देश का पुरातत्व विभाग, इस मायने में यूनेस्को की दृष्टि में भी सबसे विश्वसनीय संस्था है।
1: एक मेरा सुझाव था, जो भी अखबारों में, मैगजीन में किसी चीज़ आ जाती है, छप जाती है, इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। कई बार गलत जानकारियां भी होती है, अवैज्ञानिक भी होती हैं, कोई गया देखे इतने साल का पुराना है, तो इसको तुरंत पुरातत्व विभाग को कॉग्निजेंस लेकर के, ध्यान में ला करके इसके बारे में सही तथ्य, नहीं तो क्या होता है, किंवदंतियां बनते जाती हैं।
2: चौबे जी, बहुत सारी चीजें तो किंवदंतियां पहले शुरू होती हैं और उनकी उंगली पकड़ करके फिर तथ्यात्मक अध्ययन और अनुसंधान
1: होना चाहिए।
3: लेकिन नहीं, ये बहुत सारी धरोहर हमारी जो जैसे गुफाएं निकलती हैं, प्राचीन गुफाएं होती हैं, त्यागज्ञ जो है वो मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं और उनको खोजते हैं, लेकिन हम उनको संभाल नहीं पाते, उनका संरक्षण नहीं कर पाते। दुख इस बात का है कि हम उसको खुद ही बर्बाद कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। सही संस्थाएं हैं, सब कुछ है, जागरूकता है, सब कुछ है, लेकिन अफसोस ये है कि हम अपने इतिहास को कायम नहीं रख पा रहे हैं। हम
0: इस स्थिति को स्वीकार करने में हमें बिल्कुल हिचक नहीं होनी चाहिए कि जो हमारे संसाधन हैं और जो स्थितियां या वस्तुएं हैं, इनके बीच थोड़ा ऐसा अनुपात है कि हमारे संसाधन, चाहे वो वित्तीय संसाधन हो या तकनीकी और विशेषज्ञता के संसाधन हो, उनकी अपनी सीमा होती है, और उन सीमाओं में हमेशा होता यह है कि हमें प्राथमिकता तय करनी होती है कि प्राथमिकता की दृष्टि से हम किन स्मारकों को, किन धरोहरों को विशेष महत्व दें। ये एक हमारी सीमा है, इसमें कोई
2: तो किस प्रकार से करें,
0: और जो महत्वपूर्ण है उस पर निश्चित रूप से दोनों स्तर पर जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, कि एक स्तर तो वो होता है कि हम लोगों को जागरूक करके उसके संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ें, और दूसरा विशेषज्ञता की, जहां स्थिति ये होती है कि कोई क्षरण हो रहा है, उसको क्षरण से रोकना है, या कोई हिस्सा टूट गया है। छत्तीसगढ़ की हम बात करें, महेशपुर एक ऐसा स्थान है सरगुजा का, जहां ढेर सारे मंदिरों के अवशेष थे, और अवशेषों को न सिर्फ उनका उत्खनन किया गया, बल्कि उत्खनन करके उन्हें रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया, और रिकॉन्स्ट्रक्शन जो हुआ ठीक उन्हीं मानकों के आधार पर हुआ। और ऐसे काम रतनपुर में इस तरह का काम किया गया है, डमरू एक स्थान है जहां इस तरह का काम किया गया है, जहां हम उन्हें फिर से रीस्ट्रक्चर करके उनके प्राचीन स्वरूप।
3: आप सही कह रहे हैं सिंह साहब, हमारी धरोहरों में, सही मानों में हमारी पहचान छिपी हुई है, हमारा अपना जो भूमिका है वो हम उसको अदा नहीं कर पा रहे हैं। मुश्किल ये है ना कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे। मेरा एक ही प्रश्न है, धरोहर हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, सामाजिक धरोहर हैं, पुरातत्व धरोहर हैं, इमारतें हैं, संस्थाएं हैं, संस्कार हैं, ये सब कुछ तो हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है?
2: व्यक्ति से शुरू होती है, और मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग जुड़ते गए,
3: कारवां बनता गया,
2: तो ऐसे ही होता है। एक चीज और है कि बहुत सारे अतीत के जो हमारे स्मारक हैं, उनके साथ में बहुत सारी आस्थाएं जुड़ी हुई, आस्थाओं के साथ में मिथक भी जुड़े हुए हैं। मिथक यथार्थ और ज्ञान विज्ञान, इनको कैसे अलग करें, थोड़ी सी बात आप करें, उसके बाद राहुल सिंह एक चूंकि पुरातत्ववेत्ता हैं, वो उसको और स्पष्ट करेंगे।
1: अपनी आज़ादी के इतने साल हो गए और हमें अपने धरोहर का धीरे धीरे उसका गौरव, वो समझदारी धीरे धीरे चेतना बढ़ भी रही है, यानी आज से 50 साल पहले और आज में आप फर्क करें तो काफ़ी चेतना लोगों का टूरिज्म के प्रति भी अब काफ़ी लोग आने जाने लग गए हैं, देखने लग गए हैं। इसकी जवाबदारी मतलब जागरूकता, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राथमिक शाला से बच्चों को उस एरिया की, उस क्षेत्र की जो पुरातत्व की चीज़ें हैं, वो प्राथमिक में एक आध पाठ होना चाहिए कि तुम्हारे क्षेत्र में ये है और उसका संरक्षण, तो उसमें एक जागरूकता हो। हमारे गाँव में

0: आपके गांव में भी जाके देखो रखा है, तो उसको हम किसी रूप में धरोहर के रूप में, गौरव के रूप में नहीं देखते, आस्था के रूप में देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। हम जो बात कह रहे हैं वो चेतना होनी चाहिए कि हमारी धरोहर है, इसको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया, इसको संरक्षित किया जाए।
1: विश्व के अनेक पर्यटक भारत में यहाँ के आर्कियोलॉजिकल जो टूरिज्म है उससे चे हुए चले आते हैं। तो वो जो पुरातात्विक पर्यटन है उसकी दृष्टि से क्या क्या हो रहा है देश में, ये राहुल जी आप बताएं।
2: जी, ये दोनों चीजें जोड़ के देखें हम, एक तो जिम्मेदारी किसकी, जिम्मेदार कौन। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज है धरोहर हमारी कि जिसकी जितनी समझ है और नहीं है तो उसे जागरूक करने का प्रयास, और व्यक्ति से लेकर संस्थाएं, शासन, सभी की अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने अपने स्तर पर दायित्व हैं। और जहां तक पर्यटन को जोड़ के हम बात करें अपने धरोहरों की, तो यहाँ जैसा इस वर्ष इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि सस्टेनेबिलिटी जो धरोहरों का टिकाऊपन है, वहनीयता है या सह्यता है, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो दरअसल ये दोनों आपस में कई बार चीज़ें एक दूसरे के विपरीत दिखती हैं, होती तो नहीं है लेकिन दिखती हैं। वो ये कि बहुत ज़्यादा, चाहे वो फॉरेस्ट का एरिया है, वो भी हमारी एक विरासत है, तो चाहे वो फॉरेस्ट का एरिया है, चाहे कोई पुरातात्विक स्मारक है, अत्यधिक पर्यटक दबाव से भी उसके संरक्षण को खतरे होते हैं।
1: दो उदाहरण अपने सामने में
2: जी,
1: एक तो हमारा आप सरपुर
2: जी
1: और
2: जी,
1: दूसरा सारनाथ, आप देखिए दो अलग अलग। इसके लिए पूरा जो बौद्ध आस्था रखने वाला विश्व है उनके देश आते हैं, न केवल आते हैं, वहाँ वो एक वित्तीय सहायता अनुदान भी देते हैं, उससे भी विकास होता है
2: जी।
1: अतीत की धरोहर का संरक्षण आवश्यक है, इससे कोई इनकार नहीं करता। संरक्षण कैसा हो इसके ऊपर विस्तृत विचार की गुंजाइश बनी है। ये व्यक्ति से प्रारंभ हो सकता है और व्यक्ति से प्रारंभ होता ही है, ये समाज का दायित्व होता है, ये किसी संस्थान की भी जिम्मेदारी हो सकती है और कार्य राष्ट्र की उसकी भी जिम्मेदारी होती। तो इसके लिए कौन कहाँ कितनी भूमिका अदा कर सकता है, आप प्रभाकर चौबे जी आप मीडिया के व्यक्ति हैं, मीडिया की भूमिका आप संक्षेप में बताएं कि मीडिया इसके संरक्षण के लिए क्या कर सकता है।
0: मीडिया की तो बहुत बड़ी जवाबदारी है, आज तो मीडिया का बहुत व्यापक प्रभाव है ना, जिसको सोशल मीडिया को भी हम ले सकते हैं, और निश्चित रूप से जागरूक करने में उसकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। लेकिन बोगस सिटी ना हो, बाकायदा तथ्यात्मक अधिकृत चीजें ही प्रामाणिकता के साथ खोजबीन करके पूरी तैयारी से वो लोगों तक जाए, तो देखना उत्सुकता बढ़ती। आप हम जब जाते हैं तब कोई किसी ऐतिहासिक धरोहर की चीज देखने कहीं भी जाए, सिरपुर चले गए, बाकी ग्रामीण जन जो होता है वो उसको कितने अजूबा ढंग से देखता है, देखने की कोशिश करता है।
1: पंचायत के स्तर पर भी उसको शुरू
0: हाँ पंचायत, तो वो कितने उत्सुकता से देखता रहता है, आपने ध्यान उनकी आंखों जिज्ञासा को देखिए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो उसको गलत चीज ना दें हम। पत्रकारिता का ये है कि गलत चीजें ना जाए, और संरक्षण के लिए जागरूक बनाने का मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है।
1: इस पर थोड़ा आगे, आप भी चूंकि मीडिया के जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपका मीडिया बड़ा व्यापक है।
3: नहीं जी, मैं चौबे जी की बात ही को आगे बढ़ाता हूँ कि चौबे जी ने कहा था कि हमें कोर्स में भी ये सब चीजें शामिल करनी चाहिए। देखिए, जागरूकता के साथ साथ दायित्व बहुत जरूरी होता है, एहसास, दायित्व का एहसास, जिम्मेदारियों का एहसास जो है, और ये जितना सुदृढ़ होगा हमारे अंदर उतनी ही धरोहर संरक्षित होगी।
1: पाठ्यक्रम में तो स्कूल के लोग ले जाते हैं ना उन स्मारकों
3: पर, लेकिन वो कह रहा है कि हम पढ़ के उसको भूल जाते हैं, और बच्चे पाठ्यक्रम में है, सब चीजें शामिल है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन हमें इसको और जागरूक करना पड़ेगा, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हमें जागरूकता के लिए और अधिक कार्य करने होंगे। जैसे नाटकों के द्वारा जागरूकता पैदा करें हम, है ना, लोक संगीतों के द्वारा जागरूकता पैदा करें हम, भाषणों के व्याख्यानों के द्वारा जागरूकता पैदा करें हम, और बच्चों को स्कूल से ही जागरूकता सिखाएं और उस दायित्व का एहसास दिलाएं, उस जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं कि ये धरोहर है जो हमारी प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है, यह हमारे लिए अमूल्य है, यह हमारी पहचान है, यह हमारी अस्मिता है, यही हमारी धरोहर है, यही हमें पहचान देती है और यही हमारी यादें हैं।

0: इसमें हमारे संस्मरण, हमारे पुरखे जो हैं उनकी यादें शामिल हैं।
1: आप ठीक कह रहे हैं।
2: एक चीज मैं साहब इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो वेकेशन होते हैं स्कूलों के कॉलेज के, वो एजुकेशनल ट्रिप होता था पहले।
0: बिल्कुल सही,
2: 40 दिन की छुट्टी, 25 दिन, वो शिक्षा को बढ़ा, लोग जाते थे घूमने 25-25 दिन का, तो एक एजुकेशनल ट्रिप, दूसरे तरह से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये एजुकेशनल ट्रिप जो होते हैं, छुट्टियां जो होती है, एजुकेशनल ट्रिप के रूप में काम आती थी। उसी समय हम लोगों के, लोगों ने देखा होगा दिल्ली चले गए, आगरा चले गए, यहाँ चले गए, बस्तर चले गए, बहुत पहले। जो स्कूल के अगर बच्चे जा रहे हैं कॉलेज के खासकर, उनको 80% कंसेशन रेलवे देता था एजुकेशनल ट्रिप के लिए नाम पर। हमने लोगों के समय था
1: नहीं, ठीक है, ये तो उसी प्रकार से है कि जैसे आप क्षेत्र से शुरू करिए और राष्ट्र तक पहुंच जाइए। जो हमारे चारों धाम हैं वो भी अपने आप में आस्था से जुड़े हुए स्मारक तो हैं ही, उसके अलावा वो राष्ट्रीय एकात्मता के भी एक बहुत बड़े साधन है, और उन पर बहुत बड़ी तादाद में पूरे विश्व में आस्था से जुड़े हुए स्मारकों के पर्यटकों की संख्या बहुत बड़ी है। तो मैं इसको, हम सोचते हैं कि समेटने के लिए अब राहुल सिंह जी से, कि इसको वैज्ञानिक दृष्टि से केवल इसको स्मारक के संवर्धन संरक्षण और उनको प्रकाश में लाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, किस प्रकार से उसका निर्वाह किया जाना चाहिए या किया जा रहा है, इस पर बात करके हम समापन की तरफ बढ़ेंगे, और आप इसको पूरे अधिकार पूर्वक और पूरी प्रामाणिकता के साथ बात करें।
3: मैं प्रयास करता हूँ
0: जी
3: पे उस ढंग से कह सकूँ जैसे आपकी अपेक्षा है। धरोहरों की जानकारियाँ जो आती हैं, जैसा हम अपनी बातचीत में कह रहे हैं, अलग अलग स्रोतों से आती हैं, तो पहला जो उनका स्तर होता है कि उन धरोहरों की, उन जानकारियों की पुष्टि, वो सबसे आवश्यक होती है। और उस पुष्टि में, जैसा कि नैयर साहब जिक्र कर रहे थे, कि उसकी पुष्टि में न सिर्फ तथ्य जरूरी होता है, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई आस्था, उसके साथ जुड़ी हुई मान्यताएं, विश्वास, कहीं ना कहीं वो उतना ही उसका एक आवश्यक अंग होता है कि हमारी आस्था क्या। जैसे ये मैं खासतौर पे उल्लेख करना चाहूँगा कि जलियांवाला बाग की हम बात करें, कि जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और एक, हम उसे विश्व धरोहर कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हम जिन चीजों को धरोहर के रूप में चिन्हित करते हैं, जरूरी नहीं है कि वहां वस्तुतः फिजिकली भौतिकतः कुछ हो, लेकिन अगर कोई घटना भी वहां हुई है तो वो अपने आप में
0: अमूल्य,
3: अमूल्य है, एक धरोहर है। आज तो वहां उस तरह से कोई चीज वस्तुतः भौतिकता नहीं रह गई है,
1: पर वो
3: लेकिन
1: गोलियों
3: के निशान है,
1: बचा करके
3: रखा गया है, लेकिन उससे ज्यादा गंभीर वो हमारी स्मृति है
0: जी।
3: जो स्मृति वहां है, तो वास्तव में
2: दंडी मार्च।
3: मेरे इस उदाहरण के पीछे मेरा कहना सिर्फ ये है कि जहां हमारी आस्था है, जहां हमारा विश्वास है, जहां हमारी स्मृति है, वो भी हमारे धरोहर का हिस्सा है, क्योंकि हमारी स्मृति ही वास्तव में जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो एक समष्टि का निर्माण होता है, वही मानव सभ्यता का प्रथम और अंतिम लक्ष्य होता है, और ये समष्टि निर्मित होती है इन्हीं मान्यताओं से, इन्हीं धरोहरों से।
1: राहुल सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया, प्रामाणिकता के साथ में कही। दरअसल दृष्टि, आस्था, इन सब के साथ में यदि हम उसके विज्ञान सम्मत तथ्य जोड़ देते हैं, तो वो धरोहरों के संरक्षण में, धरोहरों के पर विश्वास करने में और उसके प्रति लोगों को और अधिक आकर्षित करने में निर्णायक एक भूमिका अदा करता
3: है। हमें बड़े सहज सरल रूप में उसे लोगों तक ले जाने की जरूरत होती है।
1: बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, धरोहरों का संरक्षण, जिम्मेदारी किसकी। प्रतिभागी थे हसन खान, प्रभाकर चौबे और राहुल सिंह। संचालन कर रहे थे डॉक्टर रमेश नैयर। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 12 मई 2000

26 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा गर्मी में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन। विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निधि बंजारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय भाटागांव रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 400

का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 12 मई 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे दें, सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण सुनिएगा सुबह 11:10 पर। पब्लिक स्पीक सुनिएगा 9:30 पर और स्पोर्ट्स कैन सुनिएगा 8:30 पर। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 9:00 सुनिएगा वार्ता साइबर लिटरेसी और हिंदी में एआई का उपयोग। वार्ताकार होंगी डॉक्टर आकांक्षा शराफ।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर कलाकार होंगे मनोज वर्मा। शाम 6:30 पर सुनिएगा दिनेश निम्बालकर के स्वर में सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:00 सुनिएगा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गाया राग मियां की तोड़ी में ख्याल। इस कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गाया राग बिहाग में ख्याल।

लोक रंजनी में दोपहर 2:30 पर सुनेगा पूनाराम निषाद और साथियों के स्वर में पंडवानी। शहरी महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में दोपहर 1:30 पर आज की बात का विषय होगा सोशल मीडिया और महिलाओं की आवाज। सुनिएगा फरमाइशी क्रम आपके अनुरोध से और टिप्स।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है वार्ता साइबर लिटरेसी और हिंदी में एआई का उपयोग। वार्ताकार हैं डॉक्टर आकांक्षा शराफ।
1: आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा, साइबर साक्षरता जिसे हम साइबर लिटरेसी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, इनका महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है और इनका सही उपयोग हमारे समाज को सुरक्षित, सशक्त और जागरूक बना सकता है। साइबर साक्षरता का अर्थ केवल इंटरनेट का उपयोग करना नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित, जिम्मेदार और समझदारी से इस्तेमाल करना है। आज के समय में जब हर व्यक्ति मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं से जुड़ा हुआ है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम ऑनलाइन खतरों जैसे

टू स्पीच जैसी तकनीकों के माध्यम से भाषा की बाधा को दूर किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोग डिजिटल शिक्षा से जुड़ पा रहे हैं। आज बच्चे स्मार्टफोन्स या डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग करके अपनी पढ़ाई को एक अलग स्तर पर लेके जा रहे हैं, जहां पे उनको ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। जैसे कि अभी जो हम 11-12 में जो बच्चे कोचिंग करते थे, वो आज ऑनलाइन मीडिया की सहायता से या स्मार्टफोन्स या डिवाइसेस डिजिटल डिवाइसेस की सहायता से वे अपने घर बैठे ही उसको कोचिंग को कर सकते हैं और उससे उनका समय तथा माता पिता के साथ रहने से जो उनका एक मानसिक संतुलन है वो भी बना रहता है। इसलिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई जितने भी डिजिटल एप्स हैं या वर्चुअल ट्यूटर्स हैं, स्मार्ट लर्निंग सिस्टम्स हैं, उनका उपयोग बच्चों के हित में करना चाहिए, जिससे बच्चे भी बहुत सारी चीजों को बिना कहीं बाहर जाए घर बैठे ही वे सीख सकते हैं। उद्यमिता के क्षेत्र में भी एआई छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक है। एआई के माध्यम से बाजार का विश्लेषण, ग्राहक व्यवहार की समझ, हिंदी में कस्टमर सपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जिससे व्यवसाय को बढ़ाना और ग्राहकों से जुड़ना आसान हो गया है। विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे शहरों के उद्यमियों के लिए यह तकनीक बहुत लाभकारी है, क्योंकि वे अपनी भाषा में डिजिटल टूल्स का उपयोग करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हिंदी में वॉइस कमांड जैसी तकनीकें डिजिटल सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाती हैं, जिससे वे लोग भी आसानी से तकनीक का उपयोग कर सकते हैं जो टाइपिंग या अंग्रेजी भाषा में सहज नहीं है। आज हम देखते हैं कि हम घर बैठे ही अगर हमें कुछ अपने ग्रोसरी से रिलेटेड या राशन सामान से कुछ खरीदना है तो हम बिना बाहर जाए सिर्फ एक ऐप के थ्रू राशन हमारे घर पे पहुंच जाता है, दूध हमारे घर पे पहुंच रहा है। तो ये जो एप्स हैं, इनको हमें बहुत सावधानी पूर्वक कौन से एप्स को उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एआई छोटे व्यापारियों या उद्यमियों को एक नई ऊंचाई तक तो पहुंचा रहे हैं, परंतु हमें यह भी जान लेना आवश्यक है कि आजकल बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जो हमें हमारे बैंक अकाउंट्स के डिटेल शेयर करने पे या ओटीपी शेयर करने से, पासवर्ड शेयर करने से हम किसी खतरे में भी पड़ सकते हैं। इसलिए हमें इसे साइबर फ्रॉड से बचना, लेकिन एआई को भी यूज करते हुए किस तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में ये दोनों का सामंजस्य बैठा के एक अच्छे समाज का विस्तार कर सकते हैं। अभी हम एआई के माध्यम से हिंदी में जैसे कंटेंट जनरेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें शिक्षा, मीडिया, ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में हिंदी भाषा का विस्तार हो रहा है। अब लोग आसानी से हिंदी में लेख, ब्लॉग और शैक्षणिक सामग्री तैयार कर सकते हैं, जिससे ज्ञान का प्रसार अधिक व्यापक स्तर पर हो रहा है। आजकल जो हमारे जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे एप्स हैं या वेबसाइट्स हैं जिसमें एआई के माध्यम से कंटेंट जनरेट करके उनके ब्लॉग्स लिखे जा सकते हैं। उनके आधार पर आप वेबसाइट्स में जो आपके बच्चे हैं उनके लिए आप स्कूल का, कॉलेजेस का जो भी पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट है वो भी आप उसके आधार पर बच्चे पढ़ सकते हैं और माता पिता खुद भी

0: शेयर हो सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या उससे सीख रहा है। तो इसलिए हमें एआई जो है उसका बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। और इस प्रकार यदि हम साइबर साक्षरता को भी बढ़ावा दें, जागरूकता फैलाएं और एआई तकनीकों का सही और जिम्मेदार तरीके से उपयोग करें, तो हम एक सुरक्षित, समावेशी और डिजिटल रूप से सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमें हर व्यक्ति को साइबर साक्षरता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इनके लिए अवेयरनेस कराना और इनको जागरूक बनाना कि वो किस तरीके से साइबर फ्रॉड से बच के और डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन सके। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता साइबर लिटरेसी और हिंदी में एआई का उपयोग। वार्ताकार थी डॉक्टर आकांक्षा शराफ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं एक सूचना सुनिए, आगामी मंगलवार 12 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा गर्मी में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन। विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निधि बंजारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय भाटागांव रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 12 मई 2026 को सुबह 11:30 से दोपहर 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 होने को हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

0: फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में, कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर का संगीत था। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। फिल्म होली आई रे का गीत सुनिए मुकेश की आवाज में, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश, नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

0: मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत अग्नि परीक्षा। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में, शब्द रचना योगेश की और सलील चौधरी का संगीत।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत नरम गरम। इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में, गुलजार के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 9:40 होने को है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं मनोज वर्मा। तो पहले सुनते हैं वसीम बरेलवी का कलाम मनोज वर्मा की आवाज में।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थे मनोज वर्मा। एफएम बैंड और मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए आज से शुरू हो रही है नामांकन की प्रक्रिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर से शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री की यह अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग 126

डॉलर प्रति बैरल हो गई है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की, क्योंकि देश बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागतों से आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों में आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। मंदिर में 9 मई से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ

0: सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। मंदिर में 9 मई से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही हैं। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व में आज का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री द्वारा मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक होगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे देश में स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज बालोद जिले के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कपिलेश्वर शिव मंदिर में भी स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि कपिलेश्वर शिव मंदिर में आयोजित होने वाले इस विशेष आयोजन में श्रद्धा, संस्कृति और भारतीय विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। वहीं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर बलरामपुर जिले के ऐतिहासिक स्थल डीपाडीह सामंत सरना में भी आज स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा और यह कार्यक्रम नई पीढ़ी में सांस्कृतिक जागरूकता और स्वाभिमान की भावना को सशक्त करेगा। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों और आम उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी, जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत कल जशपुर और मुंगेली जिलों में कई विकास कार्यों की सौगात दी। जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के ग्राम कलीबा में उन्होंने 16 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें उच्च स्तरीय पुल, आधुनिक हाट बाजार, फल सब्जी मंडी, स्कूल भवन और महतारी सदन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, शिक्षा, कृषि, विपणन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मुंगेली जिले में मुख्यमंत्री ने 353 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक लागत के 414 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने डॉ भीमराव अम्बेडकर, बाबा गुरु घासीदास, महाराणा प्रताप और भक्त माता कर्मा की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। नवा रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल टी20 क्रिकेट मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए। जवाब में 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत खराब रही, लेकिन कुणाल पांड्या की पारी ने टीम की जीत के करीब पहुंचाया और फिर आखिरी बॉल पर रसिक सलाम ने 2 रन लेकर टीम को जीत दिलाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए आज से शुरू हो रही है नामांकन की प्रक्रिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गाया राग मियां की तोड़ी में ख्याल। विलंबित रचना 1 ताल में, द्रुत रचना 3 ताल में और तराना 1 ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबला संगति की है गुलाम सुल्तान खां ने। सारंगी पर हैं लियाकत खां और हारमोनियम पर संगत की है मशकूर हुसैन ने।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गाया राग मियां की तोड़ी में ख्याल, आपके साथ तबला संगति की गुलाम सुल्तान खां ने, सारंगी पर थे लियाकत खां और हारमोनियम पर संगत की मशकूर हुसैन ने। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

फिल्म माया का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। सलील चौधरी की बनाई धुन थी और शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की। रविंद्र जैन के गीत और संगीत से सजी फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए का गीत लीजिए सुनिए। आवाज़ है हेमलता की।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे,
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। वारिस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, वर्मा मलिक के बोल और उत्तम जगदीश का संगीत।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे संतोष आनंद की शब्द रचना, संगीत था आनंद मिलिंद का। अब सुनिए दो दिलों की दास्तां, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में, अनजान के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: चित्रपट संगीत आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात के सोमनाथ में हैं। वे सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री बाद में वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे शाम को सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में स्वागत कक्ष, नागरिक सुविधाएं, भोजन कक्ष और ई पुस्तकालय सहित विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनके बीच विभागों के बंटवारे की उम्मीद है। नए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की ये पहली के लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हिमंता ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। नवनिर्वाचित तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलक वेत्री कड़गम के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार को 13 मई से पहले सदन में बहुमत साबित करना होगा। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भटियात उपमंडल में काकिरा लाहरू सड़क पर एक कार दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में से 5 गुजरात के निवासी थे, जबकि चालक मंडी जिले का रहने वाला था। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति में सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने

0: उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस दिन पोखरण परीक्षण क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किए गए थे, जो देश की आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति की यात्रा में एक निर्णायक क्षण साबित हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है, जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़े शांति प्रस्ताव पर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता न होने के कारण घरेलू शेयर बाजार में आज 1.25% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1089 अंक गिरकर 76,240 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। श्रोताओं, थोड़ी देर बाद सुनिएगा सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11:10 होने को हैं। सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: And the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbhabhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbhabhishek?
1: नमस्कार, आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
2: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
1: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण
2: जी,
1: अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
2: जी।
1: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई

0: व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है, इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफरिंग प्रेयर्स एट द हिस्टोरिक सोमनाथ तीर्थ व्हिच इज द फर्स्ट ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स एंड टुडे The 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first president of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parva, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tell us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the सोमनाथ मंदिर।
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से, और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है, और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है, साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन जो अलग अलग ये बनाएंगे। वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी, और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था, उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
2: Absolutely right, Neelam, and as you mentioned that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny.
3: Manaha Shiva Sankalpa Mastu Shumukhascha Ekadanta

विष्णु श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्ता मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखस्य एकदन्तस्य

विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैक

0: विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक

0: चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम। इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं। इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए। और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम ये कारण यदि समझ सकें तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है। इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे। इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है। मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर। सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है। अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायु सेना के जो यान है वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy, Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha, built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna, Dev and Siddharaja Jaisimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate, and on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of

0: entire India that responded enthusiastically.
1: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है सोमनाथ मंदिर हमारे समृद्ध विरासत का प्रतीक है आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे आइए आपको सुनवा रहे हैं एक भजन

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: नीलम, द टाइम फॉर द सूर्य किरण, द एरोबैटिक टीम, द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT, the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Ajay Dasharathi, performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed! And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे, तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है, वहीं ऊ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है, और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है, इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए, मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाएं तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व।

0: सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाएं तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहाँ हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है।
1: जी, तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देख कर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्यूरेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल ऑन द 11th ऑफ मे 1951। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड ऑन दैट ओकेजन सेड दैट द सोमनाथ टेम्पल प्रोक्लेम्स टू द वर्ल्ड दैट एनीथिंग विथ अनपैरेलल्ड फेथ एंड लव कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ही एक्सप्रेस्ड द होप दैट the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat Shreshth Bharat.
1: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि

0: जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं, और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधाएं रहें, और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालुगण हैं, वो अपने समय को यादगार बनाते हुए समय को एंजॉय कर पाए, वो तस्वीरें ले सके। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सके। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी विशेष रूप की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं, अब वो भी सोवेनियर के रूप में मिल सके। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है, और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है, उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है, और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर के में। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार।
1: जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held a 1 kilometer road show up to Hamirji Gohil Circle. Mr. Modi greeted the huge crowd gathered during the show. Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi also accompanied him during the roadshow. While proceeding to the Somnath Temple, the Prime Minister was led by rhythmic beats of the Damru and greeted by devotees. The Prime Minister paid floral tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at his statue. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a part.

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अमित त्रिवेदी और साथियों के स्वरों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत अमित त्रिवेदी का है, फिल्म का नाम है काई पोछी।

पिंक इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज में अय्या इस फिल्म का गीत, अमित त्रिवेदी का संगीत, बोल अमिताभ भट्टाचार्य की।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोकरंजनी। आज इस कार्यक्रम में सुनिए पंडवानी। कलाकार हैं पुनाराम निषाद और साथी। इसके अंतर्गत सुनिए आदि पर्व। प्रसंग है भीम हिडिम्बा विवाह बकासुर वध।

भीमसेन हाँ पानी ले लेके इस देखते हाय मोर भाई माता है भुया में सोहे हमन पांच जन बेटा हन तो धिक्कार है फिर भीमसेन ला कुछ करत नहीं बनीस बिरासन लेके भीमसेन है।

आ तोर का नाम है मोर भीमसेन। हिडम्बी कथे आज तक मोर बिहाव नहीं होए, मैं तोला पति बना हूँ। भीमसेन की थी से तो चिंता मत कर, अच्छा चल जल्दी जल्दी गांठ जोड़ के घूम जथन। ताहल दोनों जन गांठ ला जोड़ के घूमे लगी आगा।

0: एति हिडम्बा दानो सोचा थे अरे अतिक बिल्ली किसी नहीं आवा थे चलो भला तीर में जाके देखते। अच्छा ये तो पंसुआरत में पड़ गए गुस्सा हो गए कि थे हिडम्बी ठहर दा तोला मारे बिना नहीं छोड़ो।
1: अच्छा
0: मोराया

जौने छोड़े गाड़ा घाट तो उन्हें हो गया आगू बाढ़। उत्का में हिडम्बा आगे, हिडम्बी ते मोर हाल अभिघन कर दे, तोला मारे बिना नहीं छोड़ो। तो भीमसेन मुस्करा दी, अच्छा कौन ला मारबे? अरे मैं अपन बहनी ल कहत हूँ। ठीक है, अतेक दिन ले तोर बहनी ला गारी दे, चाहे मारे चाहे डांटे, अब मत चिंता कर, यह तोर बहनों ही आगा।

अरे खबरदार, का हो गया? अरे तेरे से मजाक करे शुरू कर दे, मालूम नहीं है का? ताल का कर ले बे, मालूम नहीं है।

0: भीमसेन आए भी नहीं आए। अरे ये कहाँ की लड़की दिव्यस देवतास ते कौनस? नहीं दाई, मैं देवी न हूँ, न मैं देवता न हूँ, न मैं अप्सरा न हूँ, मैं जंगल के रहिया हूँ। मोर नाम हिडम्बी, मोर भाई के नाम हिडम्बा, का करूँ? जा पकड़ के लावे कहीस, मी है पकड़ा गया।
1: अच्छा
0: ताली मोर भाई ऐसे और तोर बेटा सन दोनों।

हाय अर्जुन, अरे जा तो रे, देख तो रे बेटा, जा तो भीमसेन हाँ हिडम्बा दानो सन लड़ा थे, कैसे हो ही थे? दाई चिंता मत कर, मैं जात हूँ। चरण

0: मैं आवत हूँ, तेह बैठ के सुस्ता ले, मैं हेला मारूं।
1: अच्छा
0: भीमसेन लौट के देखते। अच्छा अर्जुन नहीं लागे, मैं करबर अकेला काफी हूँ। नहीं सुता लेना। अरे नहीं लागे यार,

0: भीमसेन आओ भैया, मैं तोरे हृदय से लगा लेता हूँ, अपन छाती में लगा के भेटिस, फिर दोनों जान माता के पास गिने।
1: अच्छा
0: अगर

0: आबोदका में एक परिवार हो गए, हिडम्बी किथे चलो हमार जिहा रिथन तिहा रिबो, सबो झन लेके के आ वहाँ कुटी में रहे लगिन। तीन महीना बीत गए, कुंती किथे कहा दाल में काला और बरी में मसाला। ए हो अरे धिष्ठिर,
1: अच्छा
0: काय हो? आ तो बेटा का हो गए, का बताओ बेटा? घर ले निकले तो छह जन, हिडम्बी करके सात जन हो गए रहे। यदि

0: कसो काला गिनथस
1: बेटा?
0: हिडम्बी हा गर्भ में। अच्छा तो का होगे ता? नहीं रे, घर के सियान ला सब बात के संसो रथे, तुमन ला का है? कसो का संसो? अरे लइका बर जतन बर पैसा बर कौड़ी बर तेल फूल बर सब नहीं लागते गा? ओहो अब बड़ फिकर करथस, भगवान सब पूरा करते दाई।

अरे अरे सहदेव, काय वा? अरे देख तो बेटा, कैसे कर रूप है, का नक्षत्र है, मूल नक्षत्र। ओहो कैसे करबो, तुम्हारा मैं नहीं देखा हूँ, एक कई दिन के बाद देखा हूँ, कहूँ नहीं देखीस। एक कई दिन में ओकर नाम से पूजा पाठ करीन, तब देखीस। भीमसेन देख कित या आओ कैसे।

ओहो कसदाई एकर रूप कैसन हो, यहाँ तो दांत सबो जाम गए। कुंती किथे बेटा ते नी जानस रे, तू सीधा सा घलोक जन्म लीस तो ओकरो 32 दांत जाम गिरी से। अच्छा तहले सहदेव ल कही से कर नाम धर दे, तहले सहदेव ओकर नाम घटोत्कच रख दी।

लोक रंजनी कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं पंडवानी। आदि पर्व में प्रसंग था भीम हिडिंबा विवाह बकासुरवध। अब प्रस्तुत है आदि पर्व में ही प्रसंग द्रौपदी विवाह दुर्योधन पराजय।

0: बकासुर नाम के दानो हा।
1: अच्छा
0: यदि जंगल में रहते गांव भर ला खा खा के उजारा थे, गांव भर पारी बांधे है, काली भोजन हमरा के पारी है, चार जनहन ये पा के कौन जाही, ऐसे सोचा था। कुंती कते चिंता मत कर, मोर एक जन बेटा ल भेज दू।
1: अच्छा
0: अच्छा भेज देवे ता तोर बेटा ल पूछ ले। कुंती जा के पूछिस भीमसेन के थे दाई, मैं तैयार हूँ, पर एक बात है, अब खाए।

आली कुंती हा महाराज ल कहिस, महाराज मोर बेटा तैयार हो गे, खाए भर भर दे देवे। ब्राह्मण देवता हा सबो जन ल नेता दे दिस और सबो जन बर रंधवाइस। भीमसेन ल भेजी जा बेटा बलावत है। भीमसेन जाके बैठिस, जतका कुमन पका रहा है अगर सब

0: औ तहले कलेवा लधर के भीमसेन गीस बका सुल्तान वहाँ आवत रहा, दोनों के मुठभेड़ हो गए, दोनों के लड़ाई शुरू।
1: अच्छा

चक्र नगर में मनहावे। व्यास जी आपके बताइस द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी है जा तुम पंचाल नगर। तहले पांचों जन बेटा।

0: कुंभक ब्राह्मण घर कुंती ला बैठार दिन पांच भाई गिन जाके देखती सभा कचा कच भरे रहा है। पांच भाई विप्र समाज में बैठ गए। उत्का में उठी ताले धिष्ट धुम्न उठ के गा भाषा न देवा न लागे भैया। ये स्वयंवर द्रौपदी के रचाए गए है। अब आ हो जतिक जन देख लो अजौना मीन के आखी में बाल भेद दी।
1: अच्छा
0: तो उन्हें द्रौपदी हा जयमाला पहना ही उत्का में।

मुश्किल है ताहले भीसा मुठीस। मैं चाहा तो मीन के आंखी में बाण भेज सकत हूँ, पर शादी नहीं करूँ। बता द्रौपदी की शादी दुर्योधन्स हो जाए। अरे भाई ते पहली बाण में तो मीन के आंखी ले भेज ले, चाहे द्रौपदी से शादी करे चाहे काकरो संग, ऐसे

0: क्षत्रिय राजा मन देखिन अरे हमनी के तो बन गए अतिक जा समाज में हमार निंदा हो जतीस। उत्का में द्रोणाचार उठीस बाण मारी द्रोणाचार हा पर चक्र में टक्कर खा के गिर गए। आप सब क्षत्रिय राजा मन देखते अरे अब मुश्किल है।
1: अच्छा
0: धृष्टद्युम्न ने देखी सब कहूं नहीं उठाते। मैं समझ गया हूं क्षत्रिय में कोई ताकत नहीं है, पृथ्वी वीर से खाली है। गुस्सा में होके अर्जुन खड़ा हो गया, ए खबरदार ये बोला था ठीक नहीं है, समाज में सोच समाज के बोल। अरे गलती हो गई, माफी दे कहा था, विप्र समाज मतलब हुकुम दे मैं

0: अरे बैठ, बड़े बड़े मन यहाँ गए तोरा सन कौन पूछे, फिर बैठा लीस।
1: अच्छा
0: सब छत्री मन हासा थे, ये देखे आगू पाछू विचार नहीं है, बड़ा मीन भेदैया हो गए सबको हाथ दीस। ऐसा मोर हंसी कर दे, फिर दोनों उठ गए फिर बैठा रीस। युधिष्ठिर कहते अरे इसने इतनी बने, अरे भाई काबर रोका था, यहाँ तो अपन अपन हिम्मत की बात है ना, जान देना ऐसे ले जा। फिर अर्जुन उठीस धनुष गहा।

मीन के नेत्र में बान भेद दीस। ओहो, जतिक ब्राह्मण समाज सब खुशी हो गए। द्रौपदी ला बुलाओ, अब द्रौपदी ला सहेली मान धर के माला पहना ले जाते भाई।

इला पकड़ लो, गांव में आगे लगा दो, राजा द्रुपद ला मार रो। लेकिन हमार छत्री के रहत ले कभी बरमाला नहीं पहनावन देवन, सब छत्री तैयार। अच्छा वारे छत्री हो, मीन भेदन करे की कहूं में सामर्थ नहीं, और ये तैयार हो? अच्छा तो तैयार हो जाओ। छत्री मुन के तो अच्छा एला अभिमान हो गए, तैयार हो जाओ।

अर्जुन दम मार मार इस बाण, चारों तरफ से बाण ही बाण बरसे लगी। जतका क्षत्रियारी ने दुर्योधन करण शकुनी सब जी दी धर धर के भागे लगी। अच्छा। अब प्राण बचना मुश्किल है। अब यदि अर्जुन बाण बरसा के विजय प्राप्त करी से

लोकरंजनी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडवानी। प्रसंग था द्रौपदी विवाह दुर्योधन पराजय। कलाकार थी पुनाराम निषाद और साथी। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है। समाचार अब हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व समारोह को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 1000 वर्ष के लिए भारत की प्रेरणा का उत्सव है। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
1: सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कारपूल
1: पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ।

आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हरेक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे

0: कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करे। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र

0: सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
1: अभी आप सोमनाथ अमृत महोत्सव का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक राय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। पहले सुनिए ऐतराज इस फिल्म का गीत, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की। हिमेश रेशमिया का संगीत है, बोल समीर की।

कार्यक्रम में आप सुनिए मिस्टर आशिक। इस फिल्म का गीत आवाजी अलका याग्निक और कुमार सानू की इंदिवर की लिखे इस गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 1:25 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए अब हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स केंद्र रात 8:30 पर और पब्लिक स्पीक का समय होगा रात 9:30। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 1:30 पर बिंदिया कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा सोशल मीडिया और महिलाओं की आवाज़। सुनिएगा आपके अनुरोध से और होंगे कुछ टिप्स। युवाणी कार्यक्रम 5:10 पर आजकल का विषय होगा निरंतर सीखते रहना। सुनिएगा हेलो युवाणी, श्रोताओं से फोन पर संवाद दीपक तिवारी का होगा और प्रस्तुत करता होंगे धर्मदीप डोंगरे। आप सुनेंगे साथ ही दृष्टिकोण।

सुगम संगीत शाम 6:30 पर कलाकार होंगे दिनेश निंबालकर और इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे मनोज वर्मा।

शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात का विषय होगा सरलग खेती माँ पशुधन की महत्ता। सुनिएगा, खरीफ फसल धान के लिए वैकल्पिक खाद नील हरितकाई जैव उर्वरकों और नैनो उर्वरकों का उपयोग कैसे करें, इस विषय पर श्रीमती गोपिका गबेल संयुक्त संचालक कृषि दुर्ग से ली गई भेंट वार्ता।

पुरानी फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर आप सुनेंगे रात 10 बजे और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का गाया राग बिहाग में ख्याल।

चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 2 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय होगा शाम 5 बजे। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें, स्पोर्ट्स कैन आप सुनेंगे रात 8:30 पर और पब्लिक स्पीक का समय होगा रात 9:30। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

नमस्कार सखियों, ढेर सारी मुस्कुराहटों, प्यार भरे एहसासों और दिल से निकले अपनत्व के साथ आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्यारी सी दुनिया बिंदिया में। मैं आपकी अपनी सखी मोनिका लेकर आई हूँ बातों की खुशबू, रिश्तों की गर्माहट और जिंदगी के रंगों से सजी एक खूबसूरत सी महफिल। आज मौसम भी जैसे कह रहा है कि थोड़ा मुस्कुरा लो, जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है। कभी कभी मौसम भी बिल्कुल अपनों सा लगता है, कभी ठंडी हवा बनकर सहलाता है तो कभी धूप की गर्माहट से दिलों को भी गर्माता है। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं जो दिल में अपनेपन की गर्माहट लिए खुशबू फैलाते हैं, जैसे हम सखियों का रिश्ता है, है ना? एक ऐसा रिश्ता है बहनों जो अपने अंदर पूरी दुनिया बसाए हुए है, जिसकी गोद में सिर रखते ही हर चिंता छोटी लगती है, जिसकी दुआ जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और वो है माँ। कल पूरी दुनिया ने माँ को मान दिया, सम्मान दिया, लेकिन एक दिन ही क्यों? हमारा वजूद जिसकी वजह से है उनके लिए तो हर दिन मातृ दिवस होना चाहिए, है ना? माँ की ममता का कोई हिसाब नहीं होता, माँ की ममता का कोई हिसाब नहीं होता, उसके प्यार का कोई जवाब नहीं होता। जिसके सिर पर हाथ हो माँ का, उससे अमीर कोई इंसान नहीं होता। सखियों अगर गौर करें तो हर मजबूत महिला के पीछे कहीं ना कहीं एक माँ की सीख, उसकी दुआ जरूर होती है। आज की महिला आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही है, अपनी पहचान बना रही है, अपनी बात खुलकर कह रही है और इसमें एक बड़ा योगदान है सोशल मीडिया का। जी हाँ, सोशल मीडिया ने महिला को नई आवाज़ दी है, एक ऐसा मंच जहाँ वो सिर्फ सुनती ही नहीं है बल्कि अपनी सोच, अपनी कला, अपने अनुभव, अपने सपनों को पूरी दुनिया तक पहुँचाती है। आज कोई माँ अपने घर की रसोई से लाखों लोगों को स्वाद सिखा रही है, कोई सखी अपने हुनर को बड़ा व्यवसाय बना रही है, तो कोई अपनी कहानी से दूसरी महिलाओं को हिम्मत दे रही है। आज गांव की सखी भी अपने हुनर को पूरी दुनिया तक ला रही है। अब महिला बोल रही है, लिख रही है, अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठा रही है, लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है एक महिला। लेकिन सखियों, सोशल मीडिया जहां महिलाओं की आवाज बना है,

तो वहीं पर कुछ चुनौतियां भी सामने लाता है, कभी ट्रोलिंग, कभी तुलना, कभी दिखावे की दौड़। तो ये भी जरूरी है कि हम अपनी असली मुस्कान, अपने रिश्तों की मिठास, अपने मन की शांति कभी खोने ना दें। असली खूबसूरती फिल्टर में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सच्चाई में है। दिन के आखिर में मोबाइल स्क्रीन नहीं बल्कि अपनों का साथ सबसे ज्यादा सुकून देता है। किसी अपने की मौजूदगी, वो एहसास जो जिंदगी की हर शाम को रूहानी बना देते हैं। जब मन बहुत थका हो, किसी अपने की आवाज, किसी का साथ पूरी फिजा को बदल देता है। कुछ रिश्ते रूह में यूं उतर जाया करते हैं, कुछ रिश्ते रूह में यूं उतर जाया करते हैं, लफ्ज खामोश, एहसास बोल जाया करते हैं। जब साथ हो किसी अपने का, तो मौसम भी गीत बनकर दिल में घुल जाते हैं।

खूबसूरत एहसास लिए मानो रूह में उतर गया ये गीत। फिल्म जमीन आसमान के इस सदाबहार गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने। सखियों, आपकी फरमाइशें, आपके संदेश ही बिंदिया की असली चमक हैं। तो इन सखियों की फरमाइश पर इस खूबसूरत से गीत को आपके सामने पेश किया था हमने। नवागढ़ कटई से सीमा शारदा दामिनी वर्मा, छत्रपति संभाजीनगर से राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, धामणी मनोरा से मायावती डेरे, किरण डेरे, प्रज्वला डेरे और दुर्ग से वाणी वर्मा। सखियों, जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती जानती हैं क्या है? हम सब अपने अपने छोटे छोटे आशियाने बनाते रहते हैं। कोई घर ईंटों से बनता है तो कोई रिश्तों से, कोई सपनों से सजाता है तो कोई अपनों की हंसी से। आशियां बसता है हंसी में, खिलखिलाहट में, अपनों के साथ बिताए खूबसूरत पलों में। कुछ सपने तकियों पर रख, कुछ रिश्ते आलमारी में संजो, एक छोटा सा आशियां हम रोज दिल के किसी कोने में सजाते हैं।

दिल को हल्के हल्के मुस्कुराना सिखा गया ये मीठा सा गीत, जिसे फिल्म बर्फी के लिए मीठी आवाज से सजाया था श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज ने। गीत के बोल स्वानंद किरकिरे के थे, संगीत से सजाया था प्रीतम ने, और हमारी जिन सखियों ने अपने अनुरोध से इस महफिल को सजाया वो हैं भिलाई से सुशीला जैन, कल्पना जैन, श्रेया जैन और शौर्या जैन, और कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी वर्मा और ओजल वर्मा। सखियों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, कभी रास्ते थका देते हैं, कभी हालात उलझा देते हैं, कभी भीड़ में रहते हुए भी हम अकेला महसूस करते हैं। ऐसे किसी पल में कोई अपना चुपचाप आकर ये कह दे कि मैं साथ हूँ, तो दिल को फिर जीने की वजह मिल जाती है। खामोशियां बात करने लगती हैं, टूटा हुआ मन भी मुस्कुराने लगता है। सफर मुश्किल सही पर डर नहीं लगता, अगर किसी अपने का हाथ हो, अगर तुम साथ हो।

यूं आए जैसे सूखी धरती पर बारिश उतर आए, साथ होने भर से दिल फिर मुस्कुराना सीख जाए। इस प्यारे से गीत को अलका याग्निक और अरिजीत सिंह ने मखमली आवाजें दी थी। इरशाद कामिल के बोलों को संगीत से सजाया था एआर रहमान ने फिल्म तमाशा के लिए। कुछ लोग मिलते नहीं, बस धीरे से जिंदगी में खुलते हैं, जैसे बारिश के बाद धूप या पुरानी किताब में रखा कोई सूखा गुलाब। उनके साथ होने पर शहर का शोर भी अच्छा लगने लगता है और चुप्पियां हल्की हल्की बातें करने लगती हैं। एक मुलाकात ने मौसम बदल दिया, खिड़की पर रखी धूप को घर कर दिया। वो पास क्या आए, दिल ने फिर से गुनगुनाना शुरू कर दिया।

ये गीत नहीं एक एहसास है जो दिलों को खुशबू से भर देता है। फिल्म परिंदा के लिए इस प्यारे से गीत को आशा भोसले और सुरेश वाडेकर ने सजाया था अपनी मधुर आवाजों से। बोल खलील धनतेजवी के थे, जिसे संगीत में पिरोया था आरडी बर्मन ने, और इस गीत का अनुरोध था दतरंगी से पार्वती यदु, प्रतिमा और रीना यदु और लक्ष्मीणा यदु का, और बेड़ी से कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने और चंचल ढोमने। सखियों, जाने की बेला आ चुकी है, लेकिन जाते जाते दिल चाहता है कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ अपनापन, कुछ मुस्कान साथ में छोड़ जाएं। अपनी सेहत, अपनी खुशियों का ख्याल जरूर रखें। थकान ज्यादा लगे तो रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डालकर पैर डुबोइए, दिन भर की थकान उड़नछू हो जाएगी। नींबू के सूखे हुए छिलकों को फेंकिए मत, सुखा कर रख लीजिए, चाय की खुशबू बढ़ाने और सफाई में बड़े काम आते हैं। और हाँ, दिन में थोड़ा वक्त अपने लिए जरूर निकालें। खुश महिला ही पूरे घर को खुशियों से भर देती है। बहनों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे छोटी छोटी खुशियों, अपनों के प्यार, दिल की मुस्कान के साथ जीते रहिए और हमें चिट्ठियां भी लिखती रहिए। और हाँ, हेलो बिंदिया के लिए भी आपके कॉल्स का हमें इंतजार है। याद है ना, कल मंगलवार 12 तारीख को सुबह 11 से 11:30 तक आप हमें कॉल कर सकती हैं और अपने गीतों की फरमाइश हमसे कर सकती हैं। फोन नंबर तो आपको याद ही होंगे,

0771 400 3482, 0771 400 3483 और 0771 400 3484। आप हमें इन नंबर पर फोन कर सकती हैं और अपनी पसंद के गीत सुन सकती हैं, हमसे बातें भी कर सकती हैं। तो बहनों, इसी प्यारे एहसास के साथ खुश रहिए, आबाद रहिए और हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।

बिंदिया, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रही थी। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 2 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में ये था फिल्म घर बसा के देखो का गीत, राजेंद्र किशन की भूल थे चित्रगुप्त का संगीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: कार्यक्रम का अगला गीत टावर हाउस इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें मुकेश और लता मंगेशकर की, संगीत रवि का, गीतकार असद भोपाली।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उमंग का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले साथियों की, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: दिल की उमंग कहती है।
1: अरे प्यार करा ही रुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है।
2: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
4: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
3: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
4: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
4: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
3: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण

0: 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीर सेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह

0: दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
1: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
3: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव

0: भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार, जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओं, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियाँ समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा, खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
2: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
1: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
2: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन

0: दीजिए
1: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
1: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes, sir. We have seen.
4: I have seen, sir.
5: I like bicycle, sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink.
9: And mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Trin, trin, trin!
2: Do it again, please.
3: Trin, trin, trin!
2: I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
2: Makes my friends move aside.
3: Makes my friends move aside.
2: The seat is blue in color.
3: The seat is blue in color.
2: The tires and pedals are black.
3: The tires and pedals are black.
2: Sometimes fast.
3: Sometimes fast.
2: Sometimes slow.
3: Sometimes slow.
2: But my bicycle is always on track.
3: But my bicycle is always on track.
2: To keep my bicycle moving, all I need is some air. I put on my little helmet, and I go happily everywhere. Well, children, you have now heard this poem and recited with me. How did you find it? Isn't it lovely?
3: Yes, sir! It's lovely!
2: So now, let's listen to a beautiful song on this poem, which is being sung by a lovely little girl just like you.
11: Just like us?
2: Yes. And you can also hum along with this song while listening to it. Okay?
3: Yes, sir!
2: So here comes the song on bicycle. Listen and enjoy.

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने

0: 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूँ माँ।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों

0: का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी।

0: के विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम।

0: दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमले

0: के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई सरकार गठित होने के बाद आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की घोषणा की। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अधिनियम में कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है, देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। इस बीच वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक की अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बंबई में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भू विज्ञान से जुड़े कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। श्री प्रधान ने कहा कि अतीत में कार्बन कैप्चर के कई सफल प्रयोग हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भटियात उपमंडल में पर्यटकों के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में गुजरात के 5 पर्यटक थे, जबकि चालक हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का निवासी था। ये दुर्घटना आज तड़के काकीरा लाहरू सड़क पर हुई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रही है। IPL क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से धर्मशाला में खेला जाएगा। अंक तालिका में पंजाब चौथे और दिल्ली कैपिटल्स 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दीवाना।
1: एक दीवाना शहर में।
0: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

0: level 7 on deputation or short-term contract basis. Eligible and interested candidates may submit their applications in the prescribed format through proper channel to the Deputy Director, National Medical Library, Ansari Nagar, Ring Road, New Delhi, 110029, within 45 days from the date of publication of the vacancy notice. Detailed eligibility criteria, terms and conditions, an application format is available on the Directorate General of Health Services. Kindly visit the website, that is at www.dghs.gov.in, and do apply within 45 days from the date of publication of the vacancy notice. I repeat the website, that is at www.dghs.gov.in, or you could also go on to www.main.mohfw.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड इन पदों के लिए संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित करता है। ये संविदा वार्षिक आधार पर होगी, जिसे 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। पद का नाम है पीजीटी गणित 1 पद, काउंसलर 1 पद, नर्सिंग सहायक 1 पद, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला सहायक 1 पद, पीटीआई सह मैट्रन महिला और पीईएम 2 पद तथा सामान्य कर्मचारी 2 पद। आवेदन करने हेतु पात्रता शर्तें स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसका पता है www.sainikschoolpungalwa.nic.in। ईमेल से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 18 मई 2026, जबकि इंटरव्यू 22 और 23 मई 2026 के बीच किए जाएंगे। सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश में इन पदों की रिक्तियां उपलब्ध हैं। टीजीटी अंग्रेजी अनारक्षित, काउंसलर अनारक्षित, आर्ट मास्टर अनारक्षित और संगीत शिक्षक का पद भी अनारक्षित है। टीजीटी अंग्रेजी का वेतनमान रहेगा 25,000 रूपए से 50,000 रूपए। इसी प्रकार काउंसलर के पद का वेतनमान भी 25,000 से 50,000 रूपए रहेगा, जबकि आर्ट मास्टर और संगीत शिक्षक के लिए वेतनमान 20,000 से 25,000 रूपए का रहेगा। यह अनुबंध 1 वर्ष के लिए है, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। होटल प्रबंधन खानपान एवं पोषण संस्थान अहमदाबाद शिक्षण सहयोगी के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 1 पद सामान्य वर्ग के लिए है, जबकि 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। समेकित वेतन रहेगा 25,000 रूपए प्रतिमाह। पूरी जानकारी के लिए देखिए होटल प्रबंधन खानपान और पोषण संस्थान अहमदाबाद की ये वेबसाइट www.ihmahmedabad.com। 200 रूपए का डिमांड ड्राफ्ट प्रधानाचार्य IHM अहमदाबाद के नाम आवेदन के साथ भेजना होगा। ऐसा न होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी विज्ञापन की तिथि से 21 दिनों के अंदर। सैनिक स्कूल सतारा में इन रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। टीजीटी गणित 2 पद, टीजीटी हिंदी 2 पद, टीजीटी सामाजिक विज्ञान 1 पद, टीजीटी मराठी कला शिक्षक, संगीत शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान और विद्यालय चिकित्सा अधिकारी, इन सभी पदों के लिए 1-1 रिक्ति उपलब्ध है, जबकि वार्ड बॉय मैट्रन छात्रावास के लिए 3 रिक्तियां उपलब्ध है। ये सभी पद अनारक्षित हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2026 तक प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल सतारा पीओ बॉक्स नंबर 20 सदर बाजार सतारा महाराष्ट्र में अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन पत्र और अधिक जानकारी के लिए देखिए स्कूल की वेबसाइट www.sainiksatara.org। अर्नेट इंडिया इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है वरिष्ठ प्रबंधक

0: का एक पद, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी समूह का एक पद, तकनीकी सहायक समूह ख एक पद और निजी सहायक समूह ख एक पद। पात्रता मानदंड, आवेदन पत्र और अन्य विवरणों के बारे में पूरी जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट ernet.in। कोई भी संशोधन, परिवर्तन आदि अर्नेट वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओ, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्व को जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। परिक्रमा के आज के संस्करण में मैं हूं आपके साथ अतहर सईद और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: हेलो अतहर, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा 100.1 एफएम गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट अतहर सईद। Well, listeners, reggae music and Bob Marley gain immense global popularity. Yes, Bob Marley, by combining unique musical elements, powerful social messaging and rebellious artistry, made reggae music famous. Today, we observe his death anniversary. We will talk about him later in a program, but first we begin with the news headlines first.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की।
2: वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी अनाउंसेस ट्रांसफर ऑफ लैंड टू बीएसएफ फॉर बॉर्डर फेंसिंग, ऑल्सो लॉन्चेस आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम इन द स्टेट।
1: केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की।
2: SBI research says country's economy remains resilient amid global headwinds. Projects growth is 6.6% in the current fiscal.
1: IPL cricket mein aaj sham Punjab Kings ka muqabla Delhi Capitals se.
2: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline Indian, which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about National Technology Day. Well, Athar, today we bring you a very special extending program on the occasion of National Technology Day. Every year on the 11th of May, India celebrates this important day to honor the remarkable achievements of our scientists, engineers, innovators and researchers who continue to shape the nation's future through science and technology. And today's program is a journey through India's scientific milestones, inspiring innovations and the dreams that are transforming a nation into a global technological powerhouse. And dear listeners, National Technology Day is observed every year to commemorate one of the proudest moments in India's scientific history. On this day in 1998, India successfully conducted a series of nuclear tests in Pokhran, Rajasthan, under Operation Shakti. And this test demonstrated India's scientific capability and technological strength before the world.

0: सफल मिशन ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और भारतीय वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों के दृढ़ संकल्प, बुद्धिमत्ता और समर्पण को दर्शाया। ये केवल एक वैज्ञानिक घटना मात्र नहीं थी, बल्कि ये राष्ट्रीय आत्मविश्वास का एक क्षण था। ये परीक्षण भारत के कुछ बेहतरीन वैज्ञानिक के कुशल नेतृत्व में किए गए, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे, जो लाखों युवा भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ये अभियान असाधारण सटीकता, गोपनीयता और टीम वर्क के साथ संचालित किया गया था। वैज्ञानिकों ने रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में अथक परिश्रम किया और ये सिद्ध कर दिया कि भारत अपनी स्वदेशी विशेषज्ञता के माध्यम से विश्व स्तरीय तकनीकी सफलता हासिल कर सकता है।
1: Yes, but Arthur and listeners, that's not all. National Technology Day also commemorates another historic achievement, the successful flight of India's first indigenous aircraft, Hansa 3. And this aircraft represented India's growing capabilities in aviation technology and self-reliance in aerospace engineering. And the same period also witnessed important advancements in missile development and defense research, strengthening India's position globally. And so every year, National Technology Day reminds us that innovation, science and determination can transform the destiny of a nation. So dear listeners, have you ever imagined life without technology? No smartphones, no internet, no online classes, no digital banking, no GPS navigation, no advanced medical treatments. Well, Arthur, can you imagine such a scenario?
0: बिल्कुल ठीक है आपने अभिषेक। प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो आज टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर हिस्से में गहराई से जुड़ी हुई है। आप महसूस करके देखें कि जिस पल हम सुबह उठकर अपना फ़ोन देखते हैं, अपना स्मार्टफोन देखते हैं, उस पल से लेकर रात को बल्ब बुझने तक, यानी बल्ब के ऑफ होने तक, टेक्नोलॉजी हर जगह हमारे आसपास मौजूद है। किसान की अगर बात करें तो किसान अब मौसम का पूर्वानुमान बताने वाले ऐप्स और स्मार्ट सिंचाई प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर्स रोबोट की मदद से जटिल सर्जरी करने में सक्षम नजर आते हैं। छात्र दूर दराज के गांवों से वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं। डिजिटल पेमेंट ने खरीदारी को बेहद आसान और बेहद तेज बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो व्यवसायों, अस्पतालों, परिवहन प्रणालियों और यहाँ तक कि आपदा प्रबंधन टीमों की भी वो मदद करता है। अभिषेक, टेक्नोलॉजी महज मशीनों के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन को बेहतर बनाने के बारे में है। ये समय बचाती है, अवसर पैदा करती है, लोगों को जोड़ती है और समस्याओं को हल करती है। आज के दिन हम देखते हैं कि भारत तेजी से दुनिया के अग्रणी इनोवेशन हब में से एक बनता जा रहा है कि नहीं अभिषेक?
1: Absolutely, Arthur and friends, India's journey in science and technology has been truly remarkable. From launching satellites into space to becoming a global IT leader, India has shown the world what determination and talent can achieve. Now let us take a look at some milestones that made every Indian proud. Arthur, you know, India Space Agency, Indian Space Research Organization, successfully launched missions like Chandrayaan 3, which made India the first nation to land near the Moon's South Pole. Then, of course, the Mars Orbiter mission, making India first Asian nation to reach Mars orbit successfully on his first attempt. Do you remember, Arthur?
0: बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, प्रौद्योगिकी के सहारे भारत लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। अब भारत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, डिजिटल इनोवेशन और रिसर्च का एक वैश्विक केंद्र भी बन गया है। आज भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक दुनिया की कुछ सबसे उन्नत तकनीकों में सफलतापूर्वक अपना योगदान दे रहे हैं। सिलिकॉन वैली से लेकर अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं तक भारतीय प्रतिभा हर जगह अपनी चमक बिखेर रही है और शताब्दी में भविष्य तो और भी उज्जवल नजर आता है, क्यों अभिषेक?
1: Yes, Arthur, and India is now focusing strongly on artificial intelligence, which is of course the in thing, isn't it? And then quantum computing, semiconductor manufacturing, biotechnology, renewable energy, electric vehicles, robotics, cyber security, green technologies. Well, this sector is expected to transform the world in the coming decades, and India is preparing to lead.
0: बिल्कुल अभिषेक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन वैज्ञानिकों, उन इनोवेटर्स को श्रद्धांजलि दी जिनके समर्पण ने देश को मजबूत बनाया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 1998 के सफल पोखरण परीक्षणों के पीछे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता को गर्व के साथ याद करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्रौद्योगिकी एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। उन्होंने कहा कि इनोवेशन अवसरों का विस्तार कर रहा है, विकास की गति बढ़ा रहा है और सभी क्षेत्रों में नागरिकों को सशक्त बना रहा है।
1: Yes, and he also emphasized the government's continued focus on encouraging research, supporting innovation, empowering young talent, developing indigenous technologies and creating

0: creating solutions that benefit society.
1: Abhishek, ek Sanskrit udharan साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैज्ञानिकों को राष्ट्र के गौरव और आत्मसम्मान का सच्चा निर्माता बताया। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण नवाचार को गति देने, अवसरों का विस्तार करने और विभिन्न क्षेत्रों में देश के विकास में योगदान देने में प्रौद्योगिकी एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का निरंतर ध्यान प्रतिभा को सशक्त बनाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और ऐसे समाधान तैयार करने पर केंद्रित है जो राष्ट्रीय प्रगति और नागरिकों की आकांक्षाओं दोनों को पूरा करे। देखा जाए तो वास्तव में हर तकनीकी सफलता के पीछे वर्षों का मौन समर्पण, कड़ी मेहनत और त्याग छिपा होता है। अभिषेक,
0: यस एंड नाउ समथिंग डिफरेंट अथर। नाउ दिस डियर यंग लिसनर्स, दिस सेगमेंट इज स्पेशली फॉर यू। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज नॉट ओनली सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट, इट इज ऑल्सो अबाउट इंस्पायरिंग द इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। हु नोज, द नेक्स्ट रेवोल्यूशनरी ऐप, मे बी द नेक्स्ट साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, द नेक्स्ट लाइफ सेविंग इन्वेंशन could come from one of you listening today. Curiosity is the beginning of innovation, Athar. And every great inventor once started with a simple question. Why? How? What if? And India's future depends on young minds that are creative, courageous and determined.
1: और अभिषेक, आज हम देखते हैं कि देश भर के छात्र रोबोट बना रहे हैं, नए नए ऐप्स डिजाइन कर रहे हैं, विज्ञान मेलों में हिस्सा ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर रहे हैं और स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। कई स्कूल और कॉलेज प्रयोगशालाओं, हैकाथॉन और शोध परियोजनाओं के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रौद्योगिकी ऐसे दरवाजे खोल रही है अभिषेक, जिनके बारे में पिछली पीढ़ियाँ केवल सपना ही देख सकती थी, और आज के डिजिटल दौर में ज्ञान हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है।
0: Yes, so dear students, here are some simple tips. Read more, ask questions, experiment boldly, learn continuously, and never stop dreaming. Because innovation begins with imagination. And listeners, one of the most beautiful aspects of technology is its ability to improve society. Technology can help solve real-world problems. For example, clean energy technologies help fight climate change. Medical technologies improve healthcare access. Educational apps bring learning to remote villages. Disaster warning systems save lives. Digital governance increases transparency and efficiency. And Athar, today India is using technology not just for economic growth, but also for social transformation. And the true success of innovation lies not only in profit or power, but in making life better for people. And that is the spirit of National Technology Day celebrates.
1: बिल्कुल अभिषेक, आज जब हम प्रगति और इनोवेशन का जश्न मना रहे हैं, तो आइए हम उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को भी एक पल रुककर सलाम करें जिन्होंने अपना जीवन ज्ञान और खोज के लिए समर्पित कर दिया है। कई लोग लेबोरेटरी के दरवाजों के पीछे चुपचाप काम करते हैं, कई लोग मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में वर्षों बिता देते हैं, कई लोग विज्ञान की उन्नति के लिए अपने आराम का त्याग कर देते हैं, तभी उनका योगदान राष्ट्रों के भविष्य को आकार देता है। भारत की वैज्ञानिक यात्रा ऐसे दूरदर्शी लोगों के प्रयासों से बनी है। मिसाल के तौर पर होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सतीश धवन ऐसे कई सारे नाम हैं। उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अभिषेक,
0: यस, सो टू कंक्लूड आवर डिस्कशन अथर, साइंस इज द लाइट दैट रिमूव्स डार्कनेस एंड टेक्नोलॉजी इज द ब्रिज that carries humanity towards a better future. We wish all our listeners a very happy and inspiring National Technology Day. Keep innovating, keep learning, keep dreaming. Jai Hind.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है आज। अभिषेक,
0: एंड वी स्टार्ट ऑफ फ्रॉम विद अ स्टोरी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एंड इन वेस्ट बंगाल, सुबेंदु अधिकारी टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एज चीफ मिनिस्टर ऑन सैटरडे। वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट।
2: In a historic shift for West Bengal, Shubhendu Adhikari took the oath of office as Chief Minister on Saturday at the Brigade Parade Ground in Kolkata. The ceremony coincided with Pochishe Boishak, the birth anniversary of Rabindranath Tagore, adding cultural weight to the political transition. Shubhendu Adhikari, who defeated former Chief Minister Mamata Banerjee in Bhavanipur Assembly constituency, leads the state's first BJP government. Among others who took oath as Minister designate included Dilip Ghosh and Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Khudiram Turu and Nishit Pramanik. The event was a major show of strength for the NDA, attended by Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah,

आज ही पुण्यतिथि है अपने समय के लोकप्रिय गायक तलत महमूद की, जिन्होंने कई सारी फिल्मों में अपने स्वर के जादू जगाए। फिल्म राखी, अनमोल रत्न और आरजू से उनके करियर को विशेष चमक मिली। फिल्म आरजू की गजल, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो, अपार लोकप्रियता हासिल की। फिलहाल उनकी आवाज़ में ये एक तोहफा सुनते हैं, तेरी आँख के आंसू पी जाएं।

0: अवसमय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अतः सईद और अभिषेक मुखोपाध्याय को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com। नमस्कार।
1: नमस्कार।

मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये गणेशपुर दलदली मदनगर धर्मपुर गौरा भरदा सिंघरा कल्याणपुर कोटबहरा घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया महावीरगंज शिवपुर कनकपुर लुर्गी टकिया मेंढारी प्रेमनगर कोटराही भगवानपुर नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के उदयपुर सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 17 है। ये लक्ष्मणगढ़ जगन्नाथपुर सायर सस्कालो पंडोपारा सुखरी भंडार कोरवापारा बरपारा कठबुड़ा कंडराजा बैरडाण पतरापारा दांतीढाब घोरा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर चरईमारा रानी कोम्बो सारंगडांड फड़ामाचा हरदीझरिया राजा आमा महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल की छाल धर्मजयगढ़ कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 123 है। ये आम गांव पोटिया क्रोंधा प्रेमनगर बेहरामार औरानारा कूड़ेकेला सिंघी छाप डोंगा भवना हाटी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा लालडी झुनकीडी मुकुआ जुनवानी कुकरी कादर डंग बोरा कोदवारी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये बंगूरसिया नवागांव चक्रधरपुर जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खमहार पाली पथरी पाली दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी पकरी ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और तौरेंगा में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये ओड़ अमलोर ताराझड़ डडईपानी नगरार खोलापारा जिडार छिंदौला तौरेंगा कावारामा डूमरघाट कोदोमाली कोनारी लूठापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धमतरी वन मंडल के दुगली में हाथियों कुल संख्या 2 है। ये चार गांव जबर्रा तुम्बहरा डूंगरडूला गज कन्हार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए

0: सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
1: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का। आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। स्पोर्ट्स स्कैन सुनिएगा रात 8:30 पर। कार्यक्रम पब्लिक स्पीक प्रसारित होगा रात 9:30 पर। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत में राग बिहाग में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का गायन सुनिएगा रात 10:30 पर। पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक सुरों का सफ़र प्रसारित होगा रात 10:00। शाम 7:21 पर सुनिएगा चौपाल। आज की बात का विषय होगा सरलक खेती में पशुधन के महत्ता। साथ ही आप सुनेंगे खरीफ फसल धान के लिए वैकल्पिक खाद नील हरित काई जैव उर्वरकों का उपयोग कैसे करें, इस विषय पर श्रीमती गोपिका गबेल संयुक्त संचालक कृषि दुर्ग से ली गई भेंटवार्ता। सुगम संगीत सुनिएगा शाम 6:30 पर। कलाकार होंगे दिनेश निम्बालकर। इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे मनोज वर्मा। युववाणी का समय होगा शाम 5:10 पर। इसमें आजकल का विषय होगा निरंतर सीखते रहना क्रम हेलो युववाणी। श्रोताओं से फोन पर संवाद प्रस्तुत करता होंगे धर्मदीप डोंगरे साथ ही दृष्टिकोण। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7:00 रात 8:00 और रात 9:15 पर। कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। स्पोर्ट्स स्कैन प्रसारित होगा रात 8:30 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। सुबह 6:45 पर कृषि चर्चा में सुनिएगा खरीफ धान की सिंचाई हेतु आवश्यक जल प्रबंधन, इस विषय पर डॉक्टर देवेंद्र कुमार कुर्रे से जानकारी। सुबह 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। सुबह 8:30 पर प्रसारित होगा छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइया के अंतर्गत लोक गायिका जयंती यादव ले भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे नेमीचंद साहू।

सुबह 9 बजे सुनिएगा कार्यक्रम अजी सुनिए। इसमें लघु नाटिका आलेख श्रीमती प्रमदा ठाकुर का प्रस्तुत करता होंगे समीर शुक्ल। सुबह 9:40 और रात 8:15 पर लोक संगीत में कलाकार होंगे शैलजीत साहू और साथी। सदाबहार नकमे का प्रसारण समय होगा 11:30 पर। छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत का प्रसारण समय होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम घर आंगन। आज के गोट का विषय होगा हमर घर हमर परिवार यही है जीवन मसार, पर्यावरण संरक्षण। इस विषय पर वार्ता सुनिएगा डॉक्टर वीणा साहू से। साथी बहिनी मन के चिट्ठी और गीत संगीत प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रसारित होगा कल शाम 5:00। शाम 5:10 पर युवाणी, इसमें अपन गोट का विषय होगा कौशल विकास जरूरी, सवाल जवाब और माटी की गीत। चौपाल आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। आज की बात का विषय होगा अभी लेकर आओ पानी बचाए के उदीम। किसान वाणी का समय होगा शाम 7:30 पर। हेलो किसान वाणी के अंतर्गत गर्मी में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन, इस विषय पर डॉक्टर निधि बंजारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सालय रायपुर से ली गई भेंटवार्ता, संचालन चंपेश्वर गोस्वामी का और प्रस्तुत करता होंगे शशिकांत पांडे। आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा का प्रसारण समय होगा रात 9:30 पर। इसमें सुनिएगा हल्बी गीत, कलाकार होंगे मेघनाथ पटनायक। श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद प्रसारित होगा रात 10:00। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा।
1: सब उसी के हैं, हवा खुशबू जमीनों आसमां, मैं जहां भी जाऊंगा उसको पता हो जाएगा।
0: युवाणी सुन रहे सभी साथियों को आपके साथ ही दीपक कुमार तिवारी
1: और आरव शुक्ला का मोहब्बत भरा
0: नमस्कार।
1: दोस्तों, आप सबने नदी को देखा है, उसकी सबसे खासियत पता है आपको?
0: आरव, नदी की सबसे बड़ी खासियत है निरंतर बहते रहना।
1: बिल्कुल दीपक, मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। क्या तुमको कभी ऐसा लगा है कि अब बस, अब और सीखने की जरूरत नहीं है?
0: आरव, अगर कोई ऐसा सोचता है तो समझ लो कि सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत उसी को है।
1: मतलब सीखना कभी खत्म नहीं होगा?
0: बिल्कुल नहीं, सीखना तो सांस लेने की तरह है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक कुछ न कुछ सीखना भी चलता ही रहता है।
1: लेकिन दीपक, जब हम सीखना कहते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में पढ़ाई और किताबें या एग्जाम ही आते हैं।
0: बिल्कुल, और हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है, सीखना सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं होता। आ रहा
1: तो फिर
0: कुछ सीखने का मतलब होता है हर दिन अपने अनुभवों से कुछ समझना, अपने आसपास हो रही चीजों से भी कुछ सीखना, और सबसे जरूरी बात, खुद को थोड़ा बेहतर बनाना।
1: मतलब अगर मैं किसी से बात करके कुछ नया समझता हूँ तो वो भी सीखना है?
0: बिल्कुल, कभी कभी तो एक छोटी सी बातचीत भी हमें वो सिखा जाती है जो बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं सिखा पाती।
1: तुमने बिल्कुल सही कहा दीपक, मुझे एक बात याद आ रही है। मेरे एक दोस्त हैं, वो हमेशा कहते थे कि मैं तो बस पास हो जाऊं, बस वही काफी है।
0: अच्छा,
1: लेकिन बाद में जब उन्होंने नौकरी शुरू की तो उन्हें एहसास हुआ कि असली दुनिया में तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता ही है।
0: और यही सच्चाई है साथियों, स्कूल और कॉलेज हमें सिर्फ एक आधार देते हैं, लेकिन जीवन की असली क्लास तो उसके बाद शुरू होती है।
1: वैसे दीपक, अगर कोई सीखना बंद कर दे तो क्या फर्क पड़ता है?
0: आरो, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे समय से पीछे छूटने लगता है।
1: वाकई दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, सोच बदल रही है, और अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: बिल्कुल
1: जी। आजकल एक चीज और है हमारे साथ, मोबाइल और सोशल मीडिया।
0: और लोग अक्सर इसे सीखने में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं।
1: दीपक, मुझे लगता है मोबाइल हमको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है, और अगर सही इस्तेमाल करें तो वही मोबाइल हमारा शिक्षक भी बन सकता है।
0: जैसे हम कोई नई भाषा सीख सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, यहाँ तक कि अपने शौक को भी एक हुनर का रूप दे सकते हैं।
1: मतलब बात साधन की नहीं, सोच की है।
0: वाकई,
1: अगर कोई आज से सीखना शुरू करना चाहता है तो वो क्या करे, वो क्या कर दे?
0: बिल्कुल सिंपल बात है साथियों, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य मत बनाइए, छोटे छोटे कदम उठाइए, हर दिन 10 से 15 मिनट कुछ नया पढ़िए, एक नई बात नोट कीजिए, और रोज किसी अनुभवी व्यक्ति से जरूर बात कीजिए,
1: और खुद से सवाल पूछिए कि मैंने आज क्या नया सीखा।
0: बहुत ही बढ़िया, क्योंकि सवाल ही हमें सीखने की ओर ले जाता है साथियों।
1: दीपक, एक चीज जो मुझे हमेशा डराती है वो है गलती करने का डर।
0: आरव, मुझे लगता है कि गलती करने से डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखते रहना चाहिए, गलतियां भी खूब करनी चाहिए।
1: मित्र, लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये भी तो एक डर रहता है।
0: तुमने वो गाना तो सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सुना है ना?
1: हाँ।
0: लेकिन अगर हम सीखते रहेंगे तो एक ना एक दिन वही लोग हमारी तारीफ भी करेंगे।
1: मतलब गलती हमारी दुश्मन नहीं, दोस्त है दीपक।
0: बिल्कुल, अगर हम उससे सीख लें तो बिल्कुल दोस्त है।
1: मतलब दोस्तों, निरंतर सीखना हमारे व्यक्तित्व को भी बदल देता है।
0: बिल्कुल, जब हम सीखते हैं साथियों तो हमारी पूरी सोच खुलती है, हम दूसरों को समझने लगते हैं, हमारे भीतर

0: धैर्य आता है। और दोस्तों ये हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है,
1: क्योंकि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमें खुद पर भरोसा भी होने लगता है।
0: दीपक, एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति से किसी ने पूछा, आप इस उम्र में भी किताबें क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैं आज भी कल से बेहतर बनना चाहता हूँ।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर विचार है। आरव, मेरा मानना यह है कि जीवन एक यात्रा है, जीवन की कोई मंजिल नहीं होती, जीवन एक लंबी यात्रा है।
2: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य, भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
3: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य, भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
0: साथियों, आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का अगला क्रम, आप सभी की प्रिय हेलो युवाणी। इसमें हमारे कंपेयर साथी दीपक कुमार तिवारी बात करेंगे हमारे श्रोता साथियों से, और इसके प्रस्तुत करता है धर्मदीप डोंगरे।
6: हेलो युवाणी,
1: रेडियो सेट और मोबाइल के जरिए युवाणी के रंग में रंगे दोस्तों को आपके साथ ही दीपक का मुस्कुराहट भरा नमस्कार। परीक्षाओं का दौर लगभग खत्म हुआ है दोस्तों, गर्मी भी बढ़ ही रही है। ऐसे मौसम में मुझे तो अपने श्रोता साथियों से बातचीत करने का इंतजार रहता है, जानने का मन होता है कि उनके लिए ये बदलता मौसम भला कैसा है, उनका हाल कैसा है। और मुझे पता है कि हमारे श्रोता साथी भी हमसे बातचीत करके बड़े खुश होते हैं। तो फिर आइए देखते हैं कि हमें आज पहला फोन कॉल किसने किया है। हेलो युवाड़ी।
7: नमस्कार सर।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
7: मैं कुर्मी पारा बेमेतरा से बोल रहा हूँ सर, वार्ड क्रमांक 30 से सुरेश कुमार सारथी।
1: सुरेश जी, आपका युवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत है।
7: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
1: और सुरेश जी कैसे हैं आप?
7: बहुत बढ़िया है सर, और हम तो आपके केंद्र के नियमित श्रोता भी हैं सर।
1: जी
7: जी, 1980 से हम आकाशवाणी रायपुर सुनते आ रहे हैं, 6 वर्ष की उम्र से। मैं ड्राइवर हूं सर, गाड़ी चलाता हूं।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। सुरेश जी, आप एक वाहन चालक हैं, कैसा सफर रहता है? जब सफर करते हैं तो कैसा आनंद लेते हैं सफर का आप?
7: सफर में सर बहुत अच्छे तरह से आनंद लेते हैं सर, और अदर स्टेट जाते रहते हैं, घूमने का एक ललक रहता है सर, नई नई जगह को देखने का एक अलग आनंद महसूस होता है सर।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सुरेश जी। तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
7: रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के।
1: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: हेलो वीवाणी।
1: हाँ सर जी नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ सर, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से ध्रुवाराम साहू बात कर रहा हूँ सर।
0: ध्रुवाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो वीवाणी में।
1: धन्यवाद सर जी।
0: क्या हाल है बालाघाट में इन दिनों?
1: हाल चाल बढ़िया है सर। आए दिन हवा तूफान हल्की बारिश तो होती रहती है सर यहाँ जी सर, और धूप भी देखने मिलता है, गर्मी का दिन है तो जी सर।
0: तो गर्मी की छुट्टियों का आनंद कैसे ले रहे हैं आप सब?
1: सर मैं ग्रीष्मकालीन जो उड़द की खेती है सर, खेती कर रहा हूँ उड़द का। हाँ, खेत में रहकर अनाज लेता हूँ सर, आइटमों का।
0: चलिए तो बड़ी अच्छी बात है ध्रुवाराम जी, आप खेतों में रहकर गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
1: बिल्कुल सर, क्या किसी भी तरह से व्यस्त रहोगे ना तो समय कैसे निकलता है सर पता ही नहीं चलता।
0: बिल्कुल अच्छी बात है, और समय का सदुपयोग हो तो ये तो और ही बहुत अच्छी बात है।
1: जी सर, जी सर।
0: तो ध्रुवाराम जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है सर राजा, और गीत के बोल है चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है।
0: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: हेलो युवाड़ी।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: रोशन देवगन बोल रहा हूँ सर, बिलाईगढ़ से।
0: रोशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: क्या हाल है बिलाईगढ़ में?
1: हाल चाल ठीक है सर।
0: रोशन जी, बिलाईगढ़ तो आपके कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो क्या बताना चाहेंगे आप बिलाईगढ़ के बारे में?
1: बस सर, हमारे यहाँ देवांगन परिवार कम से कम 600 परिवार हैं और सभी के यहाँ कपड़ा बुनाई का काम चलता है सर। मैं भी अभी कपड़ा बुन रहा हूँ, कपड़ा बनाते बनाते आपके पास फोन लगाया हूँ सर।
0: क्या बात है, तो एक तरह का संगीत है।
1: संबलपुरी साड़ी बनाते हैं सर। जितने भी हमारे आसपास के और कम से कम 25-30 गांव है, सभी के घर में कपड़ा बुनाई का काम चलता है देवांगन परिवार में।
0: जी
1: जी सर।
0: अरे बहुत अच्छी बात है रोशन जी, आप सब संस्कृति को संरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
1: जी जी जी।
0: और आप तो नियमित श्रोता है आकाशवाणी के।
1: जी सर, जी सर, जी सर।
0: ये बहुत अच्छी बात है रोशन जी। आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म लोफर गीत सुना देना सर, आज मौसम बड़ा बेईमान है।
0: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये खूबसूरत नगमा।

0: जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ।
1: मेघनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोयला की नगरी कोरबा से आप बात कर रहे हैं आज?
0: हाँ,
1: क्या करते हैं आप?
0: मैं टेलर काम करता हूँ। हाँ, सिलाई कपड़ा सिलाई काम करता हूँ, वही मेरा पैसा है और उसी मेरा जीवन यापन चलता है सर जी।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है मेघनाथ जी। और इन दिनों तो आपका सीजन भी है।
0: हाँ, अभी सीजन चल रहा है तिहदरा का।
1: जी, तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: नारी फिल्म का क्या मौसम आया है,
1: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: हेलो युवाड़ी।
1: हाँ नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं बोल रहा हूँ भैया, आपके न्यू स्टोर पर राधेलाल ग्राम पहुँच से जांजगीर चांपा जिला से बोल रहा हूँ भैया।
0: राधेलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो युवाड़ी में।
1: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी परिवार को, सभी को मेरी तरफ से भी धन्यवाद।
0: बड़ा अच्छा लगता है जैसे आप जैसे श्रोता, ऊर्जा से भरे श्रोता हमसे बातचीत करते हैं हेलो युवाणी के जरिए। राधेलाल जी, हमें आप बताएं कि पूर्ण जो गांव है आपका, उसकी खासियत क्या है, उसके गांव के बारे में बताएं आप, अपने गांव के बारे में।
1: मेरे गांव में तो खैर, मेरा गांव तो गांव देहात है सर, और विकास तो बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ अच्छी है, और मस्त कुशल मंगल से है यहाँ, और सभी चीज का साधन भी है, पानी वानी हर चीज का व्यवस्था है।
0: राधेलाल जी, आपका जो जांजगीर चांपा जिला है ये बहुत प्रसिद्ध है, इसके बारे में आप बताएं।
1: तो धान पान भी बहुत मस्त लहलहा रहा है सर जी, और जगह जगह में खेती किसानी हो रहा है, अभी रबी फसल लगा हुआ है जी, और थोड़ा थोड़ा जंगल भी है यहाँ, तो अभी तेंदू का पत्ता भी तोड़ना शुरू हो गया है, तो सब अभी मग्न में है सर।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रकृति का आप सब आनंद ले रहे हैं वहाँ पर।
1: हाँ हाँ, क्योंकि हमारे तरफ ना पहाड़ भी है और जंगल भी है, तो आप शुद्ध हवा भी मिलता है हम लोगों को, अच्छा मिलता है बढ़िया सर अपने यहाँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है राधेलाल जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: सर मुद्दत फिल्म का कोई भी गाना सुना दीजिएगा।
0: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये खूबसूरत नगमा।

0: हेलो युवाड़ी
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी से आपका जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: और आपका कार्यक्रम में फोन किया, आपसे बातचीत कर रहा, बहुत खुशी हो रहा, फोन लगा बहुत अच्छा लगा और काफी दिन के बाद फोन कर रहा हूँ, 6 महीना के बाद।
0: इंद्रभान जी चिरमिरी में इन दिनों क्या हाल चाल है?
1: अभी तो सर यहाँ पर तो यही पानी गिरता है, मौसम परिवर्तन होता है, बादल धूप करता है, हवा चलता है, लाइट गुल हो जाता है और पानी कई ढंग से नहीं मिल पाता है। जब लाइट गुल हो जाता है तो घर का भी पूरा अंधेरा हो जाता है सर, और ये मौसम में परिवर्तन हुआ है, वही बादल चमक गरज और वही धूप पेश किया है सर, ऐसा हो रहा है।
0: ये बताएं कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है भाग मिलकर भाग, गीत के बोले हवनपुर में जो का झुंड, गायक दिव्या कुमार, इस गीत को सुना दीजिएगा सर।
0: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

बहुत दिनों बाद आज आप सबसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। मन भरता ही नहीं है साथियों, क्योंकि आप सबसे बातचीत हमेशा रोमांचक ही होती है, हम सबको फिर से चार्ज कर देती है। आपको बता दें कि हेलो युवाणी की रिकॉर्डिंग की जाती है महीने के पहले और दूसरे बुधवार को सुबह 11 से 11:30 के बीच, जिसका प्रसारण किया जाता है महीने के दूसरे और चौथे सोमवार को। हेलो युवाणी में फ़ोन करने के लिए हमारा पहला नंबर है 4003482, हमारा दूसरा नंबर है 4003483, हमारा तीसरा नंबर है 4003484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 लगाना ना भूलें। क्रम हेलो युवाणी के प्रस्तुतकर्ता थे धर्मदीप डोंगरे और आप सबसे बातचीत कर रहा था मैं आपका साथी दीपक कुमार तिवारी। इसी के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए।

0: Hello, super funny. Hello, super funny.
1: साथियों, आपने अभी सुना क्रम हेलो युवाणी, जिसमें हमारे कंपेयर साथी दीपक कुमार तिवारी ने बात किया हमारे श्रोता साथियों से, और इसके प्रस्तुतकर्ता थे धर्मदीप डोंगरे। दोस्तों, उम्मीद है हेलो युवाणी का क्रम आप सभी को अच्छा लगा होगा, लेकिन आज का दिन खास है क्योंकि आज फिर से हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा क्रम दृष्टिकोण।
2: बिल्कुल आ रहा, और क्रम दृष्टिकोण का पिछला विषय था दिखावे की दुनिया और असली पहचान। तो साथियों, बिना देर किए चलिए जानते हैं कि इस विषय पर हमारे श्रोता साथियों ने हमें क्या लिख भेजा है।
1: आज का पहला ईमेल आया है सिंगारबाड़ी घुटकू से भगतराम पटेल, किशन सोनम और मानवी पटेल का। ये लिखते हैं, आज हम ऐसी दुनिया में हैं जो जहाँ होने से ज़्यादा दिखने पर जोर दिया जाता है। आजकल जीवन शैली में लोग अपनी संपत्ति, खुशियाँ और उपलब्धियों को ऐसी प्रदर्शित करते हैं जिसे देखकर लोगों के मन में लालसा जगे, लेकिन असली पहचान को एक दिन स्वीकार करना ही पड़ता है, जो सादगी, ईमानदारी एवं आत्मसंतोष से भरा होता है, क्योंकि ऐसे लोग अंदर से शांत और संतोष होते हैं। दिखावे की दुनिया क्षणिक होती है, जबकि असली पहचान हमेशा स्थायी होता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया गया प्रदर्शन हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है, जबकि असली पहचान हमें भीड़ में भी अलग और अनूठा बनाती है। इसलिए दिखावे को छोड़कर असली पहचान को संवारना ही समझदारी है, और यही सत्य है।
2: बिल्कुल साथियों, आपने बहुत ही सुंदर बात कही है। ये सच है कि बाहरी चमक कुछ समय के लिए ही लोगों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन इंसान की असली पहचान उसके स्वभाव और व्यवहार से ही बनती है। जो व्यक्ति को भीतर से संतुष्ट और सच्चा होता है, वही जीवन में हमेशा खुश भी होता है। तो साथियों, समय की कमी के कारण हम आपको बताएं कि हमारे इन श्रोता साथियों ने भी हमें ईमेल भेजे हैं। टिकरापार रायपुर से लता देवी चौहान, और बरसा टोला अम्बागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी तुषारणी और खुमेंद्र मसीहा ने, और गेंदा टोला बाजार चौक से राजनांदगांव से है वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजनी योगिता और गायत्री गुप्ता। साथियों, हम आपको बता दें कि अगले दृष्टिकोण का विषय क्या है। अगले दृष्टिकोण का विषय है मानसिक स्वास्थ्य और विज्ञान। साथियों, इस क्रम के लिए आप सभी के पत्रों का, ईमेल्स का हमें इंतजार रहेगा, पर हम आपको बता दें कि पत्र भेजने के लिए ईमेल एड्रेस क्या है। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है क्रम दृष्टिकोण, केंद्र निदेशक युवाणी अनुभाग, आकाशवाणी रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492001। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस है airyout9@gmail.com। साथियों, आप सबसे निवेदन है कि क्रम दृष्टिकोण के लिए सब्जेक्ट कोड Y7 लगाना ना भूलें। पर साथियों, अब बातचीत करते करते समय आप सबसे विदा लेने का भी हो चला है, पर जाने से पहले आपको बता देते हैं कल की युवाणी के आकर्षण। कल की युवाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। इसी के साथ दीजिए आपके साथ ही दीपक कुमार तिवारी
1: और आरव शुक्ला को
2: अनुमति, स्वीकारे हमारा नमस्कार।

0: युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार

0: सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75

0: में एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य 1 वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ शेर चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
3: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग प्रथा शुक्ला के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। गुजरात के सोमनाथ अमृत महोत्सव के चलत प्रधानमंत्री हा सोमनाथ मंदिर मा करिन विशेष महापूजा, किहिन ए मंदिर हा अटूट आस्था और दिव्यता के हरय प्रतीक। प्रदेश के कतकोन जिला मा आज होई सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन, रायपुर मा होए कार्यक्रम मा शामिल होइन मुख्यमंत्री साय, 75 पहली होए पुनर्निर्माण ला करिन सुरता। और प्रदेश में होवैया नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत मन के आम और उपचुनई पर नामांकन पत्र भरे के प्रक्रिया आज ले हुई शुरू। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीन है कि सोमनाथ मंदिर हा अटूट आस्था, दिव्यता और देश के शाश्वत आत्मा के प्रतीक हरय। ओमन हकीन कि सोमनाथ अमृत परब हा सिर्फ अतीत के उत्सव नो हरय, बल्कि एहा अवैया 1000 तक देश के प्रेरणा बनही। गुजरात के सोमनाथ अमृत महोत्सव ला संबोधित करत हुए प्रधानमंत्री हा कहिन है कि सोमनाथ हा लोगन मनला ए सुरता दिलात है कि कोनो भी राष्ट्र हा तभे लंबा बेरा तक मजबूती ले खड़े रही सकत है जब तक ओहा अपन जड़ ले जुड़े रहे। प्रधानमंत्री हा कहिन कि 11 मई 1998 के 3 परमाणु परीक्षण करे गिरीस, जेकर माध्यम ले देश के वैज्ञानिक मन हा भारत के क्षमता

0: एकता के प्रदर्शन ला पूरा दुनिया के आगू करे रहें। एकर ले पहले प्रधानमंत्री हा सोमनाथ मंदिर मा विशेष महापूजा करीन। उमन हा मंदिर के शिखर मा कुंभाभिषेक घलो करीन। मंदिर के इतिहास मा पहली घाव शिखर मा 11 ठीक तीर्थ वाले जगह ले लाए गए पवित्र जल ले अभिषेक करे गए है। श्री मोदी हा ध्वजारोहण कार्यक्रम मा घलो शामिल होइन। और यही बीच वायुसेना हा एयर शो करीन, जेमा सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम हा सोमनाथ के ऊपर सुघर करतब दिखाइन। हेलीकॉप्टर ले फूल के बरसा करेगीस, जेकर बाद श्री मोदी हा विशेष प्रदर्शन ला घलो देखिन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज राजधानी रायपुर के महादेव घाट के हटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मा शामिल हुईन। ए बेरा मा उमन हा जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मन के संग गुजरात के सोमनाथ मंदिर ले वर्चुअली जुड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ला घलो सुनिन। ए बेरा मा मुख्यमंत्री हा कहिन कि 75 बच्छर पहली आजे के दिन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण हो रहीस, और यही ऐतिहासिक अवसर ला देश भर मा स्वाभिमान पर्व के रूप मा मनाए जाते। उमना कहिन के सोमनाथ मंदिर मा घेरी बेरी हमला होइस, फिर मंदिर के आस्था और परंपरा ला खत्म नहीं करे जा सकेस। श्री साय कहिन कि पहली घाव आक्रमण के बेरा मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु मन हा मंदिर ला नहीं छोड़े और अपन प्राण दे देन। उखर त्याग हा आज घलो इतिहास मा स्वर्ण अक्षर मा अंकित हरे। मुख्यमंत्री हा बताइन के प्रदेश मा देवी माता के मंदिर ला शक्तिपीठ योजना के माध्यम ले विकसित करे जाते। ऐसन है कबीरधाम जिला के भोरमदेव महादेव मंदिर ला स्वदेश दर्शन योजना के चलत 148 करोड़ रुपया के स्वीकृति मिले है। एबेरा मा वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेताम हा मौजूद रहे। प्रदेश भर के कतकोन जिला मा घलो आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन हुईस। उन्हें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घलो भोरमदेव मंदिर परिसर में हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुईन। ए बेरा मा उमन हा श्रद्धालु मनला संबोधित करत हुए कहिन है कि ये कार्यक्रम हा भारत के पुरातन संस्कृति और सभ्यता ला सुरता करे के मौका हरे। ऐसने जांजगीर चांपा जिला के धार्मिक नगरी खरौद मा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अटूट आस्था के 1000 वर्ष विषय मा श्री लक्ष्मणेश्वर मंदिर मा विशेष कार्यक्रम होइस। ए मंदिर परिसर मा गुजरात के सोमनाथ और वाराणसी मा हुए कार्यक्रम के सीधा प्रसारण दिखाया गिस। कार्यक्रम मा सांसद कमलेश जांगड़े, कलेक्टर जन्मेजय महुबे समेत बड़का संख्या मा श्रद्धालु मनाए रहिन। प्रदेश के कतकोन जिला में घलो आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन करेगी। केंद्र सरकार हा विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के क्रियान्वयन पर अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम हा 101 जुलाई ले देश भर में लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा पश्चिम एशिया संकट के चलत लोगन मन ले एक बछर तक सोना झन खरीदे, ईंधन की खपत कम करे और विदेशी मुद्रा ला बचाए के आग्रह करीन है। हैदराबाद में काली एकठिन कार्यक्रम में श्री मोदी हा वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था ला एक घाव फेर शुरू करे के अपील करीन है। प्रधानमंत्री के अपील हा ऐसन बेरा में आई से जब पश्चिम एशिया में बाढ़त तनाव और होरमुज जल डमरू मध्य के तीर तखार के परेशानी के सेती वैश्विक कच्चा तेल के कीमत हा सरलग $70 प्रति बैरल ले बाढ़ के लगभग $126 प्रति बैरल हो गए है। इही बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा कहिन है कि पश्चिम एशिया में जौन युद्ध के स्थिति बने हुए है ओखर असर दुनिया भर में पड़त है और ओखर ले हमर देश हा घलो अछूता नहीं रही। एकरे सेती प्रधानमंत्री हा देश के लोगन मन ला बड़ जरूरी और सही सलाह दीन है। प्रदेश में होवैया नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत मन के आम और उपचुनई बर नामांकन पत्र भले के प्रक्रिया हा आज ले शुरू हो गए है जौन 18 मई तक चलही। नामांकन पत्र के जांच 19 मई के करे

0: रही और उम्मीदवार मन ह 21 मई तक अपन नावला वापिस ले सके। मतदान हा एके चरण में 1 जून के हो ही जबकि परिणाम हा 4 जून के आना है। जानबा के अनुसार नगरी निकाय में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 समेत कुल 82 पद पर चुनाई होना है। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 समेत कुल 1228 रिक्त पद पर चुनाई कराए जाएं। नारायणपुर पुलिस हा आज सामुदायिक पुलिसिंग ला मजबूत करे के उद्देश्य ले माण मैत्री अभियान की शुरुआत करी। नारायणपुर के हाई स्कूल मैदान में हुए कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया हा बताइन के अभियान के उद्देश्य नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्र के जवान लयिका और यहाँ के रहैया मनला शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक गतिविधि ले जोड़ना है। कार्यक्रम में हमर फिट नारायणपुर के चलत सामूहिक जुम्बा सत्र घलो हुई। एबेरा में डायल 112 वाहन सेवा, माण मैत्री रथ और बाइक पेट्रोलिंग टीम लघलो हरा झंडी दिखा के भेजे गई से। बीजापुर जिला के गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बल मन माओवादी मन कोती ले छिपा के रखे गए सामान ला जब्त कर ले है। पुलिस ला सूचना मिले रहीस के डोडी तुमनार गांव के पहाड़ी क्षेत्र में माओवादी मन सामान ला छिपा के रखे है। एकरे आधार में पुलिस सहायता केंद्र पीडिया और गंगालूर थाना के संयुक्त टीम सर्च अभियान चलाये। एबेरा मां भुइया के भीतरी छिपाए गए एक ठीक बंकर घलो मिले है। सुरक्षा जांच के बाद वहां ले बड़का मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियार, बैटरी, सोलर प्लेट, जनरेटर, वेल्डिंग मशीन और बीजीएल सेल ला बरामद करे गए है। धमतरी जिला में 1 महीना तक चलैया समर कैंप के शुरुआत 9 मई ले हो गई है। जिला प्रशासन और खेल विभाग के समन्वय ले चलत एक कार्यक्रम और ये समर कैंप 8 दिन तक चलही जेमा खेल तकनीक के संगे संग व्यक्तित्व विकास में विशेष जोर दे जात है। रायपुर के खमारडी थाना क्षेत्र के लक्ष्य ज्वेलर्स में शनिचर और इतवार के रतिहा करीब 1 करोड़ रुपया के सोन चांदी के गहना की चोरी हो गए है। इतवार के दुकान बंद होए के स्थिति एक जानकारी कारोबारी ला तुरते नहीं हो पाईस। फिर सोमवार के बिहनिया जब वह दुकान खोलिस तब ए चोरी के घटना के पता ओला लगिस। पुलिस दुकान और तीर तखार में लगे सीसीटीवी कैमरा ले मामला की जांच करत है। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक ठिन निम्न दाब के क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल के खाड़ी ले लेके श्रीलंका के उत्तरी तट के ऊपर बने हुए हैं। एकर संग ऊपरी हवा के चक्री चक्रवाती घेरा विस्तारित है। एकर ले अवैया 48 घंटा में अव प्रबल होए के संभावना है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। गुजरात के सोमनाथ अमृत महोत्सव के चलत प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में करीन विशेष महापूजा। किहीन ए मंदिर अटूट आस्था और दिव्यता के हरय प्रतीक। प्रदेश के कतकोन जिला में आज हुई सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन। रायपुर में हुए कार्यक्रम में शामिल हुई मुख्यमंत्री साय। 75 बच्चर पहली हुए पुनर्निर्माण लकरिन सुरता। आउ प्रदेश में होवैया नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत मन के आम और उपचुनाई पर नामांकन पत्र भरे के प्रक्रिया आज ले हुई शुरू। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
2: प्रवाचिका निधि ही झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवोचत् यत् सोमनाथ अमृत पर्व न केवलं भूतकालस्य उत्सवः अस्ति अपितु आगामी सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणा सोत्रो भविष्यति। मंदिरस्य पुनरुद्धारस्य 75 वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भू हस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। केन्द्र प्रशासनेन 25-2000 वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः VBG रामजी इति अधिसूचितः। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। सहैव अनुमीयते यत् आगामी वित्त वर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायंकाले

0: महाविद्यालये धर्मशालायाः हिमाचलप्रदेश क्रिकेट् सङ्घ क्रीडाङ्गणे पञ्जाब किङ्ग्स् अथ च दिल्ली केपिटल्स् दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य सोमनाथ मन्दिरे सोमनाथ अमृत पर्व महोत्सवावसरे विशेष पूजाम् अकरोत्। मन्दिरस्य पुनरुद्धारस्य 75 वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। महापूजायाः अनन्तरं कुम्भाभिषेकः ध्वजारोहण समारोहश्चापि सम्पन्नः। अवसरे अस्मिन् भाषमाणः प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् सोमनाथ मन्दिरं देशस्य शाश्वत आत्मनः दिव्यतायाः सहैव अगाध श्रद्धायाः प्रतीकं वर्तते। तेन प्रोदीरितं यत् सोमनाथ अमृत पर्व केवलं भूतकालस्य उत्सवः नास्ति, अपि तु आगामि सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणास्तोत्रः भविष्यति।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवसावसरे प्रधानमंत्री प्रोक्तवान यत् अद्यतन दिवसे एवं भारतस्य देशस्य आद्यत्वेन परमाणु त्रयाणां परीक्षणं जातम्। अनेन अस्माकं वैज्ञानिकाः विश्वस्य पुरतः भारतस्य सामर्थ्यं प्रदर्शितवन्तः।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: पूर्वाहणे प्रधानमंत्री प्रभास पाटनम संप्राप्य हमीरजी गोहिल क्षेत्रम यावत् 1 किलोमीटर दीर्घम पथ प्रदर्शनम अकरोत्। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी च तेन सह उपस्थितौ आस्ताम्। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य प्रतिमायां पुष्पार्पणं विधाय श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भूहस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। नूतन प्रशासनस्य निर्माणानन्तरं प्रथमायां मंत्रिमंडल गोष्ठ्यां एते निर्णयाः स्वीकृताः। मुख्यमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामि 45 दिनेषु सीमा प्राचीर रचनार्थं भूम्यधिकारः सीमा सुरक्षा बलाय प्रदास्यते।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग VSF को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन MHA को ट्रांसफर करेगा, VSF फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्रिणा श्री अधिकारी इत्यमुना राज्य केन्द्र सर्वकारस्य महती आयुष्मान भारतम स्वास्थ्य योजना अन्याः च राष्ट्रीय योजनाः प्रवर्तयितुं घोषणा कृता। अनेन सहैव मन्त्रिमण्डलेन विद्यालय शिक्षक पदानां आवेदकानां कृते आयुः सीमायां 5 वर्षाणां वृद्धिः अपि स्वीकृता, येन युवभिः अधिकारावसराः प्राप्स्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिम एशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या

0: प्रबन्धनं करोति। तेलङ्गानाराज्यस्य राजधान्यां हैदराबादनगरे एकां जनसभां सम्बोधयन् श्रीमोदी नागरिकेभ्यः आह्वानम् अकरोत् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा च स्थानीयवस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः विहितः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
0: केन्द्र प्रशासनेन पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः VBG रामजी इति अधिसूचितः। अधिनियमोऽयम् अस्य वर्षस्य जुलाई मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् कृत्स्नेहि देशे प्रवर्तयिष्यते। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। अद्य प्रकाशितेन SBI शोध इत्यस्य प्रतिवेदनेन अनुमीयते यत् आगामि वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। प्रतिवेदने इदमपि प्रोक्तं यत् GDP वृद्धिः प्रायः 7.2% भविष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता दलं विरुध्य संयुक्त विपक्षी मोर्चा इति निर्मातुं ममता बैनर्जी महोदयायाः प्रस्तावः कांग्रेस वामपंथी दलैः निराकृतः। तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बैनर्जी कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दलं समेत्य सर्वेषां विपक्षी दलानां भाजपा विरुद्धं एकत्रीकरणाय आह्वानं कृतवती। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन बृहस्पतिवासरं यावत् देशस्य उत्तर पश्चिम भागस्य केषुचित् स्थानेषु मेघगर्जनस्य, विद्युत्पातस्य, प्रचण्ड वायुनां च पूर्वानुमानं ख्यापितम्। अद्य श्वः च जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्रयोः केषुचित् स्थानेषु उपल वर्षा अपि सम्भाव्यते। ऋतु विभागेन उक्तं यत् हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्ड राज्ये च श्वः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। अत्रावधेयं यत् उत्तराखण्ड प्रशासनेन चारधाम यात्रा यात्रिणः पर्यटकाः च निवेदिताः यत् ते राज्यस्य पर्वतीय क्षेत्रेषु प्रतिकूल स्थितिं वीक्ष्य सुरक्षिताः भवेयुः। IPL क्रिकेट क्रीडा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा क्रीडा सायं 7:30 आरप्स्यते इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं दिनेश निम्बालकर। श्रोताओं, पहले ये सूचना सुनिए। गुरुवार 14 मई 2026 को कार्यक्रम बिंदिया में प्रसारित होने वाले फ़ोन इन फरमाइश कार्यक्रम हेलो बिंदिया के लिए श्रोताओं के फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्डिंग मंगलवार 12 मई 2026 को सुबह 11 बजे से 11:30 तक की जाएगी। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर इस प्रकार है 400-3482-400-3483-400-3484। रायपुर के बाहर के श्रोता STD कोड 0771 लगाना ना भूलें। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। कलाकार हैं दिनेश निम्बालकर। आइए दिनेश निम्बालकर की आवाज़ में सुनते हैं बशीर बद्र का ये कलाम।

श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए। कार्यक्रम घर आंगन से संबंधित, शनिवार 16 मई 2026 को कार्यक्रम घर आंगन में प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ी फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहिनी के लिए श्रोताओं के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग बुधवार 13 मई 2026 को दोपहर 12 बजे से 12:30 तक की जाएगी। इसके लिए हमारा फोन नंबर इस प्रकार है 400-3482, 400-3483, 400-3484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 लगाना ना भूलें। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं दिनेश निम्बालकर। आइए इन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं अजीम वकार का ये कलाम।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे दिनेश निम्बालकर। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: खो गया इंतजाम।
6: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।
6: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
4: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: दीदी, नौकरी लग गई।
8: अरे वाह, बधाई हो।
9: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
7: हाँ दी, नया मोबाइल।
9: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
7: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
9: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
7: पर दीप,
9: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
7: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट

0: तुम्हारा
1: अच्छा।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी
4: फीस तो देखो
6: क्या हाल है, क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन,
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
10: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
10: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
11: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
10: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
9: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
10: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
11: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
12: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी आयोजित किया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। रायपुर के महादेव घाट में मुख्यमंत्री ने की पूजा। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू। और विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा।
13: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
12: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं के साथ गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर से वर्चुअली जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था और इसी ऐतिहासिक अवसर को देशभर में स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर कई बार बाहरी आक्रांताओं द्वारा हमले किए गए, लेकिन मंदिर की आस्था और परंपरा को समाप्त नहीं किया जा सका। श्री साय ने कहा कि पहली बार आक्रमण के दौरान मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं ने मंदिर नहीं छोड़ा तथा अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका त्याग आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।
14: आज पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान दिवस

0: मना रहा है। आज ही के दिन 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर का पुनरोद्धार हुआ था और आज 75 साल बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ में बाबा सोमनाथ का पूजा अर्चना करके पूरे देश की खुशहाली की कामना की है।
1: इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेता मौजूद थे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी भोरमदेव मंदिर परिसर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये आयोजन भारत की पुरातन संस्कृति और सभ्यता के गौरवपूर्ण स्मरण का अवसर है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी खरौद में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अटूट आस्था के 1000 वर्ष विषय पर श्री लक्ष्मणेश्वर मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में गुजरात के सोमनाथ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में सांसद कमलेश जांगड़े, कलेक्टर जन्मेजय महोबे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। उधर बालोद के कपिलेश्वर शिव मंदिर में राष्ट्रव्यापी स्मरण उत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही जिले के अन्य प्राचीन शिवालयों पलारी तथा बालोद विकासखंड के जगन्नाथपुर स्थित शिव मंदिर में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किए जाने की खबर मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री की ये अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $126 प्रति बैरल हो गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ रहा है और उससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों को बहुत महत्वपूर्ण और उचित सलाह दी है।
0: पश्चिम एशिया में जो वार की स्थिति बनी हुई है इसका असर संपूर्ण विश्व को हो रहा है और उससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा सलाह पूरे देशवासियों को दिया है। हम सब लोग विदेश हमारे देश का पैसा कम से कम जाए, इसके लिए डीजल पेट्रोल उसका भी खपत हम लोग सोच समझ कर करें और सोना वगैरह खरीदेंगे तो यहाँ का पैसा विदेश जाएगा तो हम लोग को सावधानी तो बरतना ही पड़ेगा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छुपाकर रखा गया डंप बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम डोडी तुमनार के पहाड़ी क्षेत्र में माओवादियों ने सामग्री छिपा रखी है। इसके आधार पर पुलिस सहायता केंद्र पीड़िया और गंगालूर थाने की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान चलाया। अभियान के दौरान जमीन के अंदर छिपाया गया एक बंकर मिला। सुरक्षा जांच के बाद वहां से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियार, बैटरी, सोलर प्लेट, जनरेटर, वेल्डिंग मशीन और बीजीएल सेल बरामद किए गए। नारायणपुर पुलिस ने आज सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से माड़ मैत्री अभियान की शुरुआत की। नारायणपुर के हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया ने बताया कि अभियान का उद्देश्य नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों के युवाओं और ग्रामीणों को शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना है। कार्यक्रम में हमर फिट नारायणपुर के तहत सामूहिक जुम्बा सत्र भी आयोजित किया गया। इस दौरान डायल 112 वाहन सेवा, माड़ मैत्री रथ और बाइक पेट्रोलिंग टीम को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायपुर के खमारडीह थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्य ज्वेलर्स में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब

0: करोड़ के सोने चांदी के जेवरों की चोरी हो गई। रविवार को दुकान बंद होने के कारण इसकी जानकारी कारोबारी को नहीं हुई। सोमवार सुबह जब उसने दुकान खोली तब चोरी का पता चला। पुलिस दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लेकर श्रीलंका के उत्तरी तट के ऊपर तक बना हुआ है। इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा विस्तारित है। इसके अगले 48 घंटों में और प्रबल होने की संभावना है। इस बीच प्रदेश के मौसम में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। धमतरी जिले में 30 दिवसीय समर कैंप की शुरुआत 9 मई से हो गई है। जिला प्रशासन और खेल विभाग के समन्वय से आयोजित ये समर कैंप 8 जून तक चलेगा, जिसमें खेल तकनीक के साथ साथ व्यक्तित्व विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और सक्ती जिले के चंद्रपुर के बस स्टैंड के पास आज एक वाहन में हवा भरते वक्त एयर स्टोरेज टैंक फट गया। इस हादसे में वाहन मैकेनिक की मौके पर ही मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी आयोजित किया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। रायपुर के महादेव घाट में मुख्यमंत्री ने की पूजा। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू। और विकसित भारत रामजी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
7: को तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
8: दिमाग चार्ज कर रखना।
9: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
8: देखा
7: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
9: अब क्या करोगे?
7: फ्री वाईफाई है ना?
8: बुद्धू सुधर जा।
9: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
7: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
9: आरबीआई कहता है,
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
12: बेटा,
8: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
12: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
7: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
12: चलो,
11: कहाँ
12: एडमिशन कराने?
7: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
13: ब्रो, ये फटा है।
14: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
15: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
13: वाओ, नया नोट मिलेगा?
14: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
15: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो कूल रहो।
16: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का सबसे पहला गीत हमने लिया है फिल्म मोहब्बतें से। आवाजें उद्भव की हैं, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का है।

श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए। गुरुवार 14 मई 2026 को कार्यक्रम बिंदिया में प्रसारित होने वाले फोन इन फरमाइश कार्यक्रम हेलो बिंदिया के लिए श्रोताओं के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मंगलवार 12 मई 2026 को सुबह 11 बजे से 11:30 तक की जाएगी। इसके लिए हमारा फोन नंबर इस प्रकार है 4003482, 4003483, 4003484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 लगाना ना भूलें। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं फिल्म मर्डर का गीत। आवाज आमिर जमाल की है, गीतकार हैं सईद कादरी, संगीत अनु मलिक का है।

श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए। शनिवार 16 मई 2026 को कार्यक्रम घर आंगन में प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ी फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहनी के लिए श्रोताओं के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग बुधवार 13 मई 2026 को दोपहर 12 बजे से 12:30 तक की जाएगी। इसके लिए हमारा फोन नंबर इस प्रकार है 400-3482, 400-3483, 400-3484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 लगाना ना भूलें। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत, फिल्म आशिक बनाया आपने। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाज केके की है, गीतकार हैं समीर और संगीत तैयार किया है हिमेश रेशमिया ने।

फिल्म आशिक बनाया आपने, इसका गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ के की थी। गीत तैयार किया था समीर ने और संगीत हिमेश रेशमिया का था। इसी के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 7:21 होने को हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: विनीता दीदी राम राम।
1: राम राम रिचा। और संगे संग चौपाल सुनैया जम्मू संगवारी मना घलो हमर दोनों के
0: राम राम। गजब गर्मी हो गए है दीदी अभी के बेरा ला देख बेटा।
1: वो तो है रिचा, मौसम अपन रंग तो दिखावे करी।
0: फिर दीदी जतेक ना अभी देखथन कि गर्मी बढ़ा जाते उतका कैसन बर बिहाव के न्योता यतिवती के भागवत के न्योता सब बे आवत जात हवे।
1: माने ते मन माने बिहाव ने तो मनावत हस का ये नहीं।
0: हाँ दीदी का बतावे, अब देखना ऐसे होते ना दीदी कि घर परिवार समाज में आए जाए पर भी लगते और कहीं कुछ होते तो यही तो बेरा रही थे एक दूसर से मेल मिलाप का।
1: हाँ, बात तो सही है रिचा। अब देख तोर टूटा थोड़ी बैठे सही लागत है तो तोर बिहाव नेता के परिणाम पानी तो बिल्कुल बात तो एकदम सही है रिचा कि घर परिवार समाज में आ जाए पड़ते फिर सेहत और स्वास्थ्य ला देखत आवाजाही करे पड़ते। यू बात ला ध्यान रखना चाहिए, अपन स्वास्थ्य के ध्यान रखना हम सब ला जरूरी है रिचा।
0: बात तो आप सही कहा था दीदी का, पर शरीर बने रही ता कोनो मेर जाबे तो अच्छा लगते। फिर का है दीदी शरीर है ना मौसम के अनुरूप हम बने रखे लगी। अब गर्मी हावे, अब गर्मी में इति होती गे हन, अब खोजथन का ठंडा पानी। तो हमन का करथन शरीर के तापमान हा अब नॉर्मल होए नहीं रहा है, बने होए नहीं रहा है वातावरण के अनुसार, और एकदम ठंडा पानी ला पी देथन। तो ये भाई चीज के हमला ध्यान रखना चाहिए, करसी के पानी ला पियन और काय अभी हमन फ्रिज के पानी ला पी देथन दीदी तानू या छट ले हमर तबीयत ऊपर असर
1: दिखे। एक मतलब ये है कि मौसम के अनुरूप हमर खान पान हमार रहन सहन हमार पहराव होना चाहिए, है ना। अभी ये दिन में ना रिचा देख, भले बर बिहाव होते या वो कुछ भी कार्यक्रम होते सामाजिक पारिवारिक, तो वहाँ तेल्हा फूला बहुत चलता है ना, बरा सोहारी लड्डू अभी चलते छे। फिर वो तो जरूरी है, लेकिन ये हमला अपन स्वास्थ्य ला देखत अपन मौसम ला देखत खाना
0: चीज के सेवन करना है, काला हमला नहीं खाना है।
1: हमला हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, और तेल्हा फूला जैसे खाना है तो थोड़ बहुत चीख ले, है ना, ज्यादा नहीं खाना चाहिए काबर के एकर से तबियत बिगड़ते है ना। और फिर लड़का सियान सब लाई बात के ध्यान रखना चाहिए। अब इसने देख पहराव ओढ़ा के कहूँ बात करन तो ये दिन में हल्का सूती कपड़ा जो है ओखर उपयोग जो है सही होते। का ये दिन में हाथ पैर कुछ कहीं ये होते ना चकमक कुछ पहनवे गढ़ थे
0: दीदी। और ये बेरा में शरीर ला घलो ठंडा रखे बर ना अमन बहुत अच्छा जिनिस के उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि देख दीदी दरी बेल आते हैं बेल के शरबत पियन, कच्चा आम के पना ला पियन, छाछ हो गए,
1: ये सब के सेवन जरूरी है। क्या लिखा है शरीर में पानी के मात्रा जो बने
0: रही
1: है, संगे संग जो पानीदार फल है कलिंदर है खरबूजा है खीरा है ये सब खाना चाहिए। और एकर अलावा भी ना रिचा पानी भी दिन भर पियत रहना चाहिए थोर थोर करके, है ना, काबर की एकर से हमारे शरीर में पानी के जो संतुलन है वह बने रहते हैं ना। पानी के कमी ले भी कई ठन दिक्कत आ जाते।
0: अब दीदी अब हमन तो अपन शरीर के बात लग कर डरे है, फिर देख का होते कि घाम में जाथन है नहीं, जब ये जरूरत होते ना तब मतलब निकलना चाहिए है ना।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही साथ ना अगर कहूँ निकलत हन जैसे अभी हमन ड्यूटी पर आए हैं तब अपने मुड़ी कान लत तो क्या है ताकि घाम ज्यादा झंझना हो, तो ये सब बात के भी हमला थोक बहुत अपन ध्यान रखना चाहिए तबे हमन बने स्वस्थ रही।
1: तो रिचा देख हम स्वस्थ रही तो बात हो गए, तो ये तो हम कहन तो अपन सुरक्षा की बात करें ना। फिर देख पशुधन जो है वो किसान के बल बहिया होते है ना, तो खेती में पशुधन के का महत्ता है तो हम सब जानथन है ना।
0: हाँ दीदी, और खेती में पशुधन के बहुत महत्ता है काबर की ये है खेती ला एक लाभदायक और टिकाऊ व्यवसाय बनाते।
1: हाँ रिचा देख पशुधन जो है दूध और ओखर ले बने कतकोन उत्पाद है, ओकर संग में खाद भी खाद असन जो है वो उत्पाद भी देते, संग में जुताई है बुआई है फसल के अपशिष्ट के प्रबंधन ये सब में भी मदद करते पशुधन है ना।
0: हाँ दीदी, और पशुधन लेना देखो ओकर हर एक चीज के हमन उपयोग करा था।
1: बिल्कुल,
0: खेती किसानी में तो करबेज करत हन, फिर ओकर जोन अपशिष्ट है ओकर ले बहुत अकन हमन खाद बनावत हन, और ये जोन है बे एकदम जैविक खाद के उपयोग करत हन जेकर ले हमर

0: शरीर भी अच्छा रही थे, खातू माटी ले बाजबो तब बने बने फसल घलो आई, और साथ में ना दीदी एकर ले आजकल जीवामृत बना था वे।
1: फिर
0: एकर अलावा दीदी हमार घर में कहूँ पशुधन है तो ओकर ले का का जिनिस के हमन उपयोग करत हन, दूध हो गए, दूध ले हमन
1: बने कई पदार्थ दही मही पनीर घी,
0: ये सब के उपयोग करत हन, माने हर चीज हमन ला शुद्ध और ताजा मिला थे, ताई का सुरक्षा भी हमरे जवाबदारी है।
1: कहे के मतलब ये देख ऋचा की ये जो एक गांव के आय के प्रमुख स्रोत आए कहीं है ना, अब एमन जैसे देख जैविक खाद है, जैसे जैविक खाद के बात कहे तो जैविक खाद बनते पशुधन रिथे था है ना, और एकर अलावा अच्छा जैविक खाद ला किसान जो घर में बना लेते
0: खर्चा घलो बांच,
1: तो जो खाद बिसाए के जो खर्चा है वो बांच जाते और आ जाए के आवाजाही पैसा बांच जाते है ना, तो एक हाँ तो एक उपहार आय हो जाते है ना, और एकर ले जो व्यवसाय होते तो वो उपहार मिलते, ऐसने है देख खेती के काम में घलक मदद मिल जाते है ना, और खेती के काम में सहायता होते संग में एक प्रकार ले कहा तो रोजगार के साधन मिल जाते
0: हाँ दीदी
1: है, रोजगार के साधन मिल जाते, अपशिष्ट के उपयोग कैसे होते लाते ही बताई दे हस है ना, के एक मतलब ये है कि पशुधन और खेती जो है एक दूसरे के पूरक आए है ना, जो किसान के आमदनी ला बढ़ाए में कहन तो बहुत एक अहम भूमिका निभाते है ना।
0: हाँ दीदी, तब वो हम कह सकथन कि अतिक उपयोगी हमर पशुधन जो हावे ओकर जांगर है, तेखर हमन हा ओकर बर मौसम के अनुरूप हमू मल्ला ओकर देख रेख, ओकर आहार के व्यवस्था, ओकर स्वास्थ्य के ध्यान, ये सब चीज हा हमरे जवाबदारी हमरे जिम्मेदारी है, काबर की वो तो हमरे पशुधन हरे।
1: बिल्कुल सही कहे ऋचा, देख रहा इंसान के कहूँ बात करें तो अभी गर्मी जिसे बहुत है, हम अपन बर जिसे सुरक्षा चाहिए थन तो हमारे पशुधन है, तो ओकर में जो गाय के जो कोठा रही थे वो साफ सुथरा रहे, पानी निकासी की बरोबर व्यवस्था होना चाहिए है, गोबर कचरा कहूँ हो जाते तो तुरते उठा के बने साफ करना चाहिए, ये तो ये बात है, और गर्मी में जहाँ तक हो सके पशुधन घाम में ढीलना नहीं चाहिए, एक छायादार जगह में रखना चाहिए, तो का है मंझनिया बेरा माने घाम नहीं लगे उनका स्वास्थ्य ठीक रहते है ना,
0: और जैसे कोठा उठा हो गए उमा बने बोरा से या वो बोरा मिला थोड़ा गीला कर ले तो हाँ। हवा जब जावे तो ठंडा जावे
1: जुड़ जुड़ा देख ओकर हाँ। बार ना ऋचा मझनिया मेरा घाम झान ले बाचे पर का है बांस की टट्टा है प्लास्टिक के पर्दा लगा रहे चाहिए है, और फिर संग में जैसे बोराल के तो बोराल घलो गीला करके रख देवे तो हवा ठंडा
0: आती है, पानी घलो साफ सुथरा थोड़ा ठंडा ताजा पानी देना चाहिए, मतलब
1: और ना पानी जब गंदा हो जाते ना ऋचा तो बार बार बदल देना चाहिए, इसे नहीं एक बेर दे दे हो गए तो हाल है ना, वो मन जीवे तो हूँ मन लागते और गंदा पानी फिर हूँ मन नहीं पिए है ना, तो ऐसा ढंग ले माने उनखर आहार व्यवस्था कहूँ बात करन तो खाए बर जैसे हरियर हरियर कुंवर चारा होना चाहिए है ना, और कहूँ भूसा खाली घलो देवा था तो वहाँ का पेज पसिया पानी सौंध के थोड़ी नमक डाल के दे देना चाहिए, का बार की हूँ मन मूक प्राणी है फिर हूँ मना तो सब स्वाद जना थी ना है ना,
0: और दीदी एकर अलावा ना जब कभू भी हमारे पशुधन मनला कोनो रोग राई हुआ थावे तो ऐसा में ना टीकाकरण भी बेरा बेरा में कराना चाहिए, और गर्मी के बेरा में भी ना वो मतलब बहुत से जो है बीमारी के प्रकोप हो जाते
1: हाँ।
0: तो ऐसा बेरा में ना अगर थोड़ा भी कुछ लक्षण दिखाते तो तुरते स्वास्थ्य विभाग में जावे और वो मतलब जांच करावे,
1: बिल्कुल चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए ना, तो ये तो हम गोड बात करें ऋचा, और भी सुनथनी संदेश।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: अब दीदी गर्मी के तो गोट करे थे
1: हाँ।
0: फिर गर्मी में ना कोनो भी हुए बासी पीना ना सब चीज अधूरा लगते है नहीं।
1: देख रिचा ते बासी के है, बात कहना तो हम तो रोज भिंचे तो थोड़ी बासी जरूर खाथन।
0: अब फिर दीदी यही बेरा में ना सुंदर ना अच्छा अच्छा भाजी घलो आते
1: हाँ।
0: और बासी और भाजी के जे ना
1: भाजी और आमा के चटनी हाँ। मिल जाए तो का पूछना है हाँ। देख रिचा ते बासी और भाजी की बात कहना एक ऐसे गीत सुनथन है खुशीदास मानिकपुरी और बिंदु देवांगन के स्वर में ये गीत ला सुनथन।

0: तो आज क्रम आज की सलाह में हमर विषय है आगामी खरीफ फसल धान के लिए वैकल्पिक खाद नील हरितकाई जैव उर्वरकों इनका प्रयोग कैसे करें। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमर संग में मौजूद हमें श्रीमती गोपिका गभेल जी, आप मन हवाओ संयुक्त संचालक कृषि दुर्ग संभाग। मैडम, आप मन के हमर आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम।
1: राम राम। धन्यवाद बुलाए बर। सबो किसान भाई मन ला राम राम।
0: सबले पहले ये जानना चाहबो कि भाई किसान मन हा अब खरीफ के तैयारी लगभग शुरू कर दे हमें और कई जन मन तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो बोले आप ले जानना चाहबो कि खासकर धान के फसल खातिर भाई वैकल्पिक खाद हमन जब कही थन ते वैकल्पिक खाद के का विचार है, एखर का मतलब होते हैं?
1: देखा भैया, अभी के जो समय है किसान भाई मन धान के खेती में रासायनिक खाद के बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जेमा यूरिया DAP सुपरफास्फेट पोटाश कई प्रकार के रासायनिक खाद ओमन डालते हैं और जरूरत से ज़्यादा डालते हैं। एकर वजह से हमर जो मिट्टी है ओकर उर्वरक क्षमता खराब होते, किसान मन के जेब पर भी भारी पड़ा थे। और जैसे कि आप मन जाना था अभी थोड़ा सा उर्वरक के आपूर्ति हर कमी होए के भी संभावना है, तेमा किसान मन ला यूरिया के ज्यादा प्रयोग करे ले खेत में कीड़ा बीमारी के प्रकोप भी बढ़ते, एकर से दवाई मांदी के खर्चा भी बढ़ जाते। ता हमन कथन कि जमीन के जो उपजाऊ क्षमता ला बनाए बर और कम खर्चा में अच्छा लाभ कमाए बर किसान मन ला रासायनिक खाद के जो विकल्प न कह के पूरक के रूप में अन्य प्रकार के जो जैविक खाद है ओकर उपयोग करना चाहिए।
0: बखत बखत में हमारे सलाहकार मन आते तो हमेशा ये बात लगी थे कि हमन ला रासायनिक खाद ला कम ले कम प्रयोग करना है या बंद कर देना है, और जैविक खाद है या ऐसे खाद जेखर ले माटी के स्वास्थ्य बने रहे और खवैया मन घलो स्वास्थ्य बने रहे। तो अपन बहुत बढ़िया बात कहो कि रासायनिक खाद ला हमन ला कम ले कम प्रयोग करना है, तो आप ले जानना चाहो कि कौन कौन से वैकल्पिक खाद है जल किसान मन प्रयोग कर सकते हैं खरीफ के फसल।
1: मुख्य रूप से हमारे जो छत्तीसगढ़ है धान के ही मुख्य फसल है और धान में जो वैकल्पिक खाद है ओमा नील हरित काई और कई प्रकार के जैव उर्वरक नैनो यूरिया नैनो DAP और जो जैविक खाद होते ओमन ला उपयोग करके समन्वित रूप से उपयोग करके रासायनिक खाद के मात्रा ला कम किया जा सकत है। एमा मैं आज आप मन ला बतात हूँ कि जो नील हरित काई है वो हर बहुत अच्छा खाद है और किसान मन बर बहुत सस्ता सरल उगाए बर आसान है। जो नील हरित काई काला कहते हैं, जो नीला हरा रंग के जो प्रकृति उत्पन्न खाद है काई जो हरा काई से अलग होते ओला कहते नील हरित काई। नील हरित काई हर हवा ले नाइट्रोजन जो कि हमार हवा है तेमा 3/4 नाइट्रोजन के मात्रा है, पौधा मन ओला सीधा ग्रहण करे नहीं सकें।
0: हाँ।
1: तो ये नील हरित काई हर एक प्रकार के नाइट्रोजन पैदा करे के फैक्ट्री है, नाइट्रोजन हवा के नाइट्रोजन ला इकट्ठा करके पौधा ला धान के पौधा ला पहुंचाते। तो ये काई ला हमन किसान भाई मन उगा के धान के खेत में एकर उपयोग करही तो कम से कम 55 से 65 किलो यूरिया के बचत एक हेक्टेयर में होही।
0: माने बड़ फायदा की बात है,
1: बहुत फायदा की बात है।
0: नील हरित काई जन है उखर उत्पादन में घलो वृद्धि करी और पौधा मल्ला ने फसल ला फायदा घलो पहुंचाई,
1: एकर औ बहुत फायदा है। जैसे यूरिया के बचत करत है यानी नाइट्रोजन दे थे, एकर अलावा 800 किलो कार्बनिक पदार्थ हमर मिट्टी में ओहर मिलाही जेकर से जमीन के स्वास्थ्य हर सुधरही। एकर अलावा एहर कई प्रकार के हार्मोन ऑक्सिन जिब्रेलिक एसिड छोड़ते जेहर पौधा के बढ़वार ला तेज करते, साथ ही एक प्रकार के कार्बनिक अम्ल पैदा करते जेहर मिट्टी में जो अघुलनशील पोषक तत्व तो पड़े हुए है सालों से ओला घोल के पौधा मल्ला पहुंचाए के काम करते। एकर साथ ही मिट्टी में जो सोडियम लवण रथे जेकर कारण हमर मिट्टी हर क्षारीय हो जाते नमकीन हो जाते, वो सोडियम लवण ला मिट्टी ले निकाल के अलग करते और हमर भूमि के सुधार करते। नील हरित काई के उपयोग करे ले धान के फसल में 10 से 15% तक के बढ़वार होते और ये नील हरित काई हर अतका आसान है, यह हर प्रकार के वातावरण ला सहन करते और बिना देखरेख के एला कई साल तक रखे जा सकते, आसानी से एला कहीं भी एक खेत से दूसरा खेत ले जाया जा सकते, परिवहन किए जा सकते और एक खेत में 3 से 4 साल तक लगातार अगर हम नील हरित काई के उपयोग करथन तो फिर आगे बार बार ओला उपचारित करे की जरूरत नहीं पड़े, खेत में वह रहते ओकर प्रभाव हर अगली फसल में भी काम आते।
0: जैसे आप मन बताया कि एला एक बार हमन प्रयोग करे के बाद में है ना भाई यह बार बार काम आ सकते है, तो नील हरित काई में किसान मन के जेन लागत है वो कमती आई जैसे आप मन बतावत हो
1: हाँ,
0: है न

0: कमाई।
1: और जो निर्धारित काई है एकर कोनो सावधानी है का बताते हो?
0: हाँ, एकर एक सावधानी है कि निर्धारित काई हमन जब उपयोग करथन धान के खेत में तो कम से कम पानियों में रुके रहना चाहिए। हाँ। पानी हर एक खेत ले दूसरा खेत नहीं बहाना चाहिए डाले के समय।
1: अच्छा, माने पानी
0: कल्चर डालथन
1: जरूरी है।
0: हाँ, जरूरी है पानी 3-4 इंच पानी रुके रहना चाहिए ओमा। और एक अलावा जैसे ओमा हरी काई के प्रकोप दिखिस।
1: हाँ।
0: तो ओला रोकना है, ओमा नीला थोथा डाल के ओकर उपचारित करके ओला नष्ट करना है हरी काई ला। और अगर कोई कीड़ा के प्रकोप है तो ओकर बर दवा के उपयोग करना है।
1: अच्छा, जैसे आप मन अभी नील हरित काई के बात करते रहो तो हम यहाँ एक संगे संग जैसे कि जैव उर्वरक है एकरो को हम बात कर लेते हैं तो किसान संगवारी मन कौन कौन से जन जैव उर्वरक है ओकर प्रयोग कर सके थे बताते हो?
0: धान में जो मुख्य रूप से 4 प्रकार के जैव उर्वरक के उपयोग होते। पहला नाइट्रोजन पोषक तत्व देने वाला जैव उर्वरक बोला कहते एजो स्पाइरिलम, और फास्फोरस तत्व देने वाला जैव उर्वरक PSB या स्फुर घोलक जीवाणु, और पोटाश तत्व देने वाला जो जैव उर्वरक है बोला कहते हैं KMB यानी पोटाश घोलक जीवाणु। एकर अलावा जिंक तत्व देने वाला जो जैव उर्वरक है बोला कहते हैं ZSB जिंक घोलक जीवाणु। ये जो जैव उर्वरक है एहर एक जीवित बैक्टीरिया है जेहर धान के पौधा के जड़ क्षेत्र में रह के नाइट्रोजन वाला हर हवा से सीधा नाइट्रोजन इकट्ठा करके पौधा मन ल देते। और जो बाकी 3 है KMB ZSB और PSB ये जो बैक्टीरिया है वह जमीन में जो पड़े हुए पोषक तत्व है उमन ल घोल के पौधा के जड़ के माध्यम से उपलब्ध कराते।
1: इजन जैव उर्वरक है जिसे अपन बताया हुआ जब हमन हा प्रयोग करबो तेकर समय का हो ही बताते।
0: एकर प्रयोग करे के अलग अलग तरीका है। जैव उर्वरक ला जैसे बीज में उपचारित करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: और सबसे अच्छा तरीका है और कम मात्रा में कम खर्चा में हो जाते। तो जब हम बोए जाथन धान के बीजा ला।
1: अच्छा।
0: बोए के पहली जैव उर्वरक ला गुड़ या माड़ के घोल में घोल के बीज में उपचारित कर लेना चाहिए, और उपचारित करे के बाद हल्का ओला सुखा के तुरंत बोनी कर देना चाहिए।
1: अच्छा,
0: तो एकर जो मात्रा है अगर जैव उर्वरक 2 प्रकार के होते, एक तरल वाला होते और एक पाउडर वाला होते। तो तरल वाला है अगर तो 5 मिलीलीटर जैव उर्वरक ला 10 मिलीलीटर पानी में घोल के 1 किलो बीज में उपचारित करना है उगर मात्रा के हिसाब।
1: अच्छा,
0: से
1: अच्छा।
0: यानी अगर आप मन 20 किलो बीज है तो 100 मिलीलीटर जैव उर्वरक हर एक पर्याप्त हो ही। दूसरा तरीका एक रहू है, अगर आप मन बीज के माध्यम से नहीं कर पाए उपचार लेट हो गए तो अगर रोपा वाला खेती है तो जो रोपा के जड़ है ओला भी जड़ ला उपचार करके रोपाई कर सकत हो। तो एकर का करना है खेत में गड्ढा खोन के ओमा पॉलिथीन बिछा के जत का जरूरत के हिसाब से जड़ डूब जाए उतकी पानी और गोबर थोड़ा सा डाल के घोल बना दो और रोपा ला जैसे उखाड़ता और कर गठी बांधते तो रोपा ला ओमा डाल देना है छोड़ देना है ओकर बाद जब निकाल के फिर रोपाई करना है तो हर चिपक जाते जीवाणु है रोपा के जड़ में और फिर वो जीवाणु मन की संख्या है रोपा के जड़ के मिट्टी के आसपास संख्या हर तेजी से बाढ़ते और फिर वह पोषक तत्व उपलब्ध कराते।
1: आप मन है जैव उर्वरक के बारे में बड़ा अच्छा बात बताया हो तो आप मन जानना चाहो कि जन जैव उर्वरक है एक उपलब्धता किसान मन कहाँ ले हो सके थे, माने कैसे मन है उपयोग कर सके थे
0: जैव उर्वरक है? देखो, एक तो हमारे जो कृषि विभाग के बीज निगम है ओकर उत्पादन इकाई है जैव उर्वरक के यहाँ अभनपुर रायपुर में
1: जी।
0: और एकर जो विभाग के माध्यम से कृषि विभाग के माध्यम से जैव उर्वरक सप्लाई होते किसान मल्ला अनुदान में भी मिलते। एकर साथ साथ जो हमारे प्राइवेट खाद दुकान है या कृषि केंद्र है एमन भी आजकल जैव उर्वरक अलग अलग कंपनी के बेचते 2 प्रकार के पाउडर वाला भी और लिक्विड वाला भी
1: जी।
0: तो जो पाउडर वाला जैव उर्वरक में उकर 1 ग्राम में 5 करोड़ जीवाणु होते, और अगर लिक्विड वाला जैव उर्वरक है वह ज्यादा ताकतवर होते उकर 1 मिलीलीटर में 10 करोड़ जीवाणु पाए जाते।
1: अच्छा, माने ज्यादा फायदा है किसान मन खातिर तरल वाले है?
0: तरल वाले है ज्यादा फायदा है और ये जीवाणु हर ज्यादा लंबा समय तक जीवित रहते।
1: एक बारे में जानना चाहो कि भाई उपयोग तो करे किसान संगवारी मन, फिर सबले बड़े बात होते हैं सावधानी के, तो का सावधानी मतलब ध्यान में रखना चाहिए बताते हो?
0: जैव उर्वरक हर पहली जैसे कहें कि हर एक प्रकार के जीवित जीवाणु है, जीवित जीव है। तो जो भी हम खरीदे जाथन मार्केट में
1: जी
0: कृषि केंद्र में तो किसान भाई मल्ला एक चीज अवश्य देखना चाहिए कि ये जैव उर्वरक के निर्माण तिथि
1: हाँ,
0: कब के है,
1: कब बनाएगी।
0: हाँ, तो अगर पाउडर वाला है तो ओकर जो है वैलिडिटी 6 महीने

0: के रहते है, और अगर लिक्विड है तो साल भर या कोई कोई कंपनी 2 साल तक भी रहते।
1: अच्छा।
0: और दूसरा ये देखना है कुकर भंडारण ऐसे जगह में करना है जहाँ ज्यादा गर्मी न हो, 45 डिग्री टेम्परेचर ऊपर जाही तो वो जैव उर्वरक के जो जीवाणु है तेमन नष्ट हो जाते हैं।
1: अच्छा, मतलब
0: रख रखाव
1: बहुत जरूरी
0: है, बहुत जरूरी है।
1: हाँ।
0: ये सबसे बड़े सावधानी है कि ओला ठंडा जगह में रखना है, और ओकर बाद अगर बीज में उपचारित करत हो तो ओला धूप में नहीं सुखाना है, तुरंत ही उपचारित करके बोनी कर देना है।
1: अच्छा।
0: और जो जैव उर्वरक के एक्सपायरी डेट वाला जैव उर्वरक ला बिल्कुल नहीं खरीदना है, एक्सपायरी डेट होकर देख लेना है,
1: सिरागे है,
0: तिथि
1: हर बचना है या नहीं करना है।
0: दूसरा एक है कि जैव उर्वरक में चूंकि मैं कहूँ जीवाणु की संख्या करोड़ में होते, तो किसान भाई मन वो जैव उर्वरक ललान के अभी जैसे गर्मी के मौसम में खरीदा थे बोनी के 1 महीना पहली, तो ओला गोबर खातु अच्छा या वर्मी कंपोस्ट अच्छा, सड़े हुए गोबर खातु वर्मी कंपोस्ट में ओला डाल के छायादार जगह में ढेरी बना के ढांक के रख दे 15 दिन, ओकर बाद फिर खेत में सीधा उपयोग करें तो वो जीवाणु की संख्या और करोड़ों में बढ़ी और खेत में पकड़ लाभ मिली।
1: श्रीमती गोपिका गभेल जी, आप मन अतिक सुखा जानकारी हमल देव अवैया खरीफ फसल धान खातिर वैकल्पिक खाद नीलहरित काई और जैव उर्वरक मन के उपयोग कैसे करें, आप मन हमारे स्टूडियो में आया और अतिक सुघर जानकारी देव, एक खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम।
2: आज की सलाह ये क्रम में अभी आगामी खरीफ फसल धान बर वैकल्पिक खाद नील हरित काई जय उर्वरक और नैनो उर्वरक के उपयोग कैसे करें ये संबंध में भी बतावत रहीन श्रीमती गोपिका गबेल संयुक्त संचालक कृषि दुर्ग, एकर संगोड बात करत रहीन लव कुमार सिंह जी, तो उन सुने अभी
3: आओ बता दे थन संगी मलाई सूचना संगवारी हो अवैया मंगलवार 12 मई 2026 के प्रसारित हो वैया हेलो किसान वाणी कार्यक्रम के विषय हुई गर्मी में पशु की देखभाल और आहार प्रबंधन। आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान करे खातिर स्टूडियो में उपस्थित रही विशेषज्ञ डॉक्टर निधि भंजारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सालय भाटागांव रायपुर ले। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पा सकते हो हमारे टेलीफोन नंबर के माध्यम ले। हमारे टेलीफोन नंबर है 400-3482। हमारे दूसरा टेलीफोन नंबर है 400-3483। और हमारे तीसरा टेलीफोन नंबर है 400-3484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग हुई 12 मई 2026 के 11:30 ले 12 बजे तक करे जाहे, और ये कार्यक्रम के प्रसारण मंगलवार के ही संझा 7:30 में करे जाहे। हमला आप मन के फोन के अगोरा रही, सूचना समाप्त हुआ थे।
2: ऋचा, अब बेरा है कृषक प्रश्न मंच क्रम के है न, तो इमा बता देते हैं संगवारी मल्ला आज के प्रश्न। तो संगी हो आज के प्रश्न लिख ले आप मन हा, नील हरित काई का हरे प्रश्न लाइक बेरा सुन ले संगी हो, नील हरित काई का हरे, और ये सवाल के जवाब आप मन झटकुन लिख के भेजो संगी हो, ताकि बेरा में आप मन के जो नाम है वो शामिल हो सके। और पाछू हफ्ता के जो प्रश्न रही से वो रही से पान के खेती पर कैसन माटी अच्छा होते, तो इगर सही जवाब है दोमट माटी, रेतीला और काला माटी अच्छा होते। और सही जवाब भेजिए हमार संगवारी ही, कौन संगवारी है रिचा?
3: एमन हावे दीदी नवागढ़ कटाई ले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, मयंक वर्मा, जीत वर्मा, पुष्पांजलि वर्मा। कवर्धा मदनपुर ले हावे श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू मन। गरापार बांधा बाजार ले है राजेश साहू, सुलोचना साहू, मानवेंद्र साहू। नागर कोहरा ले है बबलू साहू, जमुना देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, आराध्या साहू मनहा। आर्यनगर कोहका भिलाई ले हावे उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार जंघेल, अजीत, आयुष और नंदनी जंघेल मन। बठेना पाटन ले है बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, उमेश, प्रमिला, मिथिलेश, टोमिन वर्मा। परसाटोला अंबागढ़ चौकी ले है ओम प्रकाश मसिया, सिलोशनी मसिया, तुसारनी मसिया, खुमेंदु मसिया मन। आप मन सही जवाब भेजो, ये खातिर आप जम मोजल्ला बहुत बहुत बधाई।
2: तो इधर ही तो बड़ झन संगवारी मन के जो नाम रही से सही रही से है ना, जवाब सही रही से। ऋचा देख ऐसे है अभी जैसे हम शुरू में भी गोठियात रहे कि ज्यादातर खेत जो है वो अभी खाली है,
3: हाँ।
2: है ना, और खाली खेत में का है गहिर जुताई जो है वो बने ढंग ले होते है ना, और यही बेरा में होते खेत के माटी के परीक्षण।
3: हाँ दीदी, और खाली खेत में ना गहिर जुताई कर ले पूरा खेत के माटी।

0: मिट्टी ऊपर बने से कर ली तो गर्मी के जोन से माटी के जोन कीड़ा मकोड़ा होते ना दीदी वो मन हा गर्मी के मारे ओमा मर जही और जेखर ले ना जो निर्जीवीकरण हो जाते
1: तो, माटी के निर्जीवीकरण हाँ,
0: तो एखर ले ना किसान मतलब फायदा है मतलब बेरा राहत अगर कोनो जिनिस ला कर ली तो अवैया बेरा मा वो समय है बांच जही
1: और ईचा देख माटी के गहर जुताई के लिए का है माटी हल्का हो जाते पोला हो जाते है ना और इस बात माटी के जांच के तो अभी का है खेत के चारों मुड़क माटी बरोबर मिल जाते खाली है तेकर से है ना जेकर ले का है माटी के जो पोषक तत्व के कमी बेसी पता चल जाते
0: हाँ, दीदी और वो हिसाब ले तो अवैया फसल लेके हिसाब से किसान मन जो खाद उर्वरक के उपयोग रहे थे बोला कर सका थे खाद उर्वरक के उपयोग संतुलित मात्रा में हो जाइए खा ले
1: और संतुलित मात्रा में करना भी चाहिए। देख रिचा उर्वरक के संतुलित उपयोग के मतलब है माटी परीक्षण के हिसाब ले फसल के जरूरत के अनुसार नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम के संग में सूक्ष्म तत्व के सही मात्रा में सही समय में सही विधि देना चाहिए है ना।
0: जैसे उत्पादन ना दीदी बढ़ाए के संगे संगे खाले माटी के जन सेहत है वो सुधार हुई खेती में लागत घलो खाले कमती आई।
1: बिल्कुल बिल्कुल और संतुलित उर्वरक उपयोग में प्रमुख रूप से जैसे माटी परीक्षण है अब माटी परीक्षण करावे तो पता चल जाते कि कौन सा पोषक तत्व की कमी है कौन से अधिकता है ना तो उर्वरक के जो है सही अनुपात डाले जा सकते है ना जब कमी बेसी पता चल जाते तो हिसाब ले जो फसल लेना है तो उर्वरक के जो है अनुपात सही हो जाते और एमा का है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन हो जाते माने कई ठीक जैसे एक फसल लेबे तहाँ दूसरिया फसल लेबे तो ओमा जो जो भी पोषक तत्व रहते माटी में सबों के बरोबर उपयोग हो जाते है ना तो ऐसने ही देख नैनो उर्वरक है तो नैनो उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्व के उपयोग का है साधारण जो यूरिया है ना और उर्वरक है ओकर उपयोग नहीं करके नैनो उर्वरक के उपयोग करे ले और सूक्ष्म जो पोषक तत्व है ओकर उपयोग करे ले जो है माटी के जो पर्यावरण संरक्षित रहते हैं माटी के पोत सुधरते है ना उर्वरक के उपयोग सही समय में भी होना जरूरी है तो ये सब बात के ध्यान दे ले का है रिचा संतुलित उर्वरक के उपयोग के कई ठीक फायदा हो जाते
0: हैं। जैसे अभी आप मन बतावते रहो तो देखो एकर ले का होते पैदावार में जो है वो बढ़ोतरी होते सही खाद पानी मिले से और लागत घलो कमती आते एकर अलावा दीदी पर्यावरण घलो बने सुरक्षित रहते और संगे संग माटी के गुणवत्ता घलो बने रहते
1: तब ऐसा ढंग ले उर्वरक के संतुलित उपयोग ले ही टिकाऊ और लाभदायक खेती हो सकते है ना जो माटी ला स्वस्थ रखते और पर्यावरण नुकसानी ले बचाते और देख ये तो हम गुड बात करें संतुलित उर्वरक के बारे में अब रिचा एक बढ़िया सही गीत सुनथन एलिस जान और संगवारी मन के स्वर में

0: अभी सुनत रहे सुघर गीत एलिस जॉन और उखर साथी मन के स्वर मा
1: और इचा बहुत है जाए के बेरा तो संगवारी मन बता देथन जाए के पहली काली के कार्यक्रम तो काली चौपाल में होई संगी हो गोड बात के संग किसान वाणी में होई हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम विषय होई गर्मी में पशु मन के देखभाल और आहार प्रबंधन ये संबंध में बताही विशेषज्ञ डॉक्टर निधि बंजारी और गीत संगीत होही कृषक प्रश्न मंच क्रम भी होही तब संगी हो देव विदा चौपाल सुनैया जम्मू संगवारी मन विनीता
0: और ऋचा के
1: राम राम, राम।

0: कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का। ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनो संगी

श्रोताओं एक आवश्यक सूचना सुनिए। गुरुवार 14 मई 2026 को कार्यक्रम बिंदिया में प्रसारित होने वाले फोन इन फरमाइश कार्यक्रम हेलो बिंदिया के लिए श्रोताओं के फोन कॉल्स के रिकॉर्डिंग मंगलवार 12 मई 2026 को सुबह 11 बजे से 11:30 तक की जाएगी। इसके लिए हमारा फोन नंबर इस प्रकार है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 लगाना ना भूलें। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं फिल्म सलामी का गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का है, आवाजें कुमार शानू और अलका याज्ञिक की हैं।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं। अभी सुनिए एक आवश्यक सूचना। शनिवार 16 मई 2026 को कार्यक्रम घर आंगन में प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ी फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहिनी के लिए श्रोताओं के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग बुधवार 13 मई 2026 को दोपहर 12 बजे से 12:30 तक की जाएगी। इसके लिए हमारा फोन नंबर इस प्रकार है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 लगाना ना भूलें। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिस्टर आशिक का गीत। आवाज़ें अलका याज्ञिक और कुमार सानू की है। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीतकार हैं जतिन ललित।

0: इसी के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 8:15 होने को हैं। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट।
1: छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा जिला स्तरीय सम्मेलन आज कॉन्फ्रेंस हॉल न्यू सर्किट हाउस रायपुर में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के गणमान्य साहित्यकारों के अलावा नवोदित कविगण उपस्थित हुए। आयोजन के प्रथम सत्र में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की सचिव श्रीमती अभिलाषा बिहार ने।
2: छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हमर माई पहुना हमर खास सगा मन सबो के हृदय ले बहुत बहुत आभार करता कि हमर कार्यक्रम में अपन उपस्थिति देके हमर कार्यक्रम ला सफल बनाई है। और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के स्थापना 14 अगस्त 2008 में हुई। ओकर जो उद्देश्य रही से वह छत्तीसगढ़ी और जतका स्थानीय बोली भाखा मन है ओला एक स्थान दे बर होई रही। और हमन उही प्रयास ला सरलग बूता ला आयोग जब से बने ही तब से करत है। और छत्तीसगढ़ी आप देखिया तो ओकर जैसे कि आप सब जानता कि लिपि ओकर देवनागरी शब्दकोश 2026 तक मोर जानकारी में 40 से ऊपर शब्दकोश छप चुके हैं अलग अलग प्रकार के। साथ ही आप मैंने देखा कि जहाँ तक उसके व्याकरण के बात है छत्तीसगढ़ी पूर्ण व्याकरण सम्मत भाषा है। उकर व्याकरण हीरालाल काव्योपाध्याय जी हिंदी के व्याकरण के पहले लिखे रही से ता लिपि व्याकरण और शब्दकोश तीनों मापदंड में छत्तीसगढ़ी है बहुत पोट। ता हमन छत्तीसगढ़ी के दावेदारी ला जैसे हमार माननीय अध्यक्ष जी श्री प्रभात मिश्र जी के छत्र छाया में होकर मार्गदर्शन में हमन आने वाला समय में आयोग ला दशा और दिशा जो है तय हो ही और अच्का अच्छा नेतृत्व मिली से तब जिन उद्देश्य ले आयोग निर्मित हो रही से मोर पूरा पूरा विश्वास है कि आयोग अपन सब जो उद्देश्य तेला यही कार्यकाल में हो सकी तो पूर्ण पा सकत है। साथ ही आयोग हमन जो है जतका प्रशासनिक तंत्र में जैसे अब भी हमन ला कोनो सुझाव दिन बाहर पत्रकार भाई बंधु महीने भी दी कि आप मन अपन कार्यक्रम ला केवल रायपुर में झन करा तो मैं बताना चाहता कि हमन अपन कार्यक्रम ला पूरा राज्य स्तर में करथन। हमार पिछला जो कार्यक्रम रही से वह बिलासपुर में रही से जेमा पूरा राज्य भर के साहित्यकार भाई बहनी मन संगे जो है सम्मिलित हो रही है। और अभी एक कार्यक्रम के बाद हमार दूसरा जिला सम्मेलन जो है कोनो ना कोनो जिला में चाहे कोरबा चाहे गरियाबंद चाहे धमतरी कोनो जिला में दूसरा जिला में हमन करबो काबर की हमन चाहथन हमार अध्यक्ष जी के मंशा है कि हमन ला अपन कार्यक्रम ला हर जिला जिला में कोती कोती तक जतका हमार भाई बहनी है सब ला हमन ला जोड़ के

0: अभी तक 3000 ले ऊपर अधिकारी कर्मचारी जेमा के अधिकांश जिला अधिकारी और मंत्रालय और संचालय स्तर के अधिकारी है ओ बनला हमें प्रशिक्षण आयोजित करा था ना होकर हमें बदलाव देखा था। ठीक है अभी नोट सीट में छत्तीसगढ़ी चलना चालू नहीं हुए है पर धीरे धीरे चोट करत करत कभू कभू दीवार है टूट जाते। आजकल मैं ये चीज ला देखा था कि अधिकारी मन छत्तीसगढ़ी बोलने में आपको सम्मान महसूस करत है पहली चोट है लोक सीट तक नहीं पहुंचे हैं पहुंच जाइए पर आत्मसम्मान के साथ बोलने में स्वीकार करें छत्तीसगढ़ी आगे है अपन मंत्रालय जाइए तो बहुत जन छत्तीसगढ़ी में आजकल उठ जाते हैं। आज के कार्यक्रम में पुनः पूरे राज्य भर से आए साहित्यकार मन के स्वागत करता हूँ मीडिया के भाई बहनी मन जिला समन्वयक मन सबके मैं हृदय आभार करता हूँ आयोग डहर ले आप मन ऐसे आयोग ले जुड़े रहा काबर के छत्तीसगढ़ी और स्थानीय भाखा मन आप मन के सहयोग के बिना नहीं पनप सके। तो अंत में घाम दिन में जैसे जुड़ लाख थे पचमढ़ी में वैसने स्वाद में हर बोल छत्तीसगढ़ी में कुसियार अस मीट अम जाम अस गुरतुर है मयारू पर चिकट झगरहा पर चुरचुर है गजब के स्वाद है हमर बोल छत्तीसगढ़ी में। छत्तीसगढ़ी के वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय भगवती सेन जी के पंक्ति है एक साथ में आप मन के सबके पुनः स्वागत करते हैं जय जोहार करतल ध्वनि से बोले जय छत्तीसगढ़।
1: छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री प्रभात मिश्रा ने उपस्थित साहित्यकारों को संबोधित करते हुए कहा
2: मैं आज के जिला सम्मेलन कार्यक्रम में हृदय ले बहुत बहुत स्वागत कर रहा था अभिनंदन कर रहा था सादर जोहार कर रहा था और आज ये कार्यक्रम के बेरा में हमन जो उद्देश्य लेके जुड़े आए हैं ओमा हमर बीच के बहुत जाने माने साहित्यकार रहीन हैं सुशील भोले जी ओकर स्मृति ला भी हमें नमन करत हन आओ हमार आयोग के जो प्रयास हवै वो प्रयास में जैसे हमार पूर्व वक्ता सुनील सोनी जी है जौन जौन बात ला बोले है कहे है वो बात ला भी हमन ला समझ के कैसे हमार व्यवहार में हमार लोक व्यवहार में और साथ ही साथ हमार कैसे आओ राष्ट्रीय फलक में कैसे हमार भाखा कैसे आओ आगे बढ़ाए वह कैसे विस्तार पावे ये सब चीज ला हमन हाँ संजोए बर आओ ला संवारे बर हमन आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये शुभ घड़ी में ये शुभ बेरा में हमन ये बात ला अच्छे से हमन ला समझ के हमन ला चलना है कि हमार छत्तीसगढ़ी भाखा में वो सब कुछ है जो अन्य जो भाषा में है एमा जो हमार मिठास है एमा हमार जो बानी है जोन ढंग से हमला प्रभावित करते जोन ढंग से हमला जोड़ते ओला बहुत कम देखे गए है कि कहीं हमन जाथन तो कहीं हमला समझे के बहुत प्रयास करना पड़ते लेकिन जब हम अपन छत्तीसगढ़ी भाखा में हम कोई चीज़ ला बोलथन तो सहज आदमी है जुड़ जाते और आदमी है जुड़ के ओकर माया में बहुत सारा विषय हमन ला ऐसे लगते कि अपनत्व तो आगे है तो यही बात ला और यही विषय ला हमन ला समझना है और अपन जो बात है ओला हमार लोक व्यवहार में और किसी अधिकाधिक बढ़ाना है ये स्थिति हमन यहाँ प्रयास करा था। आयोग है आठवीं अनुसूची में हमार छत्तीसगढ़ी भाखा ला कैसे सम्मिलित हो ही ये दिशा में भी चिंतन करा थे ओकर मानकीकरण की प्रक्रिया चला थे ओकर साथ साथ जो औ जो लगते काका ओकर जो ऐसे करे जाए कि वह हमार आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हो गए वो मापदंड भी हमन पूरा करे के प्रयास करा था और आप मन के मया ले दुलार ले और आशीष से हमन हाँ अपन छत्तीसगढ़ी भाखा ला आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाबो ये हमार संकल्प है आप मन के आशीर्वाद से हमन वो भूतला भी करे के हमन प्रयास करबो। मैं अतिक बात कही के अपन वाणी ला विराम देवत हूँ जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।
1: इस अवसर पर रायपुर दक्षिण के विधायक श्री सुनील सोनी ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की।
3: तो राजभाषा ला व्यवहार के अंदर लाए पर पड़ी जहाँ बैठे वहाँ पे बात करे के जरूरत केवल कापी पुस्तक ये भाषा जो है जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है। हमन सांसद मन जब सेंट्रल हॉल में विजय बघेल अरुण हम जब बैठे तो हमन देखे गुजराती मन गुजराती

0: बात करते हैं, मराठी मराठी में बात करते हैं, अवर भी चालू कर दें छत्तीसगढ़ी हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे लोगों को सुन के अच्छा लगे कि छत्तीसगढ़ी भी कोई भाषा है और एकरा आगे बढ़ाए के जरूरत है। अब का बड़े साहित्यकार मन बैठे हैं, कवि मन बैठे हैं, बोला ज्यादा नहीं बोलना है कि भाषा दूर तक के ले जाना है और पूरा देश में एकर पहचान बनाना है, तो इधर ये मेहनत करे हर कोई और ये मेहनत करे की जिम्मेदारी प्रभात मिश्रा जी के, कि प्रभात मिश्रा जी अब ये राजधानी है, अब ये राजधानी ला छोड़ दो, कभी बिलासपुर में, कभी ध्रुव में, कभी अंबिकापुर में, कभी बस्तर में, और ये सब जन ला बुलाओ, ये जग का बड़ा साहित्यकार है, कवि मन है, वो मन ला भी बुलाओ और वहाँ स्थानीय मन भी रही, तो ये भाषा के प्रति जागृति आई। पेपर में छपी कि राजभाषा आयोग कोई एक है छत्तीसगढ़ में, मैं एक व्यक्ति के नाम नहीं ले बस हूँ, तो बहुत बड़ा एहसान है मोर ऊपर में कि राजभाषा ला भाषा के दर्जा कौन तारीख के मिले, 28 नवंबर और 28 नवंबर के सुनील सोनी के भी जन्मदिन है, मैं ज्यादा रिस्क बोला था। आप सब जन का मन पे बैठे हो और मोर सामने में जन का साहित्यकार है, कवि मन है, आप सबके बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और आपसे मोर यही विनती है कि जहाँ भी जाओ, जब दूसरे राज्य में हम जाथन तो वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के बात होना चाहिए, ओकर बोली ल जाने भर लोगन मन के जिज्ञासा होना चाहिए, यही आप सबसे निवेदन करत हो, अपन वाणी ल वही विराम देवत हो। जय हिंद, जय छत्र।
1: जिला सम्मेलन में ही डॉक्टर पीसी लाल यादव की पुस्तक कुंवर अछरिया और राजा बेलसरिया, डॉक्टर दीनदयाल साहू की कृति पीरा, श्री पुनीत गुरुवंश की पुस्तक जिंदगी एक रहस्यमय है, श्री कमलेश शर्मा की पुस्तक बुंदा बेहतरी, श्री राजकुमार निषाद राज की पुस्तक धरोहर जस जवारा जस पचरा गीत, श्री मुकेश कुमार की कृति भरम आदि के दुनिया, श्री कामता प्रसाद देशलहरा की पुस्तक भुइया के सिंगार और श्री शत्रुघ्न सिंह राजपूत की कृति आखर वंदन का विमोचन किया गया। दूसरे सत्र में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के बाद स्वर्गीय सुशील भोले के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। राज्य अलंकरण प्राप्त वरिष्ठ साहित्यकार श्री पीसी लाल यादव ने श्री भोले को याद करते हुए अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया।
2: बस्ती के मेड़ों में एक पेड़ बुहार, बस्ती के मेड़ों में एक पेड़ बुहार, जम्मो दाई दीदी मल्ला दादा भैया मल्ला राम राम जोहार। सियान मन कथे के साहित्य समाज के दर्पण, साहित्य समाज के दर्पण है तो साहित्य साहित्यकार के सृजन है। हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा के जिन सेवा सत्कार हमर पुरखा कवि साहित्यकार मन करीन, जैसे धनी धरमदास जी, द्वारका प्रसाद तिवारी विप्र जी, पालेश्वर शर्मा जी, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी, दानेश्वर शर्मा जी, विमल पाठक जी, राम नारायण लाल परमार जी, लाला जगदलपुर जी, बहुत अकन साहित्यकार है जिन मन छत्तीसगढ़ी साहित्य ला पोट करे, और ये साहित्य जिन पोट हो ऐसने नहीं हो है। उमन अपन जांगर ला, अपन जिंदगी ला, अपन कलम ला छत्तीसगढ़ी साहित्य पर समर्पित करे रही। वही साहित्यकार में एक जने भैया सुशील भोले जी कोनो कहे है कि छत्तीसगढ़ मोर परिभाषा, छत्तीसगढ़ मोर अभिलाषा, छत्तीसगढ़ जिंदगी का सा, छत्तीसगढ़ सांस के भाषा, छत्तीसगढ़ का लेके जन्म दोबारा फिर आवेते हैं छत्तीसगढ़, कोनो मोर ले पूछे तो घेरी बेरी कहूँ छत्तीसगढ़, घेरी बेरी कहूँ छत्तीसगढ़। मोला लगते कि भैया सुशील भोले हा एकरे बर जन्मे रहीस, एकरे बर उपजे बाढ़े रहीस। सुशील भोले ला

0: कौन नहीं जाना था, सब जाना था। उसे सुशील बोले भैया ऊपर में 8-10 पेज के लेख तैयार करके लाए, काबर को खर काम तो खर नाम उसने छे। मैं ज्यादा बात लो रहूं तो बात है लाम जही, लेकिन सुशील भोले का ए वो कैसे रही, छत्तीसगढ़ के पीरा ओखर मन में कैसे रही, इला मैं कहना चाहता। छत्तीसगढ़ लागर समझना है तो सुशील भोले के साहित्य में पढ़े लगे, छत्तीसगढ़ ला समझना है तो सुशील भोले के ओखर क्रियाकलाप में देखे लगे। मैं ओखर जन्म स्थान या दाई दादा के नाम ऊपर नहीं जाता हूँ, सब जाना था, लेकिन ओखर जो लेखनी है ओखर लेखनी में जो छत्तीसगढ़ के पीरा रही वो कैसे कैसे गई ओला देखा। ओखर एक तो कविता है, वो कविता हम कहूँ समझ लें तो छत्तीसगढ़ के पीरा, छत्तीसगढ़ के सुगरई, छत्तीसगढ़ के संस्कृति है दुरस देखे लगी। उमन लिखते हैं कि जाम और गीत तह खदर बन जबे, जाम और गीत तह खदर बन जबे, बिना घर के मनखे बर घर बन जबे। ये सबसे बड़े बात उखर सोच देखा, वो कहते हैं कि जाम और गीत तह खदर बन जबे, बिना घर के मनखे बर तह घर बन जबे, बने अस देखत जावे, बने अस देखत जावे, कोनो भूख झन मरे और पेट के अगिन भर कोनो लइका ल झन बेचे। ये छत्तीसगढ़ के पीरा देखो ओकर साहित्य ल समझाओ कि पेट के अगिन भर कोनो लइका झन बेचे, ऐसन कहूँ देखबे ता, ऐसन कहूँ देखबे ता तहां चाउर बन जावे, जा रे मोर गीत तह खदर बन जावे। ये सोच कहाँ ले इस? ये सोच है इस लक्ष्मण मस्तुरिया ले, ये सोच है इस द्वारका प्रसाद तिवारी विप्र ले, ये सोच है इस लाला जगदलपुरी ले। एक स्थिति में कही था कि हमला कुछ लिखना है तो हमला पढ़े लगी, जब तक हम अपन पुरखला नहीं पढ़बो तब तक हम छत्तीसगढ़ी के सेवा नहीं कर सकन। तो हमला पुरखल पढ़ना है और सुशील भोले भैया पुरखल पढ़ी। संगवारी हो इकर जन्म भाठा पारम हो रही से, मूल गांव इकर नगर गांव, पिताजी रामचंद वर्मा जी, माता उर्मिला देवी वर्मा। अब इकर जन्म हो जैसे 2 जुलाई 1961 के, जैसे कि मैं पहली के हूँ, मैं उखर व्यक्तित्व पर कम उखर कृतित्व पर ज़्यादा बात करना चाहता हूँ कि आदमी हाँ का सोचते और का लिखते।
1: छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य सेवी श्री विजय मिश्रा अमित, सुमन शर्मा वाजपेयी और श्री चंद्रहास साहू को मया चिन्हारी से सम्मानित किया गया। इस आयोजन के तीसरे सत्र में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आमंत्रित कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं का पाठ किया। प्रस्तुत है इस कवि सम्मेलन के संपादित अंश।
2: आप मन एक बार ताली बजा के अपन जीवंत तो होए का जो है सबूत दबाओ और ऊपर से एक बढ़िया गीत सुनाओ। डॉक्टर संध्या रानी शुक्ला जी।
3: मैं बिसराई देऊं, मैं भी

0: धनी घर निकला गेना, जोड़ी घर निकला गेना।
1: और अब मैं जिन लारो देवा था शशांक यादव जी।
2: अम्मट हमा मीठ हमा, अम्मट हमा मीठ हमा, गजब स्वाद भरे है हमा। चल रे संगी बगीचा जाबो, झोरा भर भर लाबो आमा। चल रे संगी बगीचा जाबो, झोरा भर भर लाबो आमा। झनकर देरी झटपुर चल, झनकर देरी झटपुर चल, नहीं ते दूसर ले जाही आमा। गर्ती चिरे खोलवा पाबो, गर्ती चिरे खोलवा पाबो, गजब मिठा थे ऐसा नामा। रुख मा कोनो चढ़ नहीं पाबो, रुख मा कोनो चढ़ नहीं पाबो, पथरा मा मार गिराबो आमा। पेट भर बासी खवाथे संगी, पेट भर बासी खवाथे संगी, सिल मा जब पिसाथे आमा। ये घर चानी मुँह मा लाथे पानी, ये घर चानी मुँह मा लाथे पानी, नून मिर्चा लगा खाबो आमा। दाइला कहबो गुराम बना दे, दाइला कहबो गुराम बना दे, गुड़ चाशनी मा मिला दे आमा। घाम दिखाबो खोइला बनाबो, घाम दिखाबो खोइला बनाबो, फिर कढ़ी मत दमकाबो आमा। काटबो चानी मिलाबो मसाला, काटबो चानी मिलाबो मसाला, अथान घलो डार खाबो आमा। काटबो चानी मिलाबो मसाला, अथान घलो डार खाबो आमा। किसम किसम के नाव धरा के, किसम किसम के नाव धरा के, फल मा राजा कहाथे आमा। गुदर गुदर ला खाथन संगी, तोर गोही कोल खिलाथे आमा। खाके फेंके भुइया मा गोही, खाके फेंके भुइया मा गोही, फिर नवा रुख बन जाते आमा।
1: और मैं अब बहुत सम्मान से बलावत हूँ बहनी द्रौपदी साहू सरची जिला।
3: ढेकी जाता परछी खौली, कुरिया और अंगना चौरा, चिन्हा हावे मोर गांव के खो खो बाटी औ भौरा। जस हाथी के पांव कटोरा औ गिलास ठाही है, पीतल बटवा बटकी माली लोटा ठोस खुराही है। बटलो ही चिकनी लुद लुदले, दार भात चुर जाते जी, बटकी बारा के माली मा साग मजा बड़ा थे जी। माटी के भड़वा निक नोहर हड़िया परई के जोड़ी है, दुहनी दहिया दार चोपला चुरे पेज पुड़पोड़ी है। उरिद मुंगरा हेर के गुगरी डबक कनौजी मा जाते, कमती रही थे तेल तब होले सरपट खाए मजा थे। करसी के का कहो संगी, करा सन रही थे पानी, पी पी के जी सुसी बुता थे पर जाओ राजा रानी। हंडा हौला टिप टिप धर थे, तस लाले छलके पानी, पातर घेच सुराही अभरे चुए परे परवा छानी। बिन पेंदी के लोटा उंडा छुट थर खुलिया थारी के, चाय डेच की माँ डपका थे बाढ़ बुता सुवारी के। राचर लगे बियारा मनमा कोलर वाला गाड़ा है, लगे फेर का राहर काड़ी घर के पाछू बाड़ा है। पपई खीरा जाम जोंधरा किसम किसम तरकारी गा, धनिया मेथी मुरई मिर्चा कपटे घर के बारी गा। नापे लम्मर काठा कूरो चाउर पौला माटी के, माचा गथना बैला आखी खटिया लकड़ी पाटी के। चरिहा टुकना धान धराए कुंटल वाला बोरा मा, रहे खजानी चना चरबनी मगन रहे मनहोरा मा। दौरी मादल के

0: दल बैला जोड़े जोड़ फंदाएगा, बेलन माँ बैला के जोड़ी तीवरा धान मिजाएगा। छकड़ा बैला फांदे गाड़ी छुटकुन रहे सवारी के, टट्टा गाड़ी चले बराती सपना लिहे सुवारी के। कढ़ी बफौरी हिड़हरे अमटा बरी बिजौरी पीठी माँ, उसना डबका चूरे कनौजी छेना लकड़ी लीठी माँ। अंतिम जठे बिछौना सरकी मन के कथरी के ओढ़ौना गा, माच मचुलिया बने बैठकी ढेरा के ओटौना गा, माच मचुलिया बने बैठकी ढेरा के ओटौना गा। धन्यवाद।
1: सुषमा प्रेम पटेल बहनीला मैं आरो देवत हूँ। सुषमा प्रेम पटेल
2: आनी बानी बुद्धि पाओ, आनी बानी बुद्धि पाओ, कुछ देर बैठ जाओ गोठ घलो ध्यान दे के सुन वसियान के। आनी बानी बुद्धि पाओ, कुछ देर बैठ जाओ गोठ घलो ध्यान दे के सुन वसियान के। झौहा सुपा धरो संगी, झौहा सुपा धरो संगी, मोहा बीने चलो संगी भूइया अंजोर करे सूरज बिहान के। झौहा सुपा धरो संगी, मोहा बीने चलो संगी भूइया अंजोर करे सूरज बिहान के। तिरंगा सम्मान करो भारती के मान करो, तिरंगा सम्मान करो भारती के मान करो, देश भक्ति सुर गुंजे भारती के शान के। सच रद्दा चलो संगी झूठ मत बोलो संगी, सच रद्दा चलो संगी झूठ मत बोलो संगी, करी है भरोसा जन लबरा मितान के। खेत खार कोला बारी जंगल जमीन झाड़ी, खेत खार कोला बारी जंगल जमीन झाड़ी, माटी अन्न उपजैया जय है किसान के। रक्षा में गाँव आते जान बचा नहीं पाथे प्राण, रक्षा में गाँव आते जान बचा नहीं पाथे प्राण, मत भूलो उपकार देश के जवान के। लोक गीत कर्मना चगमत ददरिया है, लोक गीत कर्मना चगमत ददरिया है, महतारिया चरम गौरव सम्मान के। सुषमा सुघर बोली हंसी खुशी संगी टोली, सुषमा सुघर बोली हंसी खुशी संगी टोली, भाखा छत्तीसगढ़ी में गुंजे जय गान के।
1: मैं हमारे बीच वरिष्ठ कवि उपस्थित है राजेश चौहान जी, उनला सम्मान मंच ले आरो देता हूँ।

0: तो ईश्वर साहू बंदी ले आग्रह है कि मनावाए और अपन सुग्घर गीत के पाठ करें। ईश्वर साहू बंदी।
1: माटी ओ माटी में छत्तीसगढ़ के

0: राम।
1: इसी के साथ छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा रायपुर में आयोजित जिला सम्मेलन के अवसर पर आधारित विभिन्न सत्रों की रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है। आकाशवाणी रायपुर की इस प्रस्तुति के लिए आलेख और वाचन योगिता साहू का और संकलन रमाशंकर, धर्मदीप डोंगरे और प्रकाश उदय का।
2: छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट अभी आप सुन रहे थे।
3: मीडिया था LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में NDA का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
4: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
3: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
4: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
3: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
4: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल

0: आजाद नहीं हुआ है। भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: For the season of Kharif 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
4: Availability after the crisis situation.
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय

0: पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
2: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
2: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
3: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का

0: समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Center notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द गवर्नमेंट इज मेकिंग कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू एंश्योर दैट दिस सिचुएशन हैज द मिनिमल पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द पीपल ऑफ द कंट्री। The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: सरदार धाम हॉस्टल इन वडोदरा

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
5: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सुहाग का गीत। संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीत रचना आनंद बख्शी की है, आवाजें आशा भोसले और शशि कपूर की।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: श्रोताओं, आपके मन में से संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331 0481 2371 7116 2371 7106 और 2331444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9289094044 और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अतुल जी, आपसे सवाल। आज का विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा। तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है, अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
2: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है करीब करीब जो फायर होती है 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक ब्लास्ट, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती है घरों में जो होती है, वो दो तरह के लगती है मेनली। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे, तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को, आप ये समझिए अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे, तो कोई भी इक्विपमेंट जब चलता है उसमें हीट जनरेट होती है, चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे

0: वॉशिंग मशीन कोई भी चीज चलाएंगे तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो इस उसमें हीट जनरेट हो रही है और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है, आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी शुरू
1: हुई मई के महीने में बहुत
0: आग लगी और बहुत सारी आग भी एसी की ब्लास्ट होने के से लगी
1: जी।
0: उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा तो उसमें आग लगने वाली है
1: जी। शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए
2: जी। नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश
1: जी।
2: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है किस तरह से आग को पाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो कई कई गाँव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं
1: जी,
2: लेकिन फायर पहुंचती नहीं है तो अग्नि को कैसे किस तरह से जो है काबू किया जाता है, काबू किया जा सकता है।
1: प्रशांत जी, जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
3: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज़्यादा होता है। और साधारणतः जो हम जंगलों की आग जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पर आग बुझाते हैं तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है। तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहाँ पर आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पर आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल ना हो उसको साफ कर देते हैं सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो, क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है। तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है तो उसमें एयर लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं। तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है, बट मेरा हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइंड कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइंड करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है
1: जी। राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं जी। राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है।
4: नमस्कार जी, निगम जी को और विशेषज्ञ जी को वो नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहाँ पे 60-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे MCED है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा घबराहट में लोग अपनी ज्यादा जान दे देते हैं तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार।
3: नमस्कार
1: जी राकेश जी।
0: राजेंद्र जी आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए एसी हर घर में हर ऑफिस में लगा होता है, एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी और आप कंटिन्यूस एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है और कोई भी अगर चीज़ आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं,

0: बच्चे भी उसी सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है, फिर हम क्या होते हैं दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी, तो हम क्या कर रहे हैं लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी वो इस लोड को लेने के काबिल है या नहीं है? अगर हमारा ट्रिप होता है तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है या एसी आवाज कर रहा है या बार बार कोई चिंगारी निकल रही है, संकेत है कि आपकी वायरिंग खराब हो चुकी है, आपका लोड ज्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज कर रहे हो आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीजों पे देना है, ना कि सबके साथ एसी चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
1: अतुल जी, ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
0: देखिए, ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो फर्क पड़ता है उससे। उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो क्या रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे चला दिया, 90 डिग्री कर दिया और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाजा खुल बनना, तो 90 डिग्री कभी टेम्परेचर अचीव नहीं होता और एसी कभी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाएं, थोड़ा सा उसको रहते हैं, इवन 5 मिनट देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
1: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी, सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
3: हाँ नमस्कार, रमाशंकर वाजपेयी जी नमस्कार। आपका सवाल जो है बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रखरखाव, आग के लिए बचाव का रखरखाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए हैं कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीज़ों का रखरखाव रखना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए, जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो आपका लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबिलाइजर्स आते हैं, MCBs आते हैं, RCBs आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है एसी में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है तो वो ट्रिप कर देता है। तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है, बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि ये सारी चीज़ें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है बट उसका रखरखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो मेंटेनेंस जो है उसका बहुत जरूरी है और जो ऑक्युपायर है, जो हम लोग वहां रहते हैं, उनको ये चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहां पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है पर आप कहीं भी वहां पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहां जाके पढ़ा आपने तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम 2 एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए और ये है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहाँ पर सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉक ड्रिल की

0: बात करते हैं डीएफएस, दिल्ली फायर सर्विस, कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉक ड्रिल कंडक्ट करता है। तो मॉक ड्रिल कंडक्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि मॉक ड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर हो रहा है,
1: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे। हाँ। तो रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं, सबसे बड़ी।
0: हाँ, लिफ्ट से आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि होती है, दम घुटता है। तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
1: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
2: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। जैसे कि मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं, दुकानें भी हैं। तो मैं आपका ध्यान दो तीन बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं एसी में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई कहीं। तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियाँ होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियाँ होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है एमसीडी की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी।
1: धर्मवीर जी सवाल हम समझ गए हैं।
2: सवाल यही कहना चाहूंगा,
1: हम समझ गए हैं। प्रशांत
2: नहीं, लवलीन जी, आप बात पूरी होने दीजिए।
1: नहीं, आप तीन सवाल पूछे जी।
2: नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्रियों में नहीं होता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: धन्यवाद। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में एक हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हजारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड मैं गांधीनगर कई बार गया हूँ, गांधीनगर में हमें पहुँचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15-16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियाँ हैं, गाड़ियाँ पार्क होती हैं रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
1: जी।
3: तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिल के अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूँगा, ज़्यादातर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस की लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहाँ हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहाँ बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं, उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता, तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज़्यादा नुकसान हो गया
1: जी।
3: तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोगों के लिए बने, उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है, मैं कह रहा हूँ जहाँ बिजली के प्लग होते हैं वहाँ हम देखते हैं साड़ियाँ भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज़्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, कपड़े में आग लग जाएगी, और आग फिर कपड़े में आग लगती है, बुझती नहीं है, गांठ होती है, आप पानी डालें, ये बहुत 24-24 घंटे लेती है, 2-2 दिन लेती है
1: जी।
3: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की

0: नहीं बहुत कम हो जाएंगी, जैसे आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ मैंने देखा कि लगती है पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं, तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो प्रिकॉशन लें, हम लोग को, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस जो इंस्पेक्शन करेगी।
1: जितनी देर फायर ब्रिगेड पहुंचे उतनी देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से।
2: स्वामी
1: जी, विजय जी नमस्कार। हाँ, स्वागत है।
2: दीदी नमस्ते।
1: नमस्कार, सवाल
2: पूछिए। हाँ, सर नमस्कार जी।
3: नमस्कार
2: जी। भाई विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गाँव बस्तवा तहसील सिहोर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से
1: जी।
3: नमस्कार विजय।
2: हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई तो हमें शुरुआत तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
3: हाँ, विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप। तो मैं आपको एक, आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लगी तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहां से बाहर निकलना है। पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद आपको, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके बाद जो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहाँ पे आप इमिजिएटली फ़ोन कर दीजिए। और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं, बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है। उसके बाद जितना हो सकते हैं जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
1: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं, सलाहें बहुत देती है, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
3: हाँ, ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी की घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दे, लोगों को जाने आने का रास्ता दे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको, जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है, जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीजें, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसके मार्किंग होने चाहिए, आपको कहाँ जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है, या रेडियम मार्किंग लगते हैं, या फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
1: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
4: नमस्कार।
3: नमस्कार
4: जी, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से
1: जी।
4: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मियों के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो कभी पानी की कमी है आजू बाजू में, कोई कोई एरिया में कमी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए कोई दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो, मतलब
1: जी जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहां दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
3: उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते कि वहाँ पे जो जलने वाली चीज है, उसके आस पास में जो जलने वाली चीज है उसको वहां से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं, तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है। तो वहां पे जो जलने की चीजें जितनी ज्यादा आप हो सकते उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहां से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहां, फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी। वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में जलने की चीजें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं जी। महेंद्र सिंह जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
5: नमस्कार।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछिए।
0: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार।
0: सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से गलती से और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किए, दो नंबर है, आप इनको याद रखें 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
1: जी।
3: और 112 पे भी जाएगा अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास रहेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब सिलेंडर में अगर आग लग रही है, लीकेज नहीं है, तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जाके उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज़। हम लोग कहीं कहते हैं, ऑल दो वो क्रूड मेथड है कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है, और कोई बिजली का सामान, कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी
1: जी।
3: तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता, वो प्लास्टिक के, हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर हैं, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं, तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपने जो जहाँ भी फायर ब्रिगेड है, मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहाँ चिट्ठी लिखें, वहाँ से कोई ना कोई ज़रूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे सारी महिलाओं को, एनजीओ को भी यूज़ कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
1: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया
3: जाए? नहीं, नंबर जो सबका एक ही है, 101 ही होता है। आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं।
2: मैं एक और चीज, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूँ कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सभी राज्यों को दिया गया है, तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो, ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो, और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में, तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
1: RWJ हो या कुछ भी हो,
2: हाँ, कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अवश्य मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
1: एक सवाल है, पानीपत से हैं ये शैलेंद्र शेंदुड़ कर रहे हैं शायद, ये बोल रहे हैं मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसे स्थिति में क्या कर सकें? CNG की भी हम बात करें तो CNG वाहनों में बहुत आग लग रही है।
2: इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफ़ी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है, जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए, और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहाँ से निकल जाना है, और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है, क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए, तो वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा, जितना हो सकते आपको दूर अपने आप

0: को करना है और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। अच्छा, और उसके उसमें उसमें ये है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहाँ जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है, कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना जरूरी है।
1: प्रमोद है जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं। जी प्रमोद नमस्कार, स्वागत।
2: हाँ जी नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिस वगैरह हैं या मतलब शट डाउन करके वो वहां से निकले, आप प्लीज इसमें बताएं। और टेम्परेचर जो है एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं, अगर आगे आप टेम्परेचर बताएं।
1: जी जी, हम जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
3: जी आपका सवाल बहुत वाजिब है, रात में आग लगती है और सबसे ज्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए इसीलिए ये एमसीबी एलसीबी ईएलसीबी का जो कंसेप्ट है, इसीलिए अगर ये आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा है नेचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात कही, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है।
1: तभी जी प्रशांत जी रोकूंगी क्योंकि समय बहुत दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। फिलहाल नमस्कार।
0: नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मों को गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर।

सुरों का सफ़र सुन रहे सभी श्रोताओं को अभिषेक का नमस्कार। श्रोताओं, आपके पत्र और ईमेल के माध्यम से आप सबकी फरमाइश हमें लगातार मिल रही है, तो आइए शुरू करते हैं सुरों का सफ़र कार्यक्रम के पहले गीत के लिए फरमाइश मिली है ईमेल के माध्यम से आप सबकी। पोटिया कला दुर्ग से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और समस्त माखीजा परिवार। ओवरेठी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा साहू, नेहा साहू और मोनिशा साहू। बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर और पुन्नू वड़तकर। जिला मोहला मानपुर से महेश कुमार निषाद, रंभा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद, कुमारी पुष्पांजलि और स्वप्निल कुमार निषाद। कन्नेवा से पुरुषोत्तम भाई निर्मलकर, शारदा देवी निर्मलकर, लोचन विद्यार्थी, कुमारी गीतिका। गांव जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन प्रजापति, लविश और मुनेश देवी प्रजापति। बुलढाणा महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। बुलढाणा इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, साधना और सुमेध। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए पत्रों के माध्यम से फरमाइश आप सबकी है। हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी कोमल यादव। राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। भाटापारा से नारायण यदु, पुनिया यदु, राकेश और आरती यदु। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। अमलेश्वर से सूरज ठाकुर, सुजला ज्योति और दयांश ठाकुर। महादेवघाट से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश और तारिणी ठाकुर। सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन और गिरीश करण यादव। यहीं से श्रीमती अमृता यादव, श्रीमती पार्वती यादव, श्रीमती ईश्वरी यादव, श्रीमती लक्ष्मी यादव। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश,

राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, बेमेतरा वार्ड नंबर 20 से राज एवं रागिणी वैष्णव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव, पावर हाउस बिलाई से विकास वर्मा, खुशी वर्मा और ग्रंथ वर्मा। आप सबकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ये रात फिर ना आएगी, इसका गीत। संगीत ओपी नैयर का है, गीत लिखा है SH बिहारी ने, आवाज़ महेंद्र कपूर की है।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए पत्रों के माध्यम से फरमाइश की है आप सबने। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम और कुमारी डब्ल्यू डोम, जेलपुरा रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार, शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य ठाकुर और कृष श्रीवास्तव, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू और राघवेंद्र साहू, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर और प्रमिता गवाणकर, अरमरी दुर्ग छत्तीसगढ़ से चूला चूरामनलाल वाडे, जीनी वाडे, विवेक कुमार वाडे और नेहा वाडे, बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र वृजक्रांत सारथी, सिमगा छत्तीसगढ़ से दादू दीपक सेन, लवकुश सेन, प्रहलाद सेन, आदित्य, आशीष और प्रकाश सेन, महामायापारा ग्राम दरचूरा से फिरंता साहू, दुलारी साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू, मगरलोट से पुनुराम साहू, तेजेश्वरी साहू और राजश्री राजवीर साहू, सिहावा पर्वत ग्राम बेलहर से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, जय मां कर्मा रेडियो श्रोता संघ से कुमारी लावण्या साहू, कुमारी उपासना साहू, देवराज साहू, ओंकार साहू, पुष्पराज साहू और प्रभुराम साहू। इसी गीत के लिए ईमेल के माध्यम से फरमाइश मिली है आप सबकी। खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, भिलाई 3 चरौदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीनुद्दीन सिद्दीकी, जिशान सिद्दीकी, शाहनवाज और अहमद सिद्दीकी, बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, वडाली से राजेश खोबरागड़े, शिव सागर खोबरागड़े, इदिरा ताई खोबरागड़े, सुनैना

बताई खोबरागढ़े और तनुष कुमार, जिला बुल्ढाना से दीपाली राम और स्वराज राम धाड़े, नलेश्वर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवहानकर, निर्मला नवहानकर और विशाल नवहानकर, पलारी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा और निखिल वर्मा, संबलपुर से शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा, तुषार वर्मा और वंशिका वर्मा, कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू, ग्राम बनबघेरा जिला राजनांदगांव से योगेश सारवा, नीरज नीलेश अंजलि और रोशनी, खमारमुड़ा से सतीश गिरी गोस्वामी और श्रेयांश गिरी गोस्वामी, गड़ई टिकरीपारा से जागेश्वर दिवांगन श्रीमती कचरीबाई, दीपक कुमार, श्रीमती जयश्री, ऋषभ और ऋचा दिवांगन, आप सबकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है, संगीत ओपी नैयर का है, फिल्म है तुमसा नहीं देखा।

सुरों का सफ़र इस कार्यक्रम में अगली फरमाइश मिली है आप सबकी। कवर्था से राधे श्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे। कोपरगांव से सुरेश मालदे, वर्षा मालदे।

जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। पानीपत, हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञानभूषण शर्मा। ग्राम बेलसर, महासमुंद से बलराम सेन, इंदु सेन और छगन सिन्हा। चांदनी चौक, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र और रौनक सेन। पहाड़गंज, मुल्तानी ढांड से अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्ण और पीहू स्वर्णकार। भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। ये थी फरमाइश ईमेल के माध्यम से हमारे अगले गीत के लिए। पत्रों के माध्यम से फरमाइश मिली है आप सबकी। हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव और भीषम दास मानिकपुरी। शिवचौक, साकरा भूमिया तिलदा से मनोज निषाद, प्रतिभा निषाद, पूर्वी निषाद और खुशांत निषाद। बेमेतरा से भरत लाल सिंह, लकी सिंह, सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी। बहादुरा, नागपुर से शैलेश गवहणकर, श्रीमती वैशाली गवहणकर, श्वेता सुमित गवहणकर, कुमारी ध्वनि गवहणकर और प्रणीता गवहणकर। नर्मदा धाम सरसुली से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र और योगेश यादव। सनीचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सौरभ जैन, श्रेया जैन, शुभम और शौरी जैन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। लेवई से गुलाब दास मणिकपुरी। लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू। चरडूंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। देवघर से संतोष केसरी, उर्मिला केसरी, प्रियंका केसरवानी और शुभम केसरवानी। नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। बनियापारा, धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता माखीजा और समस्त माखीजा परिवार। आप सबकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म छाया का गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर और तलत महबूब की है, संगीत सलील चौधरी का और गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश मिली है आप सभी की। गिरा पलारी से वीरेंद्र साहू, सोन आशीष और कपिल साहू। जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा आरती और प्रभा देवी तामुरिया। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। हटौत बाजार लाहौत से कमलनाथ पटेल, सुरेश कुमार पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनुष्का और तन्मय गजभिये। चिरमिरी कुरासिया कलारी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत और बेबी आराध्या साहू। मगरलोड से फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन और पार्थ हे अंश चंदन। आप सबकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त ने। मजरू सुल्तानपुरी की गीत रचना, संगीत ओपी नैयर का।

कार्यक्रम के आखिर गीत के लिए फरमाइश मिली है आप सबकी। मालवा रेडियो श्रोता संघ जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल पायल, प्रियांशु और ऋषि वर्मा। मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू झेरिया और युग कुमार झेरिया। जिनवाणी श्रोता परिवार रेडियो श्रोता संघ सिमगा छत्तीसगढ़ से समस्त श्रोता। मछली गोदाम रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह और ऋषभ सिंह, आप सबकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मधुमती का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार सलील चौधरी।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए उस्ताद गुलाम मस्तक मुस्तफ़ा खां का राग बिहाग में गायन। तबले पर संगतकार हैं गुलाम सुल्तान खान, सानगी पर संगत की है लियाकत खान ने और हारमोनियम पर संगीत की है मशकूर हुसैन ने। विलंबित ताल एक ताल में निबद्ध है।

0: उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान का राग बिहाग में गायन अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13

असम में कल हेमंता बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।